आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की नवी तिथि, तदनुसार 31 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:58:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। हमारी सभा में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस दो दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: प्रधानमंत्री आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिमालीफ आदिलबेक अलेशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन भी किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिजिस्तान की यात्रा पर हैं। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपाड़ के घने जंगल में छिपाकर रखे

0: विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। भारत के अभय सिंह ने तुआंकू महरिज स्क्वाश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने पीएसए चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लेउंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा पीएसए टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्ट्रुथॉफ ने गोल किया। जर्मनी का ये चौथा पुरुष विश्व कप खिताब है। इससे पहले अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुने चिंतन।

जीवन में जो हो रहा है उसे धैर्य के साथ स्वीकार करो और अपने कर्म पूरे मन से करते रहो। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार हमेशा बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने मन में क्रोध और अहंकार पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। इसलिए दूसरों की नहीं अपने कर्तव्य की चिंता करो, भगवान पर भरोसा रखो, अच्छे कर्म करते रहो और सही मार्ग कभी मत छोड़ो। समय धीरे बदलता है लेकिन अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। चिंतन के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आज के वंदना कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे प्रथम पूजनीय श्री गणपति जी की इस वंदना के साथ, जो सभी मांगलिक कार्यों को पूर्ण करते हैं।

शिवशंकर भोलेनाथ अपने भक्तों के प्रति सदा ही दया भाव रखते हैं और उनकी एक पुकार पर उनके कल्याण के लिए सदा मौजूद रहते हैं।

माँ का हृदय सदा प्रेम और ममता से भरा रहता है। जब भी भक्त ने उन्हें प्रेम से पुकारा है तो वो उनकी एक पुकार पर उनकी सहायता के लिए चली आती है।

भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन प्राणी सांसारिक सुखों को भूलकर अपने आराध्य के प्रेम में मंत्रमुग्ध होकर श्री कृष्ण की बांसुरी की तान पर झूमने लगता है।

श्रोता, इसी भक्ति रचना के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस से एक और भक्तिमय प्रस्तुति, मानस गान।

दल बल समेत भरत के आगमन के समाचार से निषाद राज को आशंका होती है। क्या कारण है जो भरत वन में जा रहे हैं? यदि उनके मन में कपट भाव न होता तो साथ में इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों चलते? निषाद राज ने सेवकों तथा कुटुंबियों को सभी नावों को कब्जे में करके पानी में डुबो देने तथा सभी घाट रोक लेने के लिए सावधान कर दिया। कहा, सब लोग भरत से युद्ध में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं स्वयं भी स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देकर 14 भुवनों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। निषाद राज की ललकार सुनकर निषादों की एक छोटी मोटी सेना तुरंत खड़ी हो गई। सभी शूरवीरों ने कमर में छोटे छोटे तरकस बांध धनुष पर वाण चढ़ा लिए। रण के लिए ढोल बजा ही था कि बाई ओर से छींक सुनकर एक वृद्ध अनुभवी निषाद के मन में विचार आया कि भरत से मिल लेना चाहिए, शकुन शुभ है, अतः युद्ध नहीं होगा। भरत कदाचित राम को लिवाने जा रहे हैं।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे मानस गान 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 होने को है। आइए अब आपको जानकारी दे दे हमारी केंद्र से हमारी आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की।

7:10 पर आप सुनेंगे सुबह सुहानी कार्यक्रम और हिमाचली लोक गीतों का कार्यक्रम शुभ ब्याग आप सुन पाएंगे सुबह 7:40 पर। देश और दुनिया का ताजा हाल समाचारों से आप जान पाएंगे सुबह 8:00 समाचार प्रभात में और 8:15 पर सुनेगा मॉर्निंग न्यूज़।

फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:30 पर और कानून की बात कार्यक्रम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से किया जाएगा रिले सुबह 8:45 पर। आपकी ईमेल पर आधारित कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन पाएंगे सुबह 9:00 और 9:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। इसके अलावा सुबह 11:00 दिन में 3:00 शाम 6:00 और 7:45 पर भी समाचार हमारे केंद्र से सुने जा सकते हैं जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से ही रिले किया जाएगा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतों का कारवां आप सुनेंगे सुबह 10:00 और 10:30 पर आनंद लीजिए पहाड़ों के सुर कार्यक्रम का। 11:05 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी और 11:30 पर सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप रोजाना सुनते हैं दिन में 12:00 और 12:30 पर हम आपको सुनवाएंगे सुनो सखी कार्यक्रम। 1:10 से लेकर शाम 5:00 तक आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का। हमारी सायंकालीन सभा की शुरुआत होगी शाम 5:10 पर गैर फिल्मी भजनों के साथ। 5:25 पर युवा साथी सुन पाएंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच सुरमई सांझ। ये कार्यक्रम आप रोजाना सुनते हैं शाम 6:05 पर। मौजा ग्राइंडिया कार्यक्रम सुनना ना भूलिए शाम 6:30 पर। किसान बागवान साथी खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनेंगे 7:10 पर। रात्रि 8:00 विधानसभा समीक्षा आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले की जाएगी और 8:15 पर आनंद लीजिए विविध गीत संगीत के कार्यक्रम सबरस का। 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कुछ देशभक्ति गीत। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे और 9:00 सुनेगा News@9। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे एक ही कलाकार कार्यक्रम और हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की सुना जा सकता है रात 9:30 पर। रात्रि 10:00 सुनना ना भूलिए लाइव फोन इन प्रोग्राम आपकी पसंद गीत हमारे। श्रोताओं ये थी जानकारी हमारी केंद्र से हमारी आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पल में संस्कृत में समाचार 7:00 हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भारत उज्बेकिस्तान देशाभ्याम् अद्य खनन आयुर्वेद पर्यटनार्थिक सहयोग पर्यावरण उच्च शिक्षादि क्षेत्रेषु परस्पर सहयोग संवर्धनाय संधिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। देशद्वयेन त्रिंशदुत्तर द्विसहस्र वर्षं यावत् पञ्चार्बुद डॉलर मितं व्यापार लक्ष्य

0: लक्ष्यं निर्धारितम्। यदि सांप्रतिक व्यापारस्य पञ्चगुणितं वर्तते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तानस्य सर्वोच्च सम्माननमपि अलभत। इदं सम्माननं देशद्वयस्य मध्ये सहयोग संवर्धने तदीय योगदानाय उपायनीकृतम्। ताशकंद नगरे उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिः शावकत मिर्जियोरेवः प्रधानमंत्रिणे नरेंद्र मोदिने सर्वोच्च राजकीय सम्मानेन ऑर्डर ऑफ ओलिया दर्जाली दोस्तलिक इत्यनेन सम्मानितवान्। प्रधानमंत्रिणा एषः सम्माननः भारत उज्बेकिस्तानयोः दृढ़ संबंधेभ्यः समर्पितः।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
0: श्री मोदी अवोचत यत् सम्मानं प्राप्य असौ गौरवानुभवति, अपि च देशद्वयं व्यापक रणनीतिक संरचनायाः अन्तर्गतं निर्णायक लक्ष्य निर्धारणार्थम् अग्रे समेधयिष्यन्ते। राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोरेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डल स्तर वार्तायां श्रीमोदी अवोचत् यत् देशद्वयं निज सम्बन्धान् व्यापक रणनीतिक सहभागिता स्तरं यावत् नयतः। अनन्तरं सहयोगस्य समस्त स्तराणां समीक्षायै विदेशमन्त्रिणां समन्वय समितेः घटना विधास्यते। नेपाले जलाप्लावनस्य स्थितिः अत्यन्तं चिन्तास्पदा वर्तते। भोटेकोशी नद्याः जलस्तरवर्धनेन प्रशासनेन रसुवा, नुवाकोट, धादिंग मण्डलेषु सञ्चेतना च प्रसारिता। मध्य नेपाले आकस्मिक जल प्रलयेन मृतकानां संख्या समेध्य 68-70 संवृत्ता। अद्यापि मृत वपुंसी संप्राप्यन्ते। अस्यां घटनायां 2500 जनाः विलुप्ताः सन्ति। संकटस्य पंचमे दिने सहायोद्धार कर्मचारिणः द्रुतगत्या विलुप्तानां अन्वेषणाय कार्यं कुर्वन्ति। अष्टसु अपि प्रभावित जनपदेषु शवाः प्राप्ताः। नेपालस्य नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी NDRRMA इत्यनेन उक्तं यत् इदानीं यावत् 86-88,000 जनाः सुरक्षापूर्वकं निष्कासिताः। एतेषु 27,200 वैदेशिक नागरिकाः अपि वर्तन्ते। निफ्ट संस्थायाः 18 परिसराणाम् 80% स्नातक छात्रान् सम्बोधयितुम् अद्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदेहलीं समायास्यति। एषः दीक्षांत समारोहः छात्राणां शैक्षणिक प्रयासानां सिद्धिरूपेण आयोज्यते। ओडिशा राज्ये नूतनवृष्ट्या जलाप्लावन संकटः अतीव भीषणो जातः। उत्तर क्षेत्रेषु नदीनां जलस्तरः झटिति वर्धते। ऋतुविभागेन बालेश्वर, खेजर, मयूरभंज क्षेत्रेषु अतिवृष्टिपरा संचेतना प्रख्यापिता। तटवर्ती जनाश्च सावधानतया स्थातुम् उपादिष्टाः। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत

0: और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्र अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिम अलीफ आदिलबेक अलीशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जापारोव के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिस्तान की यात्रा पर। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा है कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकानों का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपाड़ के घने जंगलों में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया है। ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई है। भारत के अभय सिंह ने तुआंकु मुहरीज स्क्वैश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने PSA चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लिंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा PSA टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ ही शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 8 बजे शुरू होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने श्रीलंका से 2027 में होने वाली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन ली है। श्रीलंका क्रिकेट प्रशासन में सरकार के हस्तक्षेप के कारण ये फैसला किया गया है। प्रतियोगिता में मेजबान श्रीलंका सहित 6 टीमें हिस्सा लेने वाली थीं। ICC बोर्ड की अगली बैठक में टूर्नामेंट के नए आयोजन स्थल के बारे में फैसला होने की संभावना है। आयोजन स्थल बदलने से श्रीलंका की टीम के इस टूर्नामेंट में खेलने पर भी सवाल खड़ा हो गया है। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्ट्रुथॉफ ने गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Bishkek on a 2-day visit to Kyrgyzstan. He was received at the airport by Kasum Aliyev Adulbek Alishovich, the chairman of the Cabinet of Ministers. A traditional Kyrgyz dance performance was also organized to welcome him. Mr. Modi is visiting Kyrgyzstan at the invitation of President Sadur Japarov for 26th SCO summit. On the first day of his visit to Kyrgyzstan, PM Modi will hold bilateral meetings with the SCO leaders on the sidelines of the summit. He will also

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी।
1: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ट्यून इन है आप 103.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी धर्मशाला पर। जी हाँ, जहाँ एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गए हैं हम इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से भरपूर प्रोग्राम सुबह सुहानी। रोजाना की तरह आज भी शुरुआत होगी इस सुविचार के साथ। दोस्तों, सच्चे रिश्ते और अच्छी संगत जिंदगी को आसान नहीं बल्कि खूबसूरत बना देती है। जी हाँ, जो दोस्त आपके लिए लॉयल हो, जिन्होंने आपका भरोसा जीत लिया है, ऐसे दोस्तों का हमेशा के लिए कसकर हाथ पकड़ लीजिए और अपनी लाइफ को थोड़ी सी मस्ती और ढेर सारी एक्साइटमेंट से जीने के लिए एकदम से तैयार हो जाइए। और इस एक्साइटमेंट को यूं ही बरकरार रखने के लिए हम है ना आकाशवाणी धर्मशाला, जो एकदम से तैयार है आप सभी का मनोरंजन करने के लिए कुछ बेहतरीन से गानों के साथ। प्रोग्राम चल रहा है सुबह सुहानी,

जी हाँ श्रोताओं, सुबह सुहानी प्रोग्राम में म्यूज़िक का तड़का तो वही लग चुका है। और फिलहाल अब आगे की बात करते हैं और उन दिनों की बात करेंगे जहाँ कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर है जिससे उस दिन की विशेषता बढ़ जाती है। जी हाँ, डालेंगे नज़र इतिहास के पन्नों पर। 31 अगस्त 1881 में अमेरिका में पहली राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप आयोजित की गई। वहीं साल 1956 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी। 31 अगस्त 1997 में प्रिंसेस डायना पेरिस में कार दुर्घटना के बाद इस दुनिया से उन्होंने अलविदा कहा। वहीं साल 2009 में सामाजिक कार्यकर्ता दीप जोशी को रेमन मैगेसेस पुरस्कार से नवाजा गया। बात करें आज के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों की, तो आपको बता दें कि 31 अगस्त 1919 में प्रख्यात लेखिका अमृता प्रीतम का जन्म हुआ। वहीं 1940 में मृत्युंजय के लेखक शिवाजी सावंत का भी जन्म हुआ। 1963 में आज ही के दिन फिल्मकार ऋतुपूर्ण घोष का भी जन्म हुआ। तो कार्यक्रम में बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है, साथ ही साथ हम आपके लिए प्ले करते रहेंगे कुछ बेहतरीन से गीत, और इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुबह सुहानी प्रोग्राम एंजॉय करते रहिए।

जी हाँ, हमें भी अपने श्रोताओं से बेहद बेइंतहा प्यार हुआ है, तभी तो हम भी बेकरार रहते हैं उनसे मिलने के लिए और उनसे प्यारी प्यारी सी इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए। फिलहाल समय हुआ है 7:24:15। ट्यून इन है आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ, जहाँ से आप सुन रहे हैं सुबह सुहानी प्रोग्राम। दोस्तों, हमारे विचार हमारे व्यक्तित्व का आईना होते हैं, और जब हमारी यही सोच कलम के जरिए कागज पर उतर जाए तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाती है कविता, कहानियों और उपन्यासों के रूप में, जो हमारे समाज का आईना बन जाती है। और कई बार यही रचनाएं हमारे आसपास एक बड़े बदलाव का जरिया भी बन जाती है। जी हाँ, सुबह सुहानी प्रोग्राम में आज आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसी ही प्रख्यात लेखिका के बारे में जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। श्रोताओ, पंजाबी साहित्य की एक प्रमुख हस्ती, भारतीय उपन्यासकार, निबंधकार और कवित्री अमृता प्रीतम, जिनका जन्म 31 अगस्त 1919 को गुजरावाला में हुआ, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमृता प्रीतम को उनकी मार्मिक कविता अज अखा भराइयां के लिए और सबसे अधिक याद किया जाता है, जो भारत विभाजन के दौरान हुए नरसंहार पर उनकी पीड़ा की अभिव्यक्ति करती है। एक उपन्यासकार के रूप में उनकी सबसे उल्लेखनीय रचना पिंजर थी, जिस पर आगे चलकर एक अवार्ड विनिंग फिल्म पिंजर भी बनाई गई। श्रोताओं, आपको बता दें कि प्रीतम की सर्वोत्कृष्ट

रचना सुनेहा दे नामक लंबी कविता ने उन्हें 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलाया, जिससे वे पंजाबी में ये पुरस्कार पाने वाली पहली और एकमात्र महिला बनी। उन्होंने 1982 में कागज दे कैनवस के लिए सर्वोच्च साहित्य पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। आपको बता दें कि साल 1969 में उन्हें पद्मश्री और 2004 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसी वर्ष साहित्य अकादमी द्वारा भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार साहित्य अकादमी फेलोशिप उन्हें दिया गया, जो आजीवन उपलब्धि के लिए साहित्य के अमर लोगों को प्रदान किया जाता है। श्रोता, अमृता प्रीतम उन महान लेखिकाओं में से एक है। अगर उनकी रचनाओं, उनकी लेखन शैली पर बात करनी बैठो तो समय भी कम पड़ेगा। फिलहाल बातों को थोड़ा सा विराम देते हैं और ये गाना सुनते हैं सुबह सुहानी प्रोग्राम में।

सुबह सुहानी प्रोग्राम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। और चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स पर।

हाँ जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हो चुकी है, जहां दोनों देशों के बीच व्यापार, आपसी सहयोग और ऊर्जा के क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए गए, जिससे आपसी संबंधों को मजबूती मिलने की जो है वो इच्छा जताई जा रही है। और आने वाले समय में ही ये बात पता चलेगी कि दोनों देशों के संबंध कितने मजबूत बनने वाले हैं। वहीं वित्त मंत्री आज जो है वो शिकागो में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाली है। उन्होंने शिकागो में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। बात करें खेल जगत की, तो भारत के अभय सिंह द्वारा स्क्वैश ट्रॉफी जीत ली गई है और ये उनका 13वां खिताब है। वहीं दुबई में आयोजित की गई T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला में भारत ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है और ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया के बीच ये दोनों देश आमने सामने होने वाले हैं। चलिए चलते चलते नजर डालें आज के मौसम की, तो मौसम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में लगातार बारिश रहने की संभावना जताई गई है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहां पर मॉनसून ने एक बार फिर से जो है वो करवट बदली है और ये सक्रिय हो चुका है और आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ, राज्यों में 31 से 3 सितंबर तक भारी बारिश और भूस्खलन होने की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। तो चलिए, ये तो थी आज की कुछ लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स। फिलहाल रुख करते हैं फिर से गीत संगीत की दुनिया में और आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत। जुड़े रहिए आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर, प्रोग्राम चल रहा है सुबह सुहानी।

0: जी हाँ दोस्तों, ये जीवन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत सुंदर है, और ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हे ना हमें चुपके से चुराने पड़ते हैं, वरना ये ज़िंदगी हमें फुर्सत कहाँ देती है। इसलिए आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला। फिलहाल आज की सुबह सुहानी प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि हम कुछ ही पलों में लौटने वाले हैं शुभ ब्याह कार्यक्रम के साथ।
1: सुबह सुहानी,
0: जी हाँ, सुबह के 7:40 हो चुके हैं और यहाँ पर शुरुआत होने वाली है पहाड़ी लोकगीतों के कार्यक्रम शुभ ब्याह की। आज के शुभ ब्याह कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं राजेंद्र कुमार शर्मा की आवाज में गाए इस लोक भजन से।

हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ ब्याग इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम का अगला लोकगीत आइए सुनिए डॉक्टर हुकुम शर्मा की आवाज में।

शुभ ब्याह कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम का अगला लोकगीत आइए सुनिए लीलाधर की आवाज में।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं ये देश गान।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे देशकान 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है। देश और दुनिया का ताजा हाल समाचारों से जानने के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो समाचार प्रभात के लिए। 8:15 पर सुनिए मॉर्निंग न्यूज़।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल।

0: ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्र अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
5: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों

0: की संख्या 16 है जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है।
2: सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है।
3: IMD ने कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, केंदुझर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलांगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। IMD ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लद्दाख द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया क्योंकि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत DSV निपुण को शामिल करने जा रही है।
4: विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन वे अछरौनी और बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलीपुरद्वार के रहने वाले 2 लोग मोटरसाइकिल से दार्जिलिंग घूमने आए थे। रास्ते में

0: मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञान वर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0111-3104-8101-2331-4444। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं, नंबर है 9289094044। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIR News हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान, 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले 2 माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत, 4 विमानों से 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची, सुरंग बचाव विशेषज्ञ और फॉरेंसिक टीमें भी युद्ध स्तर पर जुटी। नक्सल मुक्त बस्तर को अब हथियार और विस्फोटक डंप फ्री करने में जुटी फोर्स, नारायणपुर के जंगल में राइफल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर BGL विस्फोटक का डंप जब्त, राजस्थान पत्रिका की खबर है। देहरादून की गुनगुन ने कैंसर को हराकर सौंदर्य का ताज जीता। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता P&I India 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र के अनुसार 2027 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व।
0: धन्यवाद विशाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए, जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi arrives in Bishkek on a 2-day visit to Kyrgyzstan to attend SCO summit and meet several SCO leaders on the sidelines. Finance Minister Nirmala Sitharaman says India is likely to sustain economic growth rate of 7% or more in financial year 2026-27. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. U.S. forces strike Iranian rocket launchers on Ladakh Island in Strait of Hormuz. Iran attacks U.S. bases in West Asia in retaliation. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026 in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Bishkek on a 2-day visit to Kyrgyzstan. He was received at the airport by Kasymaliyev Adilbek Alishovich, the

0: जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: डॉक्टर साहब,
2: हर बैंक के अलग अलग KYC पेपर्स, काश एक चाबी होती।
3: एक चाबी है CKYC आईडी।
2: CKYC मतलब?
3: बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट CKYC आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।
2: वाह, RBI कहता है
3: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
1: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
4: इसे अनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ, और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
1: जी डॉक्टर साहब,
4: सिर्फ इसे नहीं, सभी को अनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
5: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
6: डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर रोग एक खतरनाक बीमारी है।
3: इसमें बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, ज्यादा भूख लगना इत्यादि इसके लक्षण हैं। इसका शुरुआत में ही पता लगाना बहुत जरूरी है।
7: प्रदेश के हर स्वास्थ्य उपकेंद्रों में शुगर की मुफ्त जांच का प्रावधान है, अतः आप तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी शुगर की जांच करवाएं और अपनी आंखों और गुर्दे की गंभीर बीमारी होने से बचाएं।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
8: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ है आप, और इस वक्त सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पोडवाल और मनहर उदास व साथियों की आवाज में। फिल्म है हीरो।

श्रोता, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अभी बस इतना ही। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कानून की बात कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आज का विषय है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय श्रीमती अनुजा सूद और इनसे भेंट कर रहे हैं डॉक्टर हुकुम शर्मा। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र से भी सुन सकते हैं।
1: नमस्कार, कानून की बात कार्यक्रम में मैं हुकुम शर्मा आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, भारत जैसे विकासशील देश में उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उद्योग तभी सफल हो सकते हैं जब श्रमिक और नियोक्ता के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हों, परंतु जब वेतन, सेवा शर्तों, छंटनी या बर्खास्तगी जैसे मुद्दों पर मतभेद होते हैं तो औद्योगिक विवाद उत्पन्न होते हैं। इन्हीं विवादों को रोकने और सुलझाने के लिए अधिनियम बनाया गया है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। आज इसी अधिनियम पर हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आकाशवाणी स्टूडियोज में आज हमने आमंत्रित किया है अनुजा सूद जी को। आप पीठासीन अधिकारी हैं श्रम न्यायालय। अनुजा सूद जी, स्वागत है।

0: आकाशवाणी स्टूडियोज में आपका।
1: धन्यवाद।
0: औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जो है, ये है क्या?
1: सबसे पहले श्रोताओं को मेरा नमस्कार और मैं आकाशवाणी शिमला का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे आज चर्चा के लिए बुलाया है। जैसा कि आपने पूछा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 क्या है, तो ये भारत का एक केंद्रीय श्रम कानून है जिसका उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच उत्पन्न विवादों को रोकना और उनका शांतिपूर्ण समाधान करना है।
0: जी, तो जो ये औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जो है, इसकी शुरुआत की अगर हम चर्चा करना चाहें तो ये किस उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई?
1: जी, इस कानून का मुख्य लक्ष्य औद्योगिक शांति, जिसे हम इंडस्ट्रियल पीस भी कहते हैं, बनाए रखना है और ये नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है ताकि ना काम रुके और दोनों पक्षों के हितों की रक्षा भी हो सके।
0: जी अनिरुद्ध जी, औद्योगिक विवाद होते क्या हैं?
1: जी, धारा 2K के तहत कोई भी विवाद जो नियोक्ताओं और नियोक्ताओं या नियोक्ताओं और श्रमिकों या श्रमिकों और श्रमिकों के बीच में हो और जो रोजगार, काम की शर्तों या श्रम की परिस्थितियों से संबंधित हो, उसे हम औद्योगिक विवाद मानते हैं।
0: जैसे कि इसके नाम से मालूम होता है या हम अनुमान लगा सकते हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, तो क्या ये जो अधिनियम है ये 1947 में ही बना था, या जानना चाहेंगे कि ये अधिनियम कब बनाया गया?
1: जी, ये अधिनियम वर्ष 1947 में बनाया गया ताकि स्वतंत्र भारत में औद्योगिक शांति बनाए रखी जा सके और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। ये भारत का एक केंद्रीय श्रम कानून है जिसका उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच उत्पन्न विवादों को रोकना और उनका शांतिपूर्ण समाधान करना है।
0: औद्योगिक विवाद जो है, अगर इसकी हम परिभाषा जानना चाहेंगे तो क्या अभिप्राय है औद्योगिक विवादों से?
1: औद्योगिक विवाद वे विवाद हैं जो रोजगार, बेरोजगारी, सेवा शर्तों या काम की परिस्थितियों को लेकर श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच उत्पन्न होता है।
0: औद्योगिक विवाद किन-किन के बीच हो सकता है?
1: औद्योगिक विवाद नियोक्ता और श्रमिक के बीच में या नियोक्ता और नियोक्ता के बीच में या श्रमिक और श्रमिक के बीच में हो सकता है।
0: तो ये भी हमें बताएं कि इस अधिनियम में जो, जैसे आपने कहा कि तीन नाम लिए आपने, नियोक्ता, श्रमिक, तो ये इन दोनों में से जो श्रमिक है वो किसे कहा गया है?
1: श्रमिक वो व्यक्ति है जो किसी उद्योग में वेतन के बदले शारीरिक, तकनीकी, लिपिकीय, कुशल या अकुशल कार्य करता है, वह श्रमिक कहलाता है।
0: तो क्या कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो श्रमिक की श्रेणी में नहीं आते हैं?
1: जी हाँ, जैसे प्रबंधक हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, उच्च वेतन पाने वाले पर्यवेक्षक हैं या पुलिस और सशस्त्र बलों के सदस्य हैं।
0: ऐसे कौन कौन से संस्थान हैं जिन संस्थानों पर ये अधिनियम लागू होता है?
1: जी, ये अधिनियम कारखाने, खदानें, बागान, परिवहन सेवाएं, औद्योगिक और वाणिज्य प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।
0: वर्क्स कमेटी जो है ये क्या होती है?
1: वर्क्स कमेटी श्रमिकों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों की एक समिति होती है जो आपसी सहयोग सौहार्द बनाए रखने का कार्य करती है।
0: समझौता अधिकारी की भूमिका क्या रहती है?
1: समझौता अधिकारी को हम कंसिलेशन ऑफिसर भी कहते हैं। समझौता अधिकारी विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास करता है और अपनी रिपोर्ट इस बारे में सरकार को सौंपता है। जो ये समझौता अधिकारी होता है, इनका ज्यादा एंडेवर ये रहता है कि ये दोनों पार्टीज को किसी एक कंसिलेशन में, किस समझौते पर लाए, और जब समझौता नहीं होता है तो फिर सरकार को रिपोर्ट भेजी जाती है और उसके बाद फेलियर रिपोर्ट के बाद रेफरेंस हो जाता है
0: जी
1: कोर्ट के अंदर।
0: जी जी अनुजा सूद जी, श्रम न्यायालय जो है यो किस प्रकार के मामलों का निपटारा करता है?
1: जी, जैसे सेवा समाप्ति, बर्खास्तगी, हड़ताल, तालाबंदी की वैधता, अनुशासनात्मक कार्यवाही इत्यादि के जो भी मामले होते हैं उनका निपटारा करता है।
0: औद्योगिक अधिकरण क्या है?
1: औद्योगिक अधिकरण वेतन, भत्ते, कार्य घंटे, अवकाश व अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विवादों का निपटारा करता है।
0: राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण कब गठित किया जाता है?
1: जब कोई औद्योगिक विवाद राष्ट्रीय महत्व का हो या एक से अधिक राज्यों से संबंधित हो।
0: हड़ताल क्या होती है?
1: हड़ताल, जब श्रमिक सामूहिक रूप से काम करना बंद कर देते हैं तो उसे हड़ताल कहा जाता है।
0: जी, तो हड़ताल और जो तालाबंदी है, तो ये दोनों क्या अलग-अलग हैं? और अगर अलग-अलग हैं तो फिर तालाबंदी क्या होती है?
1: तालाबंदी, नियोक्ता अस्थायी रूप से कार्यस्थल बंद कर देता है, उसे तालाबंदी कहते हैं। और बहुत बार हम

0: हड़ताल और तालाबंदी का अंतर समझ नहीं पाते, हमें इसे एक ही मतलब निकालते हैं, लेकिन हड़ताल और तालाबंदी दो अलग शब्द हैं और इनका लेबर लॉज में अलग मीनिंग है। हड़ताल ये श्रमिकों का अधिकार है, जब श्रमिक मिलकर काम करने से मना कर देते हैं उसे हड़ताल कहते हैं, और तालाबंदी ये नियोक्ता का अधिकार है और हथियार भी है, और जब मालिक अस्थायी रूप से कार्यस्थल को बंद कर देता है या काम करने से मना कर देता है तो उसे तालाबंदी कहते हैं।
1: लोक उपयोगिता सेवाएं क्या होती हैं?
0: वे सेवाएं जो जनता के दैनिक जीवन से जुड़ी हों, जैसे जल, बिजली, परिवहन, डाक इत्यादि।
1: लोक उपयोगिता सेवाओं में हड़ताल के क्या नियम हैं?
0: हड़ताल से पहले निर्धारित समय में पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है।
1: अवैध हड़ताल या तालाबंदी का क्या परिणाम होता है?
0: अवैध हड़ताल या तालाबंदी करने पर जुर्माना या कारावास का प्रावधान है।
1: जी, तो जो ले ऑफ है ये क्या होता है?
0: जब नियोक्ता अस्थायी रूप से काम की कमी के कारण श्रमिकों को काम नहीं देता तो उसे ले ऑफ कहते हैं।
1: छंटनी से क्या तात्पर्य है?
0: जब अतिरिक्त श्रमिकों को स्थायी रूप से सेवा से हटाया जाता है तो उसे छंटनी कहते हैं।
1: छंटनी से पहले कोई क्या कुछ आवश्यक बातें हैं?
0: जी, इसकी पूर्व सूचना देना जरूरी है, मुआवजा देना जरूरी है और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना भी जरूरी है।
1: तो क्या कोई व्यक्तिगत श्रमिक विवाद भी उठा सकता है?
0: जी हाँ, बर्खास्ती, सेवा समाप्ति या छंटनी से संबंधित मामलों में व्यक्तिगत श्रमिक भी विवाद उठा सकता है।
1: इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
0: जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है औद्योगिक शांति को बनाए रखना और श्रमिक और नियोक्ताओं के बीच में संतुलित स्थापित करना।
1: क्या ये जो अधिनियम है ये केवल श्रमिकों के हित में है?
0: जी नहीं, यह अधिनियम श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा करता है।
1: इस अधिनियम का राष्ट्रीय विकास से क्या संबंध है?
0: औद्योगिक शांति से उत्पादन बढ़ता है, रोजगार सुरक्षित रहता है और देश का आर्थिक विकास भी होता है।
1: जसूत जी, अगर कोई विवाद हो जाए तो उसे सुलझाने के लिए क्या रास्ते उपलब्ध हैं?
0: विवाद सुलझाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं और अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जैसे कोई विवाद हो जाता है तो पहले वो वर्क्स कमेटी, जो कार्य समिति है, वो छोटे मोटे विवाद, जो आपसी विवाद होते हैं, वो वहीं पे सुलझाने का प्रयास करती है। इसके पास अगर मामला नहीं सुलझता तो फिर कंसलेशन ऑफिसर, जो सुलहाधिकारी हैं, उनके माध्यम से समझौता कराने की कोशिश की जाती है, और अगर वहां भी नहीं होता है देन लेबर कोर्ट, जो ट्रिब्यूनल है, उसमें जब आपसी बातचीत विफल हो जाती है तब कानूनी रूप से उसका फैसला किया जाता है।
1: क्या कोई कंपनी जो है वो कभी भी अपने कर्मचारियों को निकाल सकती है कार्य से?
0: नहीं, इसके कड़े नियम हैं। यदि किसी संस्थान में 100 से अधिक श्रमिक हैं तो छंटनी या संस्थान बंद होने से पहले सरकार की अनुमति लेना और श्रमिकों को उचित नोटिस और मुआवजा देना अनिवार्य होता है।
1: अनुचित श्रम व्यवहार क्या होता है और इसके लिए क्या सजा है?
0: श्रमिकों को यूनियन बनाने से रोकना, डराना धमकाना या अवैध तरीके से काम से निकालना अनुचित श्रम व्यवहार की श्रेणी में आता है। इसके लिए जुर्माना और 6 महीने तक की कैद दोनों का ही प्रावधान है।
1: क्या कोई मालिक अचानक काम के घंटे बदल सकता है या छुट्टी कम कर सकता है?
0: जी नहीं, धारा 9A के तहत अगर नियोक्ता सेवा की शर्तों, जैसे वेतन, काम के घंटे, छुट्टियां लेने में बदलाव करना चाहता है तो उसे श्रमिकों को 21 दिन का पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होता है। बिना नोटिस के किया गया बदलाव हमेशा ही अवैध माना जाता है।
1: जब कोई मामला लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में जाता है तो वहां फैसला कैसे होता है?
0: जब कोई मामला ट्रिब्यूनल के समक्ष आता है तो दोनों ही पक्षों को अपना अपना पक्ष रखना होता है और उसके लिए सबूत देना होता है, जिसे ट्रिब्यूनल देखता है कि क्या सबूत आए हैं, और इसके पास दीवानी अदालत जैसी शक्तियां भी होती हैं, और ट्रिब्यूनल का फैसला को अवार्ड कहा जाता है और दोनों पक्षों पर कानूनी रूप से वो बाध्य भी होता है।
1: जी, तो हमारा जो श्रमिक वर्ग है आमतौर पर वो ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं। अनुजा सूद जी, हमारे जो तमाम इस तरह के लोग हैं, कामगार लोग हैं, श्रमिक की श्रेणी में जो लोग आते हैं, अगर उनको कभी लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है या कोई दुर्व्यवहार हो रहा है तो उनके लिए आप कोई साधारण सी बातें जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए कि वो किस तरह से अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करवाएं और क्या उनको आगे के मतलब कदम उठाने चाहिए?
0: देखिए, जब भी कोई श्रमिक को ऐसा लगता है कि उसके साथ अनुचित व्यवहार होता है या टर्मिनेशन हो रहा है या क्लोजर कर देती है कई बार कंपनी बिना किसी कॉम्पनसेशन के या नोटिस के बिना, या चेंज ऑफ सर्विस कंडीशन कर देती है बिना नोटिस दिए, जिसके लिए कि 9A का नोटिस देना जरूरी होता है, तो इस तरह के मामलों में वो प्रबंधन को भी लिख सकते हैं, और उसके बाद अगर वो प्रबंधन नहीं सुनता है तो जो लेबर ऑफिसर है, कंसलेशन ऑफिसर

0: हैं, उनके माध्यम से अपनी डिमांड्स को उठा सकते हैं। और अगर वहां भी कोई कंसलेशन नहीं होती है तो फिर वो अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं।
1: जी, तो कई बार ऐसा भी आपके सामने कई केसेस आते होंगे जब कोई श्रमिक कहीं कार्य कर रहा है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है या कोई चोट वगैरह लग जाती है किसी को, और कई बार गंभीर चोट भी लग सकती है, तो उस स्थिति में भी क्या श्रमिकों के लिए कानून में कोई प्रावधान है जो उनकी सहायता करते हैं?
0: जी बिल्कुल, अगर उसको कोई चोट लग जाती है तो एक तो ये ईएसआई के माध्यम से सब कवर्ड रहता है, उनको खर्चा मिलता है, और चोट लग जाती है तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन के लिए हकदार रहते हैं।
1: जी, और क्या महिलाओं के लिए कुछ विशेष अधिकार भी हैं? क्योंकि देखिए, पुरुषों और महिलाओं में अगर वो काम कर रहे हैं, दोनों ही श्रमिक हैं, तो कुछ तो अंतर होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अपनी गृहस्थी भी देखनी है, अगर छोटे बच्चे हैं उनको भी संभालना है, और साथ साथ में मेरे ख्याल से जो भी कोई श्रम करता है, कोई दिहाड़ीदार जो लोग हैं, उनके लिए कोई विशेष प्रावधान भी रहते हैं क्या?
0: वर्क प्लेस में एनवायरनमेंट क्रिएट करना महिलाओं के लिए फ्रेंडली हो, वो एक जिम्मेदारी रहती है नियोक्ता की। ऐसा कुछ स्पेशल कुछ उनको अधिकार नहीं दिए गए हैं इस कानून के अंदर कि महिला होने के हिसाब से उनको कुछ स्पेशल अधिकार मिलेंगे, लेकिन मैं एक बात इस मंच के माध्यम से जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर कोई महिला के साथ कोई भी श्रम कानून का उल्लंघन करके उसको निकाला जाता है या चेंज ऑफ सर्विस कंडीशन होता है या और कोई भी जिससे उसको लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, तो वो इसको चैलेंज भी कर सकती है, और क्योंकि वो महिला है इसलिए उसे फ्री लीगल एड की भी सुविधा मिलती है, जो
1: जी
0: कि फ्री लीगल एड जो है वो जो भी कानूनी सहायता मुफ्त मिलती है उसके सारे प्रावधानों के अंतर्गत हमारे पास भी वो केस कर सकती है और उसको उसका लाभ भी मिलता है।
1: जी तो कार्यस्थल पर कुछ सुविधाएं तो महिलाओं को मिलती ही होंगी, जैसे अलग से टॉयलेट की सुविधा होना बहुत
0: जी जी
1: जरूरी
0: बिल्कुल,
1: है,
0: जी बिल्कुल,
1: इस तरह की
0: इस
1: कोई
0: तरह
1: तो?
0: की हाँ वो जो सुविधाएं बेसिक सुविधाएं हैं
1: जी
0: वो तो देना जरूरी ही है, जरूरत हो वहां क्रच की सुविधा भी देना महिलाओं को जरूरी है, वो
1: जी
0: प्रावधान इसमें एक्ट में है।
1: जी यानी जहाँ हमारे कुछ कर्तव्य हैं वहीं अधिकार भी है, उन अधिकारों का हम सही तरीके से हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। अनुजा सूद जी, आज आप आकाशवाणी स्टूडियोज में आई और आपने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 पर विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारियां दी। आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, इसी के साथ कानून की बात कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।

जी हाँ लिसनर, सुबह के 9 बज चुके हैं और आज की मंडे मॉर्निंग की भागम भरी शुरुआत जो है ना वो शुरू हो चुकी है एक फुर्सत भरे संडे को बिताने के बाद, और सभी अपने रूटीन पर लौटने के लिए एकदम से तैयार है। तो चलिए भाई, ऐसे में हम भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, हम भी लौट कर आ गए हैं लेकर आपकी ईमेल बेस्ड प्रोग्राम गीतांजलि को लेकर। आज के इस प्रोग्राम में आप भी जल्दी से शामिल हो जाइए अपनी प्यारी प्यारी सी मेल्स के साथ और भेज दीजिए इसे musicmail@gmail.com पर। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। मेल करने के लिए आपको टाइप करना होगा अपना नाम, अपनी लोकेशन और इसे सेंड करना होगा musicmail@gmail.com पर। यहाँ पर हम भी तैयार है आपको सुनवाने के लिए कुछ प्यारे प्यारे से गीत आपके नाम आपकी पसंद के साथ। तो देर किस बात की, जल्दी से मेल भेजने का सिलसिला शुरू कीजिए और तब तक हम आपके लिए प्ले करते हैं ये प्यारा सा गीत। आप दिल से जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी धर्मशाला केंद्र पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जी हाँ, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र को, जहाँ पर इस वक्त आप सभी के लिए लेकर आए हैं हम आज ईमेल बेस्ड प्रोग्राम गीतांजलि। और आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं अपनी मेल्स के जरिए और सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। तो चलिए भाई, अपने लिसनर्स की मेल्स को प्रोग्राम में शामिल करने का सिलसिला शुरू करते हैं और बताते हैं कि पहली मेल हमें कहां से मिली है। जी हाँ, संबलपुर कांकेर से हमें मेल किया है फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने। ये सभी सुनना चाहते हैं ओम शांति ओम फिल्म से कोई सा भी गीत। और अगली मेल हमें मिली है जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से। मेल करने वाले हैं शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, राखी जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल। नेक्स्ट मेल जो हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं वो है पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बारमेर राजस्थान से। मेल किया है बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार, खलीफों की बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान और डांगरी से बाबू राम जयपाल की। ये सभी सुनना चाहते हैं हमारी पसंद से कोई सा भी गीत। और अगली मेल जो हमें मिली है वो भी सुनना चाहते हैं ओम शांति ओम फिल्म से कोई सा भी गीत। मेल किया है दादा बाबू रेडियो गिरडी झारखंड से। मेल करने वाले हैं मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज़ और बेबी चाहत की। और अगली जो मेल हमें आई है बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू की। डुमराव बिहार से मेल किया है डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, दिनेश अंसारी गोलाबाजार बक्सर से, श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य सारीमपुर बक्सर से, राज डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल अंसारी की। तो चलिए, आप तमाम सुनने वालों के लिए हम प्ले करने जा रहे हैं ओम शांति ओम फिल्म से ये गीत। आप यूं ही हमें फटाफट से मेल भेजते रहिए और हम यहां से प्ले करते रहेंगे आपके लिए कुछ बेहतरीन से म्यूजिकल नंबर। सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला, प्रोग्राम चल रहा है गीतांजलि।

जी हाल, इस तारीफ तो हमारे लिसनर्स की भी बनती है जो इतनी शिद्दत से, इतने प्यार से हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमें प्यारी प्यारी सी मेल्स भेजकर हमारी हौसला अफजाई करती है और हमारे इस प्रोग्राम को बेहद ही खूबसूरत बना देते हैं। प्रोग्राम में अगली मेल जो हम शामिल कर रहे हैं वो हमें मिली है सिंघम रिटर्न फिल्म के लिए। मेल किया है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा ओम प्रकाश मल्होत्रा ने। और इसके साथ अगली मेल जो हम शामिल कर रहे हैं वो हमें मिली है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। मेल किया है सुल्तान सिंह तरार, कपिल देव तरार और हेमानी जखर ने। लिखकर भेजा है नमस्कार जी, और हमारी तरफ से भी आपको नमस्कार। ये लिख रहे हैं कि किसी भी गीत में हमारे नाम को शामिल कर दीजिए। मेल किया है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और डब्बू ने। अगली मेल हम तक पहुंची है हनुमानगढ़ राजस्थान से ही रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जिसहान खान की। इसके साथ ही अगली मेल जो हमें मिली है गांव फरासी हिसार से। मेल किया है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने। तो चलिए इन सभी के लिए हम जल्दी से प्ले कर देते हैं सिंघम रिटर्न फिल्म का ये गीत। आप यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर।

श्रोता, ईमेल पर आधारित प्रोग्राम गीतांजलि यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल समय हो रहा है प्रादेशिक समाचारों का। 9:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। और प्रादेशिक समाचारों के एक बार फिर से दोबारा से आप सुन पाएंगे गीतांजलि प्रोग्राम का शेष भाग।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 3 दिन के अवकाश के बाद आज फिर होगा शुरू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, भ्रष्टाचारियों की अवैध संपत्तियां जब्त कर गरीबों में की जाएंगी वितरित। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध की जाएगी सख्त कार्रवाई। सेब उत्पादक संघ ने राज्य सरकार से मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब और अन्य फलों का बकाया भुगतान जल्द करने का किया आग्रह। और प्रदेश में मॉनसून फिर सक्रिय, मौसम विभाग ने 3 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। 3 सितंबर तक प्रदेश भर में भारी बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 3 दिन के अवकाश के बाद आज फिर शुरू होगा। सदन की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। इस दौरान अनेक विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
3: मुख्यमंत्री आज सदन में 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज रखेंगे, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के यात्रा भत्ता संशोधन नियम 2026 और दूसरा दस्तावेज मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन है। इसके साथ ही कल्याण समिति के सभापति मोहन लाल ब्राक्टा अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। नियम 62 के तहत 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में चर्चा के लिए लाए जाएंगे, जिसमें फतेहपुर के विधायक भवानी सिंह पठानिया डिपो होल्डरों द्वारा किसानों को सामान्य यूरिया के साथ जबरन नैनो यूरिया प्लस बेचने का मामला उठाएंगे। वहीं श्री नैना देवी से विधायक धीर शर्मा अपने क्षेत्र की संपर्क सड़कों की बदहाल स्थिति पर सरकार से जवाब मांगेंगे। वहीं नियम 130 के तहत 2 अहम प्रस्तावों पर आज चर्चा होगी, जिसमें विपक्ष के विधायकों द्वारा युवाओं के लिए रोजगार संदर्भित गारंटी

0: लागू करने की मांग को लेकर प्रस्ताव चर्चा में लाया जाएगा। वहीं शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया जल विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी, फ्री पावर और जल उपकरण की बकाया वसूली को लेकर प्रस्ताव सदन में चर्चा के लिए रखेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में लोगों से सहयोग की अपील की है। कांगड़ा जिले के देहरा में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के सभी रास्ते बंद करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल सभी लोगों से उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का ब्यौरा मांगा जाएगा और ऐसी संपत्तियों को जब्त कर गरीबों में वितरित किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि सड़क निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं होगी और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोहडू विधानसभा क्षेत्र के कोटीबाई में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़कों के निर्माण और सुधार कार्यों पर लगभग 120 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में किसी भी अवरुद्ध सड़क को 24 घंटे के भीतर खोलने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। हिमाचल सेब उत्पादक संघ ने राज्य सरकार से मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब और अन्य फलों का बकाया भुगतान जल्द करने की मांग की है। संघ के राज्य कमेटी सदस्य संजय चौहान ने कहा कि जरूरी दस्तावेज जमा करने के बावजूद भी कई किसानों के खातों में बकाया राशि जमा नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि MIS के तहत सेब खरीद में सामने आई अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। संजय चौहान ने खरीद व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और संग्रहण केंद्रों पर नियुक्तियों के लिए स्पष्ट नियम बनाने की भी सरकार से मांग की है। प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 18 संगठनों के पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर कल शिमला के चौड़ा मैदान में एक विशाल आक्रोश रैली निकालने का निर्णय लिया है। शिमला से जारी एक बयान में समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि ये धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक पेंशनर्स की सभी देनदारियां सरकार द्वारा चुकता नहीं की जाती। उन्होंने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि पेंशनर्स व कर्मचारियों को 15% महंगाई भत्ते सहित अन्य मांगों के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। विधायक संजय अवस्थी ने अर्की विधानसभा क्षेत्र के राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 3 दिवसीय खंड स्तरीय अंडर 19 छात्र वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता का कल शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में 22 स्कूलों के 334 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों से खेलों में भाग लेने और नशे से दूर रहने का आह्वान किया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
3: इसे एनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
2: जी डॉक्टर साहब,
3: सिर्फ इसे नहीं सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
4: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का दूसरा चरण कल से शुरू हो रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और अन्य सामाजिक पहलुओं से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। सिरमौर जिले में भी बर्फबारी वाले नौहराधार क्षेत्र के 10 गांवों में भी ये जनगणना होगी। हमारे सिरमौर जिला संवाददाता ने बताया कि इसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
5: सिरमौर जिला में जनगणना 2027 के द्वितीय चरण में तहसील नौराधार के बर्फबारी प्रभावित इलाकों की जनगणना की जाएगी, जिसमें नौराधार क्षेत्र के 10 गांव शामिल है, जिनमें मुख्य रूप से नौराधार, बांदल, चाड़ना, चुनवी बोर्ड, सेल, गंडूरी, चौरास्टारना, तलंगाना, चूरधार और भोग भटेवरी शामिल है। जनगणना का ये कार्य 1 सितम्बर से 30 सितम्बर तक चलेगा। जनगणना अधिकारी घर घर जाकर क्षेत्र के करीब 9675 लोगों की जनगणना संबंधी जानकारी एकत्रित करेंगी। डीसी सिरमौर प्रियंका।

0: वर्मा द्वारा लोगों से सहयोग की अपील की जा रही है ताकि भविष्य में विकास कार्यों के लिए नीति निर्धारण हेतु जनगणना उपयोगी साबित हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
1: चंबा पुलिस ने विश्व प्रसिद्ध मणि महेश यात्रा के सफल संचालन के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये यात्रा 4 सितंबर से 19 सितंबर के बीच चलेगी। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि लोगों की सुरक्षा व बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि यात्रा क्षेत्र को 13 सेक्टरों में बांटा गया है।
2: जो मणि महेश यात्रा है इसको 13 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, राइट फ्रॉम चंबा टू डल लेक तक। इसमें 13 सेक्टर डिवाइड किए हैं जिसमें लगभग 500 के लोग जो हैं इसमें होमगार्ड, पुलिस तथा अन्य लोग जो हैं सम्मिलित रहेंगे, ड्यूटीज करेंगे। इसमें हमने 4 कमांड नाके बनाए गए जिसमें तुन्नू भट्टी सी, लाडू बैरियर, महिला तथा हटसर। इस बार जो यात्रा होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही संभव हो पाएगी, तो सभी लोगों से मेरी ये भी विनम्र रहेगा कि अपना रजिस्ट्रेशन कराएं तभी यात्रा पे प्रोसीड करें आगे।
1: प्रदेश के अनेक भागों में कल हुई व्यापक वर्षा के बाद आज अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 3 सितंबर तक प्रदेश के कई जिलों में अंधड़ व भारी बारिश की संभावना जताई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार भूस्खलन के कारण प्रदेश में 64 सड़कें अवरुद्ध हैं। इसके अलावा 226 विद्युत ट्रांसफार्मर और 9 पेयजल योजनाओं पर भी असर पड़ा है। इस मॉनसून सीजन में बारिश और इससे जुड़े हादसों में अब तक 253 लोगों की मौत जबकि 462 लोग घायल हुए हैं। बारिश और प्राकृतिक आपदाओं में 451 मवेशियों की भी मौत हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस मॉनसून सीजन में अब तक प्रदेश में सामान्य से 10% कम बारिश हुई है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द हैं, भाखड़ा कोल डैम समेत बांधों की सुरक्षा में लगेंगे एंटी ड्रोन सिस्टम। दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान को शीर्षक दिया है, भाजपा छोड़ गई थी 76,707 करोड़ का कर्ज। दैनिक सवेरा टाइम्स की खबर है, हिमाचल हाईकोर्ट को मिले 3 नए जज, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने दिलाई शपथ। महंगाई पर भारी आस्था, हिमाचल के 30 मंदिरों में जमा है 6.25 क्विंटल सोना और 254 क्विंटल चांदी, दैनिक भास्कर की एक खबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 3 दिन के अवकाश के बाद आज फिर होगा शुरू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, भ्रष्टाचारियों की अवैध संपत्तियां जब्त कर गरीबों में की जाएंगी वितरित। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध की जाएगी सख्त कार्रवाई। सेब उत्पादक संघ ने राज्य सरकार से मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब और अन्य फलों का बकाया भुगतान जल्द करने का किया आग्रह। और प्रदेश में मॉनसून फिर सक्रिय, मौसम विभाग ने 3 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी, 3 सितंबर तक प्रदेश भर में भारी बारिश के आसार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
3: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
4: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
3: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
4: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
3: जानकारी लें, अधिकार जाने।
4: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। ईमेल बेस्ड प्रोग्राम गीतांजलि में स्वागत करते हैं और आगे के प्रोग्राम को हम यूं ही जारी रखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे कुछ संदेश।
6: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए

और आपको एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं हमारा ईमेल एड्रेस, और आपको मेल करने के लिए ईमेल करना है musicmaildshala@gmail.com पर। जी हाँ, अपनी नाम और लोकेशन लिखना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि हम ये जो है वो ट्रेस कर पाए कि हमारे लिसनर्स हमें कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं। चलिए अगली मेल शामिल करते हैं, जो कि हमें मिली है हाथ की सफाई फिल्म के लिए। हरियाणा से मेल किया है, मेल करने वाले हैं दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। इसके साथ ही अगली मेल हमें मिली है, ये लिख रहे हैं, गीतांजलि प्रोग्राम प्रस्तुत करने वालों को प्यार भरा नमस्कार। जी, हमारी ओर से भी आपको प्यार भरा नमस्कार। मेल किया है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से, और मेल करने वाले हैं अशोक श्याम कुंवर, प्रमिता श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर, और इनके साथ ही है अनुश्री श्याम कुंवर। अगली मेल हमें मिली है, ये लिखकर भेज रहे हैं कि प्लीज़ किसी भी गाने में हमारा नाम शामिल कर लीजिए। मेल किया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, मेल किया है टीडी मल्होत्रा, रितिका मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप ने। और कालका से मेल किया है शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टू बजाज ने। इसके साथ ही कृष्णा पार्क दिल्ली से मेल किया है सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना गुरवंश सिंह जोड़ा ने। और अगली मेल जो हम शामिल कर रहे हैं वो हमें मिली है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरड़ी से, मेल करने वाले हैं नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से, जय लाम से, हर्षिता लाम से। और एक और मेल जल्दी से हम शामिल कर लेते हैं, जो कि हमें मिली है दतरेंगी से, मेल करने वाले हैं भागवत वर्मा, शांति वर्मा, लीलावती वर्मा, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। तो चलिए, आप सभी हमें यूं ही मेल करते रहिए और हम यहाँ से आपकी फरमाइश पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल सुनते हैं हाथ की सफाई फिल्म का ये गीत।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: जी हाँ, हमारे लिसनर्स लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी प्यारी प्यारी सी मेल्स के जरिए अपना प्यार हम तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए ना, हमारी भी यही पूरी कोशिश है कि हम जितने ज़्यादा हो सके आपकी फरमाइश को पूरी करें। और हो सके कई बार ये भी होता है कि हम आपकी फरमाइश के सभी गाने यहाँ से प्ले नहीं कर पाते हैं, तो आपको निराश होने की कतई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी न किसी गाने के ज़रिए हम आपके नाम को इस प्रोग्राम में शामिल ज़रूर करते हैं। बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मेल्स को पढ़ने का सिलसिला एक बार फिर से जारी करते हैं। अगली मेल हमें मिली है जेवरा हिसार से। मेल करने वाले हैं वीरेंद्र भयान, इनके साथ ही है सुरेंद्र भयान, शमशेर भयान और मनोज भयान। ये लिख रहे हैं, किसी भी गीत में हमारा नाम शामिल कर दीजिए। अगला मेल हमें मिला है जनकपुरी सहारनपुर से। मेल करने वाले हैं जॉन डिक्रेस्ट्रो और इनके साथ ही है रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। ये सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में कोई सा भी गीत। अगली मेल हमें मिली है दिल तुझको दिया फिल्म के लिए फरमाइश कर रहे हैं। मेल किया है दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। मेल करने वाले हैं हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नौखेलाल वर्मा। इसके साथ ही अगली मेल जो हम शामिल कर रहे हैं वो हमें मिले हैं नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से। मेल किया है अब्दुल गफ्फार डाबर खुशनसीब ने, इनके साथ ही है अब्दुल हक डाबर, जियाउद्दीन हक डाबर और मोहम्मद उमर डाबर और साथ ही है राजेंद्र कटारे, जो कि हमें ये मेल किया था। अगला मेल हमें आया है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी का। तो चलिए, इन सभी के लिए हम जल्दी से प्ले कर देते हैं दिल तुझको दिया फिल्म का ये गीत। आप यूं ही प्यारी प्यारी सी मेल्स हमें भेजते रहिए और सुनते रहिए यहाँ से प्यारे प्यारे से गाने।

आप सुन रहे हैं ईमेल बेस्ड प्रोग्राम गीतांजलि, और इस प्रोग्राम में जो है वो अब समय समाप्ति की ओर है। जी हाँ, हमारी स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है ठीक सुबह के 9:47 और देखिए आप जल्दी जल्दी से अपनी मेल्स भेजकर इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद का कोई सा भी गीत। प्रोग्राम में अगली मेल हमें मिली है प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा मध्य प्रदेश से। मेल करने वाले हैं आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी और फाल्गुनी जोशी। ये लिख रहे हैं, प्लीज़ किसी भी गीत के साथ हमारा जो है वो नाम शामिल कर दीजिए और हमारी फरमाइश को पूरा कर दीजिए। तो चलिए, ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। फ़िलहाल अगली मेल को हम शामिल कर लेते हैं जो कि हमें मिली है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस माऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। मेल करने वाले हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। इसके साथ ही अगली मेल जो हम शामिल कर रहे हैं वो है शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से, और मेल करने वाले हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार की। एक दूजे के लिए इस फिल्म से गीत सुनने के लिए हमें मेल किया है जेवरा हिसार से वीरेंद्र भयान, सुरेंद्र भयान, शमशेर भयान और मनोज भयान ने, और मुझे लगता है कि इनकी मेल हम एक बार पहले भी शामिल कर चुके हैं। कोई बात नहीं, अगली मेल जो हमें मिली है वो है नरगोंडा छत्तीसगढ़ से। मेल करने वाले हैं महाराज कीर्तन और इनके साथ है पुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। अगली मेल हमें मिली है रिंगनी छत्तीसगढ़ से। मेल किया है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने। तो चलिए, आप सभी के लिए हम प्ले करने जा रहे हैं एक दूजे के लिए फिल्म का ये गीत। आप यूं ही सुनते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर प्रोग्राम चल रहा है गीतांजलि।

बने हुए हैं आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ, जहां पर इस वक्त आप सुन रहे हैं ईमेल बेस्ड प्रोग्राम गीतांजलि। जी हाँ श्रोता, प्रोग्राम के आखिर में जिन लिसनर्स की मेल्स को हम शामिल कर रहे हैं वो है, हमें मेल करने वाले हैं बठेणा पाटन जिला दुर्गपुर छत्तीसगढ़ से मेल किया है बलकरण वर्मा, अंजलि, चितेश, रेखा वर्मा, ज्योति और इनके साथ ही है प्रहलाद वर्मा और धनेश्वरी वर्मा। अगली मेल हम तक पहुंची है जिला नांदेड़ येताल महाराष्ट्र से, शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णब जायसवाल, राखी जायसवाल और दुर्गेश जायसवाल की और इनके साथ ही है तृप्ति जायसवाल। हमारी पसंद से कोई सभी गीत सुनने के लिए गांधी चौक बारमेर राजस्थान से मेल किया है बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीषा पवार, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा और रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जायसवाल और पद्मा कॉलोनी, नेपानगर मध्य प्रदेश से मेल कर रहे हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, ये सुनना चाहते हैं हिना फिल्म का कोई सा भी गीत। चलिए इन सभी के लिए प्ले करते हैं हिना फिल्म से ये गीत।

जी हाँ लिसनर्स, हमारे प्यारे प्यारे से कई लिसनर्स इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े, उनकी प्यारी प्यारी सी मेल्स को हमने इस प्रोग्राम में शामिल किया। फिलहाल कार्यक्रम के आखिर में हमने आपके लिए प्ले किया है ना फिल्म से ये गीत, और इसी कार्यक्रम के साथ आज का गीतांजलि

प्रोग्राम यहीं पर संपन्न करने की, अपनी दोस्त को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नए समय पर नए नए प्रोग्राम्स के साथ। आपको छोड़े जाते हैं इस गीत के साथ, एंजॉय कीजिए और दिल से हमारे साथ यूं ही बने रहिए आकाशवाणी धर्मशाला पर।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों का कारवां। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त सचिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार।

साजन फिल्म का ये गीत श्रोता अभी सुन रहे थे। अनुराधा पौडवाल की आवाज थी, नदीम श्रवण का संगीत था। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं ईमान बेईमान फिल्म का ये गीत। राजेश रोशन का संगीत है, आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: देवदास फिल्म से गीत श्रोता अभी सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें थी।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

राज फिल्म का गीत अभी आपने सुना। अभिजीत ने इस गीत को गाया था और अब आपको सुनवा रहे हैं आज के इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, जीना सिर्फ मेरे लिए। इस फिल्म का ये गीत है, अलका याग्निक, बाबुल सुप्रियो और साथियों की आवाजें हैं।

जीना सिर्फ मेरे लिए इस फिल्म के इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम गीतों का कारवां यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर।

प्रेम सिंह और साथियों की आवाजों में ये लोकगीत अभी आपने सुना। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला लोकगीत आपको सुनवा रही है अनीता परमार का गाया हुआ

पहाड़ों के सुर लोक संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब आपको सुनवा रहे हैं बलदेव संख्यान का गाया ये लोकगीत।

अभिषेक सोनी का गाया हुआ ये लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। लोकगीतों का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

मानसिंह के गाए इसी लोकगीत के साथ आज का पहाड़ों के सुर कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिली किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 3 दिन के अवकाश के बाद आज फिर शुरू होगा। सदन की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। इस दौरान अनेक विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
1: मुख्यमंत्री आज सदन में 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज रखेंगे, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के यात्रा भत्ता संशोधन नियम 2026 और दूसरा दस्तावेज मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन है। इसके साथ ही कल्याण समिति के सभापति मोहन लाल ब्राक्टा अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। नियम 62 के तहत 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में चर्चा के लिए लाए जाएंगे, जिसमें फतेहपुर के विधायक भवानी सिंह पठानिया डिपो होल्डरों द्वारा किसानों को सामान्य यूरिया के साथ जबरन नैनो यूरिया प्लस बेचने का मामला उठाएंगे। वहीं श्री नैना देवी से विधायक धीर शर्मा अपने क्षेत्र की संपर्क सड़कों की बदहाल स्थिति पर सरकार से जवाब मांगेंगे। वहीं नियम 130 के तहत 2 अहम प्रस्तावों पर आज चर्चा होगी, जिसमें विपक्ष के विधायकों द्वारा युवाओं के लिए रोजगार संदर्भित गारंटी लागू करने की मांग को लेकर प्रस्ताव चर्चा में लाया जाएगा। वहीं शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया जल विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी, फ्री पावर और जल उपकरण की बकाया वसूली को लेकर प्रस्ताव सदन में चर्चा के लिए रखेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में लोगों से सहयोग की अपील की है। कांगड़ा जिला के देहरा में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के सभी रास्ते बंद करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल सभी लोगों से उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का ब्यौरा मांगा जाएगा और ऐसी संपत्तियों को जब्त कर गरीबों में वितरित किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि सड़क निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं होगी और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोहडू विधानसभा क्षेत्र के कोटीबाई में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़कों के निर्माण और सुधार कार्यों पर लगभग 120 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में किसी भी अवरुद्ध सड़क को 24 घंटे के भीतर खोलने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 18 संगठनों के पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर कल शिमला के चौड़ा मैदान में एक विशाल आक्रोश रैली निकालने का निर्णय लिया है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि यह धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक पेंशनर्स की सभी देनदारियां सरकार द्वारा चुकता नहीं की जाती। उन्होंने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि पेंशनर्स व कर्मचारियों को 15% महंगाई भत्ते सहित अन्य मांगों के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही दिए जा रहे हैं।

0: प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का दूसरा चरण कल से शुरू हो रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और अन्य सामाजिक पहलुओं से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। सिरमौर जिले में भी बर्फबारी वाले नौहराधार क्षेत्र के 10 गांवों में भी ये जनगणना होगी। हमारे सिरमौर जिला संवाददाता ने बताया कि इसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
1: सिरमौर जिला में जनगणना 2027 के द्वितीय चरण में तहसील नौराधार के बर्फबारी प्रभावित इलाकों की जनगणना की जाएगी, जिसमें नौराधार क्षेत्र के 10 गांव शामिल है, जिनमें मुख्य रूप से नौराधार, बांदल, चाड़ना, चुनवी बोर, सेल, गंडूरी, चौरास्टारना, तलंगाना, चूरधार और भोग भटेवरी शामिल है। जनगणना का ये कार्य 1 सितम्बर से 30 सितम्बर तक चलेगा। जनगणना अधिकारी घर घर जाकर क्षेत्र के करीब 9,675 लोगों की जनगणना संबंधी जानकारी एकत्रित करेंगे। डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा द्वारा लोगों से सहयोग की अपील की जा रही है, ताकि भविष्य में विकास कार्यों के लिए नीति निर्धारण हेतु जनगणना उपयोगी साबित हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: प्रदेश के अनेक भागों में कल हुई व्यापक वर्षा के बाद आज अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 3 सितंबर तक प्रदेश के कई जिलों में अंधड़ व भारी बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग के मुताबिक इस मानसून सीजन में अब तक प्रदेश में सामान्य से 10% कम बारिश हुई है। उधर लाहौल स्पीति जिला के उदयपुर उपमंडल की मियाड़ घाटी में बाढ़ के कारण बाधित हुई बीएसएनएल की दूरसंचार सेवा बहाल हो गई है। सेवा बहाल होने से घाटी के लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों ने इसके लिए विधायक अनुराधा राणा व बीएसएनएल के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम महक पंजाब दी।

0: कार्यक्रम का ये पहला पंजाबी गीत आपने सुना गुरदास मान और दिलजीत दोसांझ की आवाजों में।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ

0: HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: महक पंजाब दी, पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सतिंदर सरताज का गाया हुआ।

सर्बजीत चीमा का गाया हुआ ये पंजाबी गीत अभी आपने सुना। श्रोताओं कहते हैं कि पंजाबी गानों में जितना जोश होता है उतना ही गहरा प्यार भी होता है। एक ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं। हरजीत हरमन ने इस पंजाबी गीत को गाया है।

इसी पंजाबी गीत के साथ आज का महक पंजाब दी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमारा विशेष धन्यवाद स्वीकार कीजिए, क्योंकि पिछले सप्ताह के प्रसारण में हमने मोबाइल, एआई और परिवार जैसे विषयों पर बात की थी,
2: और आप सबसे निवेदन किया था कि इन विषयों पर कुछ पंक्तियाँ और स्लोगन लिख भेजें। तो सुनते हैं एक स्लोगन
3: जो हमें लिखा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने। लिखते हैं
2: 5 अगस्त, विषय मोबाइल पर स्लोगन। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। मोबाइल हमसे है, हम मोबाइल से नहीं। ये हमारा सेवक है, स्वामी नहीं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस शानदार स्लोगन के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली, जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती कुमारी और ओम कुमार जी लिखते हैं, ये भी जानिए मैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी पर आधारित जानकारी सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा।
2: उनके जीवन संघर्ष और अदम्य देशभक्ति के बारे में जानना बेहद प्रेरणादायक रहा। देश के प्रति उनका समर्पण और राष्ट्र प्रेम वास्तव में सराहनीय है। कार्यक्रम की पूरी टीम को इस सुंदर प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से अखिला प्रसाद और एनआर प्रसाद ने मोबाइल विषय पर स्लोगन भेजते हुए लिखा है,
3: डिजिटल तकनीक का उपयोग ज्ञानवर्धन और कार्य को गति देने के लिए करें, नकारात्मक कार्यों के लिए कभी नहीं। मोबाइल को बच्चों का खिलौना न बनाएं।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर।
2: ग्राम मंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे ने शब्द का अर्थ बताते हुए लिखा है, वैमानिकी का अर्थ है विमान उड़ाने से संबंधित विज्ञान।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबकी प्रतिभागिता के लिए। हम हरदम प्रयास करते हैं कि उमंग कार्यक्रम के द्वारा आपको रोचक से रोचक जानकारी दें
2: जी,
3: और मनोरंजक शैक्षिक कार्यक्रम भी सुनाएं। तो अब सुनते हैं।

0: पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था?
1: थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। इसे आधुनिक रूप दिया था 1714 में डेनियल फेरनहाइट ने।
0: हमारा अगला प्रश्न था, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
1: आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख।

0: मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
1: मौसिनराम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन चावल और जादोह है।
0: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
1: राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके के फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, लगभग 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
0: श्रोताओ, एक बहुत ही खास निवेदन है आप सबसे, ध्यान से सुनिएगा कि मात्र सुविचार ना भेजें। इन दिनों सुविचारों की बाढ़ आ रही है
1: जी।
0: सुविचार भेजना आसान है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर देना और कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना जरा कठिन।
1: सुविचार जरूर भेजें, लेकिन कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहां आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
0: तो श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है सीइंग विदाउट सीइंग।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों के मन में जागरूकता को बढ़ाता है।
2: Little Long Changla returned from the school. She opened the door quietly. She kept her bag on the table quietly. Her mother looked at her.
3: Long Changla, you're very quiet today. Did anything happen in the school?
4: Yes, Ava. A new boy came to our school. He sits in our class.
3: Yes.
4: The teacher helped him sit in the front desk. He wears black glasses. He cannot see. He will come every day. How will he do things?
3: Finish your biscuits and milk. Then we will play a new game.
4: Yes, let us play.
2: She tied a scarf over Ong Shangla's eyes.
3: Now, tell me, what do I hold in my hand?
4: How can I? My eyes are closed. I can't see.
3: You can find out. Try it. What do I hold?
2: Ong Shangla touched it.
4: It is something soft. A flower.
3: Yes. But what flower is it? Smell it.
4: It is a rose.
3: Good. Now try another thing. What do I hold?
4: I know. It is the bell. The small bell that gives such a musical sound. I can hear it, Ava.
2: Ong Shangla took the bell and shook it herself.
3: Smart girl. What do I hold now? Do you know?
2: Ong Shangla touched it.
4: It is a glass.
2: She put one finger slightly into the glass.
4: A glass of water?
3: Are you sure? It could be milk or juice.
2: Ong Shangla tasted it.
4: Oh, it is not water. It is orange juice.
3: Good girl. Now, I will remove this scarf. You must tell what is in front of you.
2: She took off the scarf. Ong Shangla blinked and looked at her.
4: It is you, Ava. I see you.

0: That was a wonderful game, Ava.
1: So, Ongshangla, if a child cannot see, there are other ways of finding out things. But the child may have some difficulties. I hope all of you will be friends with the new boy.
0: Yes, Ava.
1: Good
2: girl.
3: Ongshangla calls her mother Ava. What is the word for mother in your mother tongue? Close your eyes. Imagine that when your eyes are closed, how would you identify water, flower, sugar, direction of a clapping sound?
1: Note to the teacher. Sensitize children to the challenges faced by the differently abled.
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीइंग विदाउट सीइंग।
5: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
6: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
5: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
7: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
4: और इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।
8: ये कार्यक्रम प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक व उपन्यासकार ओ हेनरी द्वारा रचित कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण है, जिसमें बताया गया है कि यदि मन में कोई डर या कुंठा बैठ जाए तो उसके परिणाम बहुत नकारात्मक हो सकते हैं। कार्यक्रम में बड़ी मार्मिकता से मानवीय संवेदनाओं को भी स्पर्श किया गया है।
9: साथियों नमस्कार।
10: नमस्कार साथियों।
9: साथियों आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ता।
10: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
9: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
10: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
9: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
11: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
12: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
11: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
12: यस।
10: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया।

0: उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों, बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
0: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
2: सू
3: जी,
2: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
3: जी हाँ।
2: भाई मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
3: जी डॉक्टर साहब।
2: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
3: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
0: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
4: 15, 14
3: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना,
4: 13, 12, 11। ओह
3: जॉन्सी,
4: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
3: क्या गिन रही हो?
4: 11, 10, 9। ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए हैं।
3: क्या कम हो गए हैं?
4: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
1: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
3: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
4: 6, now it's 6, 5, 4। ओह
3: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
4: Only 4।
3: मेरी तरफ देखो
4: सू, only 4। ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
3: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
4: 3 पत्तियां।
3: पत्तियां?
4: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
3: हाँ हाँ।
4: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
3: क्या लगता है?
4: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
3: क्या जॉन्सी?
4: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
4: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: हाँ
4: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
3: ओ जॉन्सी।
1: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
0: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
1: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
0: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
2: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
1: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
0: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
4: अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
1: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
2: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
1: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
0: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
4: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें ही बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
1: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
0: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
4: सू मेरी दोस्त।
3: हाँ जॉन्सी।
4: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
1: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी। मंद मंद हवा चल रही थी। आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था। चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ

0: अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
1: सू? हाँ जॉन्सी, सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
2: हाँ बिल्कुल,
1: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
2: बिल्कुल जॉन्सी।
1: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
2: पत्ता?
1: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
2: हाँ, हाँ, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
3: हाँ, 2 दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
3: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
2: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
1: बेहतर।
2: ये लो कॉफी पियो।
1: थैंक यू
2: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
1: क्या हुआ?
2: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
1: कौन बेरमैन? वही बूढ़े कलाकार?
2: हाँ।
1: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
2: हाँ वही।
1: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
2: हाँ वही मिस्टर बेरमैन।
1: ओह गॉड,
2: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
1: क्या?
2: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
1: क्यों नहीं गिरा?
2: हाँ,
1: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
0: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
2: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
2: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
2: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
2: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
2: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
2: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना, मास्टरपीस?
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
2: हाँ जॉन्सी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
2: हाँ, उन्होंने बना दिया।
1: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
2: हाँ जॉन्सी,
1: मास्टरपीस। हाँ, मास्टरपीस।

0: आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
1: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
2: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।
3: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता। आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
4: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार, नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 MHz पर दोपहर के 12 बजे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सचिता। कुमार सानू के गाए इस गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं। फिल्म का नाम है सलामी। गीत लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

सैनिक भाइयों, एक और प्यारा सा गीत आपके लिए चुनकर लाए हैं सनम तेरी कसम फिल्म से। पंकज उदास और कुमार सानू ने इस गीत को गाया है।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से सैनिक भाइयों तड़ीपार फिल्म का ये प्यारा सा गीत आपको सुनवा रहे हैं। अलका याग्निक और कुमार सानू ने इस गीत को गाया है।

मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ।

0: एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए। मैं सैनिक भाइयों, अब आपको सनम फिल्म का ये गीत सुनवा रहे हैं।

इसी गीत के साथ सैनिक भाइयों आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अब अपनी रेडियो दोस्त सचिता को इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम सुनो सखी।

पहाड़ों की गोद में बसी है एक कहानी, लोकगीतों में झलकती है यहाँ की जवानी। देवभूमि की माटी का अपना ही रंग है, हिमाचल की संस्कृति सच में अनमोल उमंग है। तो कार्यक्रम सुनो सखी सुनने वाली हमारी सभी श्रोता सखियों को आपकी रेडियो सखी मीनाक्षी की नमस्ते। स्वागत है सखियों आप सभी का आज के इस विशेष अंक में, जहां आज हम बात कर रहे हैं हिमाचली संस्कृति की। एक ऐसी खूबसूरत संस्कृति की कहानी जो सदियों से अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और लोक कलाओं को अपने भीतर संजोए हुए है। सखियों, हिमाचल प्रदेश को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ के गांव में देवी देवताओं के प्रति आस्था, मंदिरों की घंटियों की गूंज और मेलों की रौनक देखने को मिलती है। यहाँ की संस्कृति केवल किताबों में दर्ज इतिहास नहीं, बल्कि लोगों के जीवन का हिस्सा है। हिमाचल की संस्कृति की सबसे खूबसूरती है प्रकृति और इंसान का गहरा रिश्ता। यहाँ के पहाड़, नदियाँ, उनकी जलधाराएं और यहाँ के जंगल प्राकृतिक रूप से बेहद सुंदर दिखते हैं। हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट बोलियाँ, वेशभूषाएं, खान पान और लोक परंपराएं हैं। मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, हर क्षेत्र की संस्कृति अपने आप में एक सुंदर रंग लिए हुए है। हिमाचली महिलाओं का पारंपरिक पहनावा अपनी सादगी और सुंदरता के लिए जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में पहनावे के रूप बदलते हैं, लेकिन पट्टू, चोली, घाघरा और पारंपरिक आभूषण हिमाचली संस्कृति की सुंदर पहचान है। वहीं पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा में चूड़ीदार पैजामा, कुर्ता, सदरी और हिमाचली टोपी विशेष स्थान रखते हैं। हिमाचल की संस्कृति में देवी देवताओं का विशेष महत्व है। यहाँ अनेक गांव में स्थानीय देवी देवताओं की अपनी परंपराएं और मान्यताएं हैं। देवताओं की शोभा यात्राएं, मंदिरों के उत्सव और पारंपरिक मेले लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। कुल्लू दशहरा इसका एक सुंदर उदाहरण है, जहां देव परंपरा और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मंडी को तो छोटी काशी भी कहा जाता है, जहां अनेक प्राचीन मंदिर और धार्मिक परंपराएं हिमाचल की आध्यात्मिक विरासत को दर्शाती हैं। यहां के मेले और त्यौहार बेहद प्रसिद्ध हैं। हिमाचली जायका भी विशेष महत्व रखता है, साथ ही हस्तशिल्प और लोक कला भी विशेष प्रसिद्ध है। लेकिन सखियों, आज आधुनिकता के इस दौर में हमारी

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: गीत और विज्ञापन के बाद फिर से हाजिर हूँ मैं मीनाक्षी, हिमाचली संस्कृति के अंक में। और अब हम बात करेंगे हिमाचली नाटी के बारे में। सखियों, जब ढोल की थाप पर कदम मिलते हैं, जब पहाड़ों की वादियों में सुर खिलते हैं, जब हाथों में हाथ लेकर झूमता है पूरा गांव, तब नाटी बन जाती है हिमाचल की पहचान और शान। अब बात करते हैं हिमाचल की उस लोक कला की जिसमें सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि पहाड़ों की मस्ती, मिट्टी की खुशबू, सामूहिकता और सदियों पुरानी परंपरा समाई हुई है। जी हाँ, हमारी हिमाचली नाटी। नाटी हिमाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। खासकर हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में नाटी सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। नाटी की सबसे खूबसूरत बात है कि इसे देखने वाला भी अपने आप इसकी लय में बंध जाता है। लोग एक दूसरे का हाथ थामते हैं, कदमों को ताल देते हैं और गोल या अर्धगोलाकार रूप में धीरे धीरे झूमते हुए नृत्य करते हैं। ढोल नगाड़ों की थाप, पारंपरिक लोक वाद्यों की धुन और लोकगीतों के बोल वातावरण में ऐसा उत्साह भर देते हैं कि हर कोई झूमने को मजबूर हो जाता है। नाटी के गीतों में हिमाचली जीवन के अनेक रंग दिखाई देते हैं। प्रकृति का सौंदर्य, प्रेम, त्योहार, सामाजिक जीवन, देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा और पहाड़ी जीवन की सरलता, यही कारण है कि नाटी केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि लोक जीवन की कहानी कहने का एक माध्यम भी है। और सखियों, जब नाटी पारंपरिक हिमाचली वेशभूषा में प्रस्तुत की जाती है तो इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। महिलाएं पारंपरिक पट्टू, चोली और आभूषणों से सुसज्जित होकर नाटी की लय में कदम बढ़ाती हैं। वहीं पुरुष पारंपरिक कुर्ता, पैजामा, सदरी और हिमाचली टोपी पहनकर नाटी में शामिल होते हैं। रंग बिरंगी वेशभूषा, चेहरे की मुस्कान और कदमों की एक जैसी ताल, ये दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं लगता। हिमाचल के गांव में जीवन हमेशा एक दूसरे से या समूहों से जुड़ा रहता है। खुशी हो तो सबकी खुशी, त्योहार हो तो सबका त्योहार और उत्सव हो तो पूरा गांव उसमें शामिल होता है। इसी सामूहिक भावना को नाटी बेहद खूबसूरती से व्यक्त करती है। शादी ब्याह हो, मेले हो, त्योहार हो या कोई विशेष सांस्कृतिक आयोजन, नाटी के बिना हिमाचली उत्सव की कल्पना अधूरी सी लगती है। जब कई लोग एक साथ कदम मिलाकर नाटी करते हैं तो उसमें व्यक्ति से ज़्यादा समुदाय दिखाई देता है। यही है नाटी की खूबसूरती। तो बातें तो होती रहेंगी लेकिन बातों के साथ साथ हमारी सखियों का मनोरंजन भी बेहद ज़रूरी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आइए करवाते हैं आपका मनोरंजन इस खूबसूरत से गीत के साथ।

गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारी सभी श्रोता सखियों का सुनो सखी के आज के इस खास अंक में, जहां हमने बात की हिमाचली संस्कृति की शान हिमाचली नाटी की। और अब रुख करते हैं रसोई घर की तरफ, क्योंकि हमारा जो हिमाचली जायका है वो भी देश भर में जाना जाता है। तो आज हिमाचली स्वाद को बढ़ाने वाली हिमाचली चुक की रेसिपी मैं आप लोगों को साझा कर रही हूँ, जिसे चंबा चुक के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो के करीब हरी मिर्च को अच्छे से धोकर डंठल से अलग करके धूप में एक दिन सुखा लिया है। साथ ही लिया है 100 ग्राम अदरक और 100 ग्राम लहसुन की कलियां, इनको भी अच्छे से छिलके उतार कर धोकर धूप में सुखा लिया है। अब हम लहसुन और अदरक को मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे, फिर हरी मिर्च को भी दरदरा पीस लेंगे और फिर करेंगे गैस ऑन। उस पर रखेंगे कढ़ाई और 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालकर गर्म कर लेंगे। फिर डालेंगे थोड़ा सा हींग, फिर अदरक और लहसुन को भी डाल देंगे। साथ ही डालेंगे 2 चम्मच हल्दी। अच्छे से इन सारी सामग्री को हम भून लेंगे। फिर डालेंगे 1 छोटा चम्मच मेथी पिसी हुई, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, धीमी आंच पर भूनने देंगे। फिर पिसी हरी मिर्च इसमें डाल देंगे, साथ ही डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और ऊपर से डालेंगे 2 बड़े चम्मच सिरका। अब डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, धनिया और सौंफ का पाउडर।

गैस को बंद कर देंगे। फिर एक कटोरी में हम तेल गरम करेंगे 2 चम्मच के करीब बड़े, और उसको हम चुक के ऊपर डाल देंगे। सखियो, हमारी ये हिमाचली चुक अब बनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, तो आप भी ज़रूर बनाइए, खुद भी खाइए और परिवार में भी सबको खिलाइए। और खान पान के बाद अब बात करते हैं मनोरंजन की, तो आइए साथ में मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

दोपहर का 1 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की अपनी दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर योग, मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले 4 प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले उज़्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज़्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम राउंड के साथ वार्ता की। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
1: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। फैशन उद्योग में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर राष्ट्रपति ने कहा कि समारोह में शामिल करीब 4000 विद्यार्थियों में लगभग 85% महिलाएं हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ और जल भराव वाले क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। भारत और ब्राजील ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $30 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। दोनों देशों ने दवा, रसायन, इंजीनियरिंग उत्पाद, मशीनरी और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर अधिक विविध, संतुलित और सतत व्यापारिक साझेदारी विकसित करने पर सहमति व्यक्त की। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में भारत ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र की 8वीं बैठक हुई। शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ काम कर रहा था। निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,066 पर, जबकि सेंसेक्स 271 अंक गिरकर

76,993 पर काम कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहली दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आवाज की दुनिया के दोस्तों ने हमें बहुत सारे जवाब दे दिए हैं कि वो छोटा सा प्यारा सा क्यूट बच्चा था आमिर खान, और जो फिल्म में खलनायक थे उनका नाम था शाकाल, और जीनत अमान के अपोजिट जो हीरो थे वो थे विजय अरोड़ा। एक मित्र ने ये मैसेज भेजा है कि सुरीला सफर कार्यक्रम इतना सुरीला होता है कि हर दिन इसके साथ दोपहर का भोजन भी स्वादिष्ट लगने लगता है। और ये क्या लिख दिया आपने कि आज की इबारत में बहुत सारे गाने हैं, बस हमें लिखने का समय नहीं मिल पाया। चलिए कुछ जुगाड़ करते हैं।

साथियों, अब तक तो आप भी समझ ही गए होंगे कि आज हम ऐसी फिल्मों के गीत लेकर आए हैं जिनमें परिवार से बिछड़े लोग कई सालों के बाद आपस में मिल जाते हैं। तो इसी कड़ी में अगला गीत है इस फिल्म का, जिसमें बचपन में बिछड़े तीन भाई अलग अलग धर्म और माहौल में पलते बढ़ते हैं। तो इस ब्लॉकबस्टर मूवी में यानी कि अमर अकबर एंथनी में उनकी माताजी की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री का नाम हमें बताएं, और साथ ही इस फिल्म में रॉबर्ट और किशन लाल कौन थे इसकी भी जानकारी हमें दे दें। इसके अलावा बिछड़ के मिलन की और कौन सी फिल्में आपको याद आ रही हैं हमें वो भी बताएं। तब तक सुनते हैं ये गीत जिसमें आवाज़ें हैं किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और शैलेंद्र सिंह की। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रेष्ठ वही गायिका हैं जो बाद में पूर्णिमा बन गई, ऐसा मंदाकिनी जोशी ने एक कार्यक्रम में बताया था। तो बिल्कुल सही बताया था, सही बात है वो। चलिए हम आपको बता देते हैं कि जो कमेंट्स में हमें जवाब मिले हैं वो ये है कि निरूपा रॉय ने माँ की भूमिका निभाई थी इस फिल्म में और किशन लाल का किरदार निभाया था मशहूर अभिनेता प्राण, और फिल्म के मुख्य खलनायक रॉबर्ट का किरदार निभाया था मशहूर अभिनेता जीवन ने, जो एक बड़े बॉस और स्मगलर थे इस फिल्म में। तो साथियों हमें ये बताइए कि क्या आपके आसपास कभी ऐसा भी हुआ कि कोई बिछड़ के मिल गया, या कभी कोई छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ कर आपको मिला, तो फिर उसे कैसे घर पहुंचाया आपने, या कैसे उसे घर पहुंचाना चाहिए। कोई घर छोड़ के चला जाता है तो उसे खोजने के अभियान में आप भी शामिल हुए थे कभी, या किसी को ढूंढने में आपने कोई सहायता की थी। कभी कभी घर का पालतू जानवर भी खो जाता है तो क्या करते हैं आप, कैसे ढूंढते हैं, और मिल जाए तो कैसे पार्टी करते हैं। हम भी तो जाने, हम भी तो सुने, लिख भेजिए हमारे FB पेज पर। क्या कभी खोया पाया केंद्र पर गए हैं आप। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है धर्मवीर। तो धर्मवीर फिल्म में दोनों बिछड़े भाइयों के रोल में कौन से अभिनेता थे उनके नाम बताएं। वैसे इस फिल्म में एक हीरो का तो नाम छुपा है, और साथ ही अपने विचार भेज दीजिए हमें।

हमारे दोस्तों ने हमें जवाब भेज दिए हैं कि धर्मवीर में दो जुड़वा भाइयों के रोल में नजर आए थे धर्मेंद्र और जितेंद्र, और उनके साथ में जीनत अमान और नीतू सिंह थी। एक दोस्त ने लिखा है कि सच्चे दोस्त समय आने पर काम आते हैं। ये कमेंट मिला है कि 4 साल पहले हमारा पालतू जानवर घर से गायब हो गया था। बहुत खोजा गया, खोया पाया केंद्र में भी गए और कुछ भी पता नहीं चला। बहुत दिनों तक घर के सभी लोग उसे ढूंढते रहे, उदास रहे, याद तो आज भी आती है। राहों में चाहे कितने ही कांटे हो, वक्त चाहे कितनी ही दूरियां क्यों ना ले आए, सच्चा प्रेम अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। क्योंकि मोहब्बत फूल की तरह नाजुक ज़रूर होती है, मगर उसकी खुशबू उम्र भर साथ रहती है। मैं और तुम से हम हो जाना ही मोहब्बत है।

प्यार का एहसास अपने आप किसी से रूह से निकलने वाली आवाज़ से होता है, वो किसी से भी, वो किससे होगा या नहीं होगा या कहाँ होगा ये कोई नहीं कह सकता, बस सब आत्मा और समय का खेल है। सुरीला सफर कार्यक्रम में अपने विचार, अपनी बातें, अपने संवाद, अपने पैगाम, अपने संदेश, अपने मैसेज, अपने कमेंट्स आपने भेज दिए हैं जो हम तक पहुंच गए हैं और लगातार आप भेज रहे हैं। तो उन सारी बातों को, संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज़ में। इस दार्शनिक गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है धर्म करम, जिसकी कहानी नाटकीय और भावुक थी। तो इस फिल्म का निर्देशन किसने किया था और खलनायक की मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, लिख दीजिए। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, तो लगातार भेजते रहिए अपने कमेंट्स।

दोस्तों आपके जवाब हमें मिल गए हैं कि रणधीर कपूर और राज कपूर ने इस फिल्म का निर्देशन किया था और मुख्य विलन थे प्रेम नाथ। ये कुछ कमेंट्स मिले हैं कि चार दिन की जिंदगी में किससे कतरा के चलूं, खाक हूं मैं खाक पर क्या खाक इतरा के चलूं। त्रिमूर्ति, वक्त और संबंध, इन फिल्मों में एक बार बिछड़ जाते हैं और फिर सभी लोग दोबारा मिल जाते हैं। पहले फिल्मों की कहानी में ऐसा बहुत दिखाते थे कि एक भाई कुंभ के मेले में खो गया और फिर फिल्म के एंड में मिल जाते हैं। हमें लगता था कि ये जल्दी से मिल जाएंगे। एक श्रोता मित्र ने लिखा है कि इश्क, प्यार, मोहब्बत, प्रेम में तो अक्षर भी अधूरे हैं, तो मोहब्बत क्या पूरी होगी। मोहब्बत जिसकी हमेशा से दुखदाई उसका अंजाम होता आया है, लैला मजनू, सोहनी महवाल, हीर रांझा हो या सास समंदर पार वाले रोमियो जूलियट, सभी के प्रेम का अंत समाज के हाथों से हुआ है। यही वजह है कि शायरों ने भी मोहब्बत की खूबसूरती से ज़्यादा उसके अंजाम के बारे में लिखा है। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया और मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोई। साथियों अब बात करते हैं समय और भाग्य के फेर में बिछड़ जाने वाले परिवार की कहानी की, जहां वक्त सबका अलग अलग इम्तिहान लेता है और आखिर में ऐसे हालात बनते हैं कि सब आमने सामने आ जाते हैं। निर्माता बीआर चोपड़ा की ये फिल्म हमें क्या सीख देती है वो बताएं, और लाला केदारनाथ की भूमिका निभाने वाले महान अभिनेता का नाम भी बता दें। और हाँ, इस फिल्म का एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था, वो कैसे भूल सकते हैं, तो लिख दीजिए जल्दी से। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मन्ना डे की आवाज़ में। नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत है रवि का, फिल्म का नाम आप बताएंगे हमें, और साथ में ये भी बताएंगे कि इस जोहरा जबी का नाम क्या है।

0: हमारे एक सुनने वाले ने लिखा है कि मोहब्बत वो जुनून है जो मिटती नहीं फना होकर, ये रूह में बसती है सांसों की सदा होकर, चांदनी का क्या गिला जब हुस्न ही महताब बने, हर बात में शोखियां हैं हर अदा लाजवाब बने। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारे गीत हैं आज इबारत में, और उन्होंने गीत के बोल लिखे हैं कि ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, ऊपर से आप लोग भी इम्तिहान लेने लगे हैं तो हमें तो चक्कर आ रहे हैं, तो ये तो नहीं बताए कि चक्कर क्यों आ रहे हैं। कमेंट्स में जो जवाब मिले हैं उसमें लिखा है कि ये मशहूर डायलॉग बोला था राजा यानी कि राजकुमार ने, चिनोई सीट जिसके अपने घर शीशे के हो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, और लाला केदारनाथ का किरदार निभाने वाले अभिनेता थे बलराज सहानी, और हिंदी फिल्मों की पहली जोहरा जबी का नाम है अचला सचदेव, और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म में वरिष्ठ अभिनेत्री ने काजोल की दादी का किरदार भी अदा किया था। तो साथियों अब बात करते हैं एक्शन और थ्रिलर फिल्म की। ये कहानी है बचपन में बिछड़े दो भाई मोहन और सोहन की। बड़ा भाई सीआईडी अधिकारी और छोटा भाई गैंगस्टर बन जाता है इस फिल्म में। तो इस फिल्म में विलन का किरदार निभाने वाले कलाकार का नाम हमें बताएं, और ऐसे भी इसमें कलाकार थे जिन्होंने हमेशा पुलिस कमिश्नर की भूमिकाएँ निभाई थी, तो उस अभिनेता का नाम भी लिख दें अपने संदेशों में। और अब फिल्म का नाम, गीतकार, संगीतकार आप बताएंगे क्योंकि आपको सब पता है। तो मोहन सोहन कौन थे, और इस ये भी बताएं कि इस फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से किस जगह पर हुई थी, हमें ये भी बताएं।
1: नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं,

आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं हैं, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं हैं।

शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं कि इस फिल्म की शूटिंग बिहार के नालंदा, खंडर और राजगीर के जंगलों में हुई थी। देव आनंद, प्राण, जीवन, प्रेमनाथ, इफ्तखार, जगदीश राज, एक साथ सारे नाम लिख दिए आपने। इस गीत में आवाज थी किशोर कुमार की, गीतकार थे इंदिवर, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम था जॉनी मेरा नाम। एक श्रोता मित्र ने लिखा है कि जब मैं लगभग 2 साल का था, तब मेरी बड़ी दीदी मुझे शहर में सब्जी मंडी लेकर गई थी। जब घर लौटी तो केवल सब्जियां ही थी घर पर। माताजी ने पूछा कि भैया कहाँ है, तब दीदी को समझ आया कि मैं वहीं छूट गया। तब वे दौड़कर आई और वहां आकर देखा तो मैं वहीं खड़ा रो रहा था। बस इतना ही किस्सा है बिछड़ने और मिलने का। तो हम भी आपसे पूछ लें कि आप मिले कि नहीं। एक साथी ने लिखा है कि वक्त फिल्म, इससे हमें ये सीख मिलती है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए हमें वक्त की कदर करना चाहिए। साथियों, बचपन में अपने माता पिता से बिछड़ जाने वाले उस बच्चे की कहानी जो समाज में खुद को लावारिस पाता है, उसे समाज में अपनी असली पहचान और अपने पिता को ढूंढने के लिए भारी संघर्ष करना पड़ता है। तो आइए सुनते हैं उसे फिल्म का गीत। तो बताइए उस गीत के बोल क्या हैं, गीतकार का नाम क्या है, फिल्म

उनका नाम भी बता दीजिए, संगीतकार भी बता दीजिए, और साथ ही ये भी बताइए कि इस मूवी में गंगू गणपत किरदार को किस दिग्गज महान अभिनेता ने निभाया था।

साथियों हमें जवाब मिले हैं कि फिल्म का नाम था लावारिस, अलका याग्निक की आवाज थी, गीतकार थे अनजान और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी, और गंगू गणपत की जो जो किरदार जिस अभिनेता ने निभाया था उनका नाम था डॉक्टर श्री राम लागू। एक श्रोता मित्र ने लिखा है कि वक्त फिल्म की एक सीख होने और अच्छी लगती है कि कितने ऊंचे हो जाएं पर आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए, वक्त बहुत बलवान होता है, एक झटके में अर्श से फर्श पर ला देने के का सामर्थ्य रखता है। फिल्मों में खोए हुए भाई बहन पिता पुत्र तो मिल जाते हैं किंतु हमारे कमेंट्स गायब ऐसे होते हैं कि मिलना मुमकिन नहीं लगता। वक्त फिल्म का दूसरा मशहूर डायलॉग है कि ये बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं, हाथ कट जाएगा तो खून निकल आता है। और ये एक मैसेज मिला है कि वक्त में अचला सचदेव ने जोहरा जबी का किरदार निभाया था, और जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, और मेरी लिस्ट का पांचवा गाना भी शामिल हो गया है।

दोस्तों हमें बताइए कि इस फिल्म के निर्देशक कौन थे और इस फिल्म में अभिनेता कौन थे, ये भी हमें बता दीजिए।

दोस्तों, कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ा जा रहा है। समय बहुत कम है, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि इस फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, आशा भोसले और महेंद्र कपूर साथियों की। इस गीत को लिखा है अनजान ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, और इस फिल्म में अभिनेता का नाम लोगों ने लिख दिया है अमिताभ बच्चन।

साथियों, सुरीला सफ़र के हम सफ़र बनकर आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, अपनी बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। और आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सफ़र देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ।

जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का सबसे सुंदर संदेश चरैवेति अर्थात चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये वेद वाक्य हमें सिखाता है रुक जाना जीवन का उद्देश्य नहीं। जीवन गतिमान है, जैसे जल यदि स्थिर हो तो वो उपयोग के लायक नहीं होता और प्रवाहमान जल शुद्ध स्वच्छ उपयोग युक्त होता है। समय कभी किसी के लिए नहीं ठहरता, हमेशा बदलता रहता है, चलता रहता है। इसी तरह हमें भी जीवन में कभी नहीं ठहरना है। यात्रा सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने को ही नहीं कहते, यात्रा जीवन को समझने, नए नए अनुभव प्राप्त करने और निरंतर कर्म करते रहने, स्वयं को निखारने और सदैव गतिमान रहने, सीखने और प्रगति पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। तो चलिए चले चलते हैं जीवन की सुगम निर्गम धूप और छांव की इस यात्रा में।

यात्राओं और देशाटन की गौरवशाली परंपरा रही है। यात्राओं से हमें अलग अलग स्थानों को देखने, जानने, तरह तरह की लोक संस्कृतियों को जानने का अवसर मिलता है, जिससे हमारा मन और जिज्ञासु होता है और हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। आपसी सद्भाव और सहिष्णुता का भी विकास होता है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि दुर्गम मार्ग से यात्रा किया करते थे। विदेशी यात्रियों का भी भारत में आना जाना था। यूनान से मेगास्थनीज, चीन से फाहियान और व्हेनसांग जैसे विदेशी यात्री भारत की संस्कृति को समझने आए। अनुभव, ज्ञान और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए यात्रा जरूरी है।

हमारा तन और मन दोनों ही एक निरंतर यात्रा के पथिक हैं। ये यात्रा हमारे जन्म के साथ आरंभ होती है। हम पहली बार संसार को आश्चर्य और मासूमियत से देखते हैं। फिर युवा अवस्था की यात्रा में संवेदनाओं, सपनों और संभावनाओं का संसार हमारे सामने खुलता है। ये जीवन यात्रा का सबसे ऊर्जावान और कर्म प्रधान समय होता है। इसी समय के हमारे निर्णय, हमारा परिश्रम और हमारे कर्म ये तय करते

हैं कि समाज हमें किस रूप में याद रखेगा। धीरे धीरे जीवन यात्रा आगे बढ़ती है और वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं हम, और वृद्धावस्था की यात्रा, ये यात्रा पूरे जीवन के कर्मों का प्रतिबिंब होता है, झलक होती है। अतः जीवन की इस यात्रा को, इस सफर को बड़ी खूबसूरती से सजाएं, सुमधुर और सुहाना बनाएं।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई। 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC Under-20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में आज सीरिया से मुकाबला करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकारिता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: इससे पहले उज्बेकिस्तान की 2 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति में बढ़ती रुचि के साथ तिरुकुरल के महत्व का भी जिक्र किया।
2: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुकुरल जो लिखा गया है, आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारु ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुकुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो? सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
0: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है।
3: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, X पर @AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम

0: पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
2: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप स्मरण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपनी मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्य से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए।
2: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित थे, उनमें से 85% महिलाएं हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर है। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार आधारित उत्पादन का वैश्विक मंच बनता जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने 3M से स्थानीयकरण बढ़ाने, अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया। 3M के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन ने भारत में उपलब्ध विशाल प्रतिभा संसाधन की सराहना की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
3: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
1: इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है, वे 30 सितम्बर तक Form 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश के साथ समाप्त हो रहे 30 वर्षीय गंगा पद्मा जल बंटवारे समझौते के नवीनीकरण

0: पहले राज्य के हितों की तरफ ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार ने नए समझौते में पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
2: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। तिब्बत में मृतकों की संख्या 16 हो गई है, जबकि 546 लोग लापता है। भारतीय बचाव दल चिली में और लांगटाक में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बसनेट ने बताया कि अत्यधिक मलबे के कारण सुरंगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जल ग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति ने हालात को जटिल बना दिया है। एक रिपोर्ट।
3: पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहडोल में बाणसागर डैम में पानी बढ़ने से कुछ समय के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। गोरगी बांध फूटने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि तेज बहाव ने रामघाट के बड़े पुल को भी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। कल तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। फुटबॉल में भारत की अंडर 20 टीम आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज़्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार AFC अंडर 20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481 और 2371717। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई। 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम का पहला सदाबहार गीत है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है यादों की बारात।

0: भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुना जाए वो गीत जिसमें आवाजें हैं मुकेश और आशा भोसले की। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राजेश रोशन। फिल्म का नाम है तुम्हारी कसम।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। और इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। तो कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है अन्नदाता इस फिल्म से। गीतकार हैं योगेश, संगीतकार हैं सलील चौधरी और इस गीत में आवाज़ है किशोर कुमार की।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है कटी पतंग।

0: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है अनुरोध। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजने को हैं। अब थोड़ी देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे सामयिक चर्चा।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत

0: और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया।
1: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप स्मरण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्यों से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
0: फैशन उद्योग में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर राष्ट्रपति ने कहा कि समारोह में शामिल करीब 4000 विद्यार्थियों में लगभग 85% महिलाएं हैं।
1: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित थे उनमें से 85% महिलाएं हैं।
0: ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज शिमला जिला के मशोबरा स्थित राज्य पंचायत संसाधन केंद्र में नव निर्मित डिजिटल स्टूडियो का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस स्टूडियो में पंचायती राज संस्थाओं के प्रशिक्षुओं व प्रतिनिधियों को आधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी और पंचायत प्रतिनिधि नवीनतम तकनीक व उपकरणों की जानकारी हासिल कर ग्रामीण विकास को गति प्रदान कर सकेंगे। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि इस डिजिटल स्टूडियो में ऑनलाइन प्रशिक्षण, वेबिनार, वीडियो कॉन्फ्रेंस, विशेषज्ञ वार्ता, साक्षात्कार, जागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान के रूप में मनाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि 17 सितंबर को हर घर में सेवा नाम और 2047 विकसित भारत के संकल्प का दीप जलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान भाजयुमो द्वारा प्रदेश भर में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे और स्कूलों में पेंटिंग, भाषण व निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। बिंदल ने बताया कि अभियान के तहत महिलाओं द्वारा विकसित भारत 2047 और मोदी जी के जीवन पर सेवा संकल्प रंगोली बनाई जाएगी।
2: 17 तारीख से लेकर 17 अक्टूबर तक एक महीने का सेवा संकल्प अभियान ये चलाए विकसित भारत का संकल्प की एक यात्रा और सेवा ज्योति यात्रा। सेवा में मेरा योगदान देश का प्रत्येक व्यक्ति और हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी सेवा में मेरा योगदान ये अभियान चलाएगी जिसमें अनेक अनेक प्रकार से सेवा के अभियान हो सकते हैं। वो स्वच्छता सेवा के हो सकते हैं, रक्तदान शिविर के हो सकते हैं, चिकित्सा सेवा के हो सकते हैं।
0: राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय दी गई झूठी गारंटियों और महिलाओं को ठगने को लेकर भाजपा सितंबर में 170 स्थानों पर जन आंदोलन चलाएगी। मणिमहेश यात्रा को लेकर राज्य पथ परिवहन निगम ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। एचआरटीसी धर्मशाला मंडल के डीएम पंकज चड्ढा ने बताया कि यात्रा के दौरान चंबा से भरमौर, पठानकोट, कांगड़ा, धर्मशाला, हमीरपुर, पालमपुर, बैजनाथ और जोगिंदरनगर सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए नियमित बसों के साथ साथ मांग के अनुसार अतिरिक्त बसें संचालित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि यदि श्रद्धालुओं का कोई समूह एक साथ यात्रा करना चाहता है तो वे संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक से संपर्क कर स्पेशल बस की बुकिंग भी करवा सकता है। इसके अलावा बसों की व्यवस्थाओं और सेवाओं की निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वाड व फिक्स्ड प्वाइंट चेकिंग की व्यवस्था भी की गई है।
3: मणिमहेश एक बहुत बड़ा पर्व है और उसके लिए हमने चंबा से तो स्पेशल लगी हमने हर डिपो से जो स्पेशल बसेस की प्रोविजन किया है चंबा के लिए ताकि हर एक अंतिम यात्री जो कि श्रद्धालु दर्शन करना चाहता है उसे हम बेहतरीन से बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाए। ये चंबा से भरमौर, चंबा से पठानकोट, चंबा से कांगड़ा, चंबा से हमीरपुर, चंबा से धर्मशाला, ऐसे ऐसे उनको बसेस चाहिए होती है तो वो कोऑर्डिनेट करते हैं।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे, और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है नशा मुक्त युवा, विकसित भारत की मजबूत नींव। वाचिका है राजकुमारी चंदेल।
3: किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा आबादी होती है। युवा ऊर्जा, प्रतिभा, नवाचार और सपनों का प्रतीक है, लेकिन जब यही युवा नशे की गिरफ्त में आते हैं तो नुकसान केवल एक व्यक्ति का नहीं होता, प्रभावित होता है उसका स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, परिवार और अंततः समाज। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए देश में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2026 को इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की। अभियान के अंतर्गत अगले 100 सप्ताह तक देश भर में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल, फिटनेस, योग, ध्यान, सांस्कृतिक गतिविधियों और जन जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अभियान के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब देश के युवा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ, आत्मविश्वासी और नशे जैसी विनाशकारी आदतों से दूर रहें। उन्होंने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी युवाओं के साथ नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों पर चर्चा करने और अपने परिसरों में नशे के खिलाफ आंदोलन चलाने की अपील की। अब इस अभियान को लेकर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर देशवासियों का ध्यान आकर्षित किया है। 30 अगस्त को मन की बात की 137वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि यह अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इससे जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसे युवाओं के स्वास्थ्य, खुशी और उज्ज्वल भविष्य के लिए सामूहिक संकल्प बताया। लेकिन सवाल यह है कि नशा आखिर इतना गंभीर विषय क्यों है? नशे की शुरुआत कई बार जिज्ञासा, दोस्तों के दबाव, तनाव, अकेलेपन या गलत संगत से होती है। शुरुआत में व्यक्ति को लगता है कि वो इसे नियंत्रित कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत निर्भरता में बदल सकती है। इसका असर पढ़ाई और काम पर पड़ता है, व्यक्ति का व्यवहार बदलता है, परिवार से दूरी बढ़ सकती है और आर्थिक व सामाजिक समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए नशे के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता सबसे पहला हथियार है। युवाओं को ये समझना होगा कि तनाव या असफलता से निकलने का रास्ता नशा नहीं बल्कि संवाद, परामर्श, खेल, योग, ध्यान, रचनात्मक गतिविधियां और सकारात्मक संगत है। इस लड़ाई में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर परिवार नशे की समस्या को सामाजिक प्रतिष्ठा के डर से छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन समस्या को छिपाने से उसका समाधान नहीं होता। प्रधानमंत्री ने भी युवाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि यदि कोई युवा नशे के जाल में फंस भी गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए सभी रास्ते बंद हो गए हैं। जरूरत है कि परिवार समस्या को छिपाने के बजाय चिकित्सीय सहायता और पुनर्वास का रास्ता अपनाएं। संदेश साफ है कि नशे की समस्या से जूझ रहे व्यक्ति को परिवार और समाज के सहयोग की आवश्यकता है। आज के युवा सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों से लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, इसलिए इस अभियान में युवाओं की रचनात्मक भागीदारी पर भी जोर दिया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, चित्रकला, लघु फिल्म, रील, कविता, गीत, स्लोगन और वाद विवाद जैसी गतिविधियों के जरिए नशा मुक्ति का संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी के साथ सामयिक चर्चा समाप्त हुई। नमस्कार।
4: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे
5: कि जिस कंपोजिटर को आपने कवि

0: टाइम कंपोज करने को दी है, उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो साधु बन गया, कविताएं अपने साथ लेता गया। लिहाजा मैं खुद अपनी 24 कविताएं लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूं।
1: अच्छा, तो हो तो आप ही राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। हाँ, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया।
0: कल रात मैंने ये तय किया कि मुझे आपका संपर्क पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि दफ्तर में दिन भर आप व्यस्त रहते हैं और आपकी अमृतवाणी मैं नहीं सुन पाता। लिहाजा मेरा आपके घर में आपके साथ ही ठहरना उचित होगा।
1: जी
0: जी जी जी इसके साथ ही बाजार का भोजन मुझे रुचिकर नहीं होता, यहाँ घर का भोजन मिलेगा।
1: मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आदमी मैं मुरव्वत वाला हूं और आसानी से ना नहीं कह सकता हूं। लिहाजा अब श्री राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह मेरे निजी अतिथि बनकर मेरे घर पर जम गए। रोज सुबह वो मेरे साथ चाय पीते थे, भोजन करते थे, दफ्तर जाते थे। उनका ट्राम का किराया मुझे ही देना पड़ता था क्योंकि कंडक्टर के पास आते ही वे मेरा मुंह देखने लगते थे। इतवार के दिन सुबह मेरे साथ चाय पीते हुए श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ने मुझसे कहा,
0: किशोर जी,
1: जी
0: आज तो आपकी छुट्टी है,
1: हाँ
0: तो ऐसा कीजिए ना, मुझे कलकत्ता घुमा दीजिए।
1: अरे राम खिलावन जी, मुझे दुख है कि मुझे आपकी सेवा करने से वंचित रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे आज कई लोगों से मिलने जाना है। अरे भाई भीखू, देखो बाबूजी को आज शहर घुमा लाओ। और 2 6 6 आने वाले टिकट ले लेना दिन भर के, और ये लो 1 रुपया। ठीक है,
0: नहीं, एक ही टिकट लाना, एक ही टिकट, मैं अकेले ही घूम लूंगा।
1: अच्छा ठीक है। उस दिन उन्होंने जो चाय पी तो मैं दंग रह गया। 4 टोस्ट और छटाक भर मक्खन के अलावा उन्होंने पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आमों का नाश्ता भी किया। इसके बाद वे 6 आने वाला टिकट जेब में रखकर कलकत्ता घूमने के लिए निकल पड़े। चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था,
0: आप मेरे भोजन की प्रतीक्षा ना कीजिएगा, रात में लौटकर भोजन करूंगा।
1: जी ठीक है। दिन भर मैं कामकाज में व्यस्त रहा। रात को मैं करीब 11 बजे घर लौटा, लेकिन एक अजब सा सन्नाटा मुझे मालूम हुआ। नौकर चाकर सभी मौजूद थे, लेकिन न मुझे भक्तिपूर्वक प्रणाम करने वाला मेरा भक्त था, और न लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाने वाला, अजीब अजीब शंकाएं उठाने वाला, और मेरी सूनी जिंदगी की सुख शांति हरने वाला मेरा अतिथि था, यानी श्री राम खिलावन शरण जी अभी तक लौटे नहीं थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूं मुझसे खाना न खाया गया। मैं न जाने क्यों अपने अतिथि के लिए चिंतित हो उठा।

0: राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के साथ क्या हुआ? वो रात को घर क्यों नहीं लौटे? क्या संपादक किशोर जी उन्हें सकुशल घर वापस लाने में सफल होते हैं? जानने के लिए सुनिए छह आने का टिकट, इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
1: कलकत्ता बहुत अच्छा नगर नहीं है और श्री राम खेलावन अपने जीवन का जहाज लेकर अकेले ही इस कलकत्ता नामक महासागर में निकल पड़े थे। मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं बस के नीचे तो नहीं आ गए, या रास्ता तो नहीं भूल गए, या उन्हें कोई भगा तो नहीं ले गया। मुझे अच्छी नींद भी नहीं आई। बिस्तर पर मैं करवटें बदलने लगा। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि श्री राम खिलावन शरण के प्रति मुझमें इतनी अधिक ममता कैसे आ गई। एकाएक मैं चौंक उठा, टेलीफोन की घंटी बज रही थी।

0: मैं उठा, घड़ी पर मेरी नजर गई और उस समय 3 बजे थे। धड़कते दिल के साथ कांपते हुए हाथों से मैंने रिसीवर उठाया। हेलो,
1: भवानीपुर थाने से बोल रहा हूं, आपके यहां कोई रामखेलावन शरण प्रसाद तो नहीं ठहरे?
0: जी, खैरियत तो है, जिंदा है ना?
1: जी हाँ, है तो खैरियत से, लेकिन पिए हुए हैं, आध घंटा हुआ लाए गए हैं, आप उन्हें ले जाइए।
0: जी जी जी, रिसीवर मैंने रख दिया। अच्छा, तो हमारे श्री राम खिलावन शरण प्रसाद सिंह इतने पहुंचे हुए आदमी है, भाई मान गए। विश्वास नहीं होता कि ऐसे भी होते हैं। ऐसा लग रहा है जमीन फट जाए और हम उसमें समा जाएं। अब ये राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह जैसे आदमी इतना पी सकते हैं कि थाने में बांध दिए जाए, तो हम जैसे न पीने वालों के तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। बहरहाल, अपने अतिथि को हवालात से लाना ही था और मैं हवालात पहुंचा। पूरे 5 रुपए देकर राम खिलावन शरण को मैंने छुड़ाया और उन्हें घर ले आया। घर आते ही श्री राम खिलावन शरण ने खींच कर एक गिलास पानी पिया और फिर मत्था पकड़कर बैठ गए। अब देखिए कि उनकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं और वे मौन बैठे हैं, न हिलते हैं, न डोलते हैं, न बोलते हैं, न चालते हैं। आखिर मुझे ही पूछना पड़ा, राम खिलावन शरण जी, भला आपको ये क्या सूझी कि आप पीकर रास्ते में निकले?
2: मैं शपथ से कहता हूं कि मैंने मदिरा पान का जघन्य पाप नहीं किया है।
0: क्या?
2: बदमाश पुलिस वाले ने मुझे जबरदस्ती बंद कर दिया।
0: अच्छा, वो क्यों भला?
2: अरे ये मेरा दुर्भाग्य है, मुझ में अब जान नहीं है, इतना थका हुआ हूं, आज 6 आने की टिकट ने मुझे मार डाला।
0: ये कैसे भला?
2: देखिए किशोर जी, आपने मुझे 6 आने का टिकट दे ही दिया था।
0: हाँ?
2: जब मैं कलकत्ता घूमने निकला तो मैंने 2 आने पैसे और साथ में ले लिए कि वक्त जरूरत काम आएंगे। अब मैं रवाना हुआ, ट्राम पर बैठ जाता था, जहां तक जाती थी वहां तक जाता था और उसी ट्राम पर धर्मतल्ला वापस आता था। टालीगंज गया, बालीगंज गया, बहला गया, खिदरपुर गया, पार्क सर्कस गया, सियालदह, राजा बाजार, श्याम बाजार, बाग बाजार, डलहौजी, हाई कोर्ट गया, बहु बाजार गया, हैरिसन रोड गया, नीमतल्ला भी मैं घूम आया।
0: तो
2: शाम को कुछ थोड़ी सी भूख लगी थी तो पास में 2 आने पैसे थे तो नाश्ता डट कर किया। अब करीब 10 बजे मैं हैरिसन रोड और चितपुर रोड चौराहे पर पहुंचा, वहां उतरा मैं। मैंने हिसाब लगाया, 6 आने के टिकट में मैं 1 रुपया 12 आने का घूम चुका था और अब घर आने में 2 आने का और सफर करता तो इस प्रकार 1 रुपये 14 आने घूम चुकता और 6 आने में अपने हिसाब से मुझे 1.5 रुपया घूमना चाहिए था और इसलिए मुझे संतोष करके उस समय लौट आना चाहिए था, लेकिन मालूम होता है कि उस समय मुझ पर शैतान सवार था क्योंकि एक ख्याल आया कि खर्च 6 आने नहीं बल्कि 8 आने हुए क्योंकि 2 आने का नाश्ता तो घूमने के सिलसिले में ही मैंने किया था और 8 आने के हिसाब से मुझे 2 रुपए का घूमना चाहिए था। इधर ये ख्याल आया और उधर मुझे एक ट्राम दिखाई दी। जिस पर बेलगछिया लिखा था, मुझे ख्याल आया कि बेलगछिया अभी तक नहीं गया, मैं उस ट्राम में बैठ गया। बेलगछिया पहुंचकर मैं इस आशा से ट्राम में बैठा

0: रहा कि ये वापस जाएगी, लेकिन एक आदमी ने आकर मुझसे कहा,
1: अब आप जाइए।
0: मैंने कहा मैं धर्मतल्ला जाऊंगा।
1: 11 बज गए हैं, घड़ी देख रहे हैं आप? अब यहां से कोई ट्राम नहीं जाएगी।
0: किशोर जी, मैं चौंक उठा। मैंने कहा कि क्या क्या क्या आप, कोई ट्राम नहीं जाएगी है? नहीं जाएगी यहां से।
1: कह तो दिया नहीं जाएगी, अभी बस मिल जाएगी, चले जाओ।
0: मैं उठा वहां से, लेकिन मेरी जेब में एक पैसा नहीं। मतलब बस पर कैसे आता? मैंने उस आदमी से पूछा, धर्मतल्ला यहां से कितनी दूर है?
1: होगा कोई 5 मील।
2: तो फिर आपने क्या किया?
0: किशोर जी, मैं पैदल धर्मतल्ले की तरफ रवाना हुआ। करीब 12:30 बजे मैं धर्मतल्ला पहुंचा। पूरी तरह थका हुआ था। धर्मतल्ला में कोई ट्रॉम नहीं मिली, इसलिए मुझे वहां से भी पैदल ही रगड़ना पड़ा। डेढ़ बजे के करीब मैं उस बड़े चौराहे पर पहुंचा। किशोर जी, आप जरा देखिए ना, 9 मील पैदल चलकर आया था। दिन भर खाना भी नहीं खाया था, प्यास जोरों से लगी थी, पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखें निकल पड़ती थी। और उसी समय एक पुलिस वाले ने बढ़कर मुझसे पूछा कि तुम कौन हो? मैं ऐसा बेकाबू और बेहोश था कि मेरे मुंह से शायद शब्द ही नहीं निकले, और अगर निकले भी होंगे तो टूटे फूटे, बिना मतलब के रहे होंगे। तब तक एक दूसरा पुलिस वाला आ गया। उसने पहले से पूछा कि मामला क्या है। दूसरे ने जवाब दिया कि मालूम होता है सर, दारू पिए हैं, पैर सीधा नहीं पड़ते, जबान नहीं खुलते है, नशा में बेहोश है। तो दूसरे ने कहा कि तो फिर थाने ले ही चलो, कल सुबह होश आ ही जाए। उस समय मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन या तो मैं उन्हें नहीं समझा सका, या फिर वो मुझे नहीं समझ सके।
2: ओहो, ये बात है भिखू। अरे खाना ले आओ थाली में। भाई राम खिलावन जी, आपका अनुभव तो बहुत बुरा हुआ है। अब मेरी सलाह ये है कि आप कल सुबह अपने घर वापस चले जाएं। आप अच्छी साइत पर घर से नहीं चले थे।
0: जी हाँ किशोर जी, बात तो ठीक है, लेकिन लेकिन मेरे मामा के ससुर के बहनोई जो टिकट कलेक्टर हैं और मुझे कलकत्ता मुफ्त में लाए थे, कह
2: अच्छा,
0: गए थे कि करीब 15 दिन में वापस लौटेंगे, तब साथ ले जाएंगे। 12 दिन तो हो गए हैं, 2-3 दिन में आने वाले हैं, चला जाऊंगा।
2: लेकिन इस घटना को हुए करीब 15 दिन हो गए हैं और मेरा घर अभी तक आबाद है, क्योंकि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के मामा के ससुर के बहनोई अभी तक वापस नहीं लौटे हैं।
3: छह आने का टिकट। अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी ये कहानी। आज आप सुन रहे थे

खेलावन के रूप में जी श्याम, किशोर जी यानी सूत्रधार, जयंत पात्रीकर, पुलिस कर्मी यूनुस खान, ट्राम का कर्मचारी दीपक केसावलेकर, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: विविध भारती के बाद।
1: अरे हम दोनों एक साथ बोल रहे हैं जी। तो बस यही बताना है कि ये कार्यक्रम है सखी सहेली, जो आज पहली बार जिन्होंने ट्यून किया होगा उनके लिए ज़रूरी है बताना कि सखी सहेली कार्यक्रम। और अब हम अपने एक मुद्दे पर बात करने चल रहे हैं जो एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है, वो है शादी, दाम्पत्य। शादी दरअसल अपने साथ बहुत सारी चुनौतियाँ लेकर आती हैं। जीवन में यदि खुशियाँ हैं तो गम भी ज़िंदगी का हिस्सा है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम इनमें संतुलन बनाकर चलें। लेकिन संतुलन बनाए कैसे? पति और पत्नी दरअसल होते एक सिक्के के दो पहलू हैं
0: जी ममता जी।
1: दोनों में से किसी एक को कभी भी किसी मोड़ पर एक दूसरे की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम इसे अपनी परेशानी नहीं समझे, बल्कि अपना कर्तव्य समझे और एक दूसरे के मन को समझे।
0: बिल्कुल। और ये जो रिश्ता है बहुत समझदारी से काम लेने का होता है, प्यार और विश्वास पर टिका होता है जो रिश्ता है पति पत्नी का। कभी भी इस इमारत को बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो नींव है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि नींव ही अगर मजबूत नहीं हुई तो जो इमारत है उसका गिरने का खतरा हमेशा ही बना रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से जब पति पत्नी के रिश्ते की इमारत है, इसके दो आधार स्तंभ होते हैं प्यार और विश्वास, ये स्तंभ अगर कमज़ोर हो जाएंगे तो रिश्ता ज़्यादा समय टिक ही नहीं पाएगा। और जो भी पति पत्नी हैं जिनके बीच ये दो बातें बहुत मजबूत हैं, इनकी प्यार भी है और विश्वास भी है, उनका दाम्पत्य जीवन मान के चलिए कि हमेशा सुखमय रहता है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि थोड़ी सी जो खट्टी मीठी बातें हैं वो तो जीवन का हिस्सा है, चलनी भी चाहिए।
1: बिल्कुल। देखिए ना, इसी तरह की कुछ बात हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखी है, लिखा इन्होंने कि कहते हैं कि जो धनुष बहुत मुश्किल से मुड़ते हैं वो चटक कर टूट जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी यही बात लागू होती है। दाम्पत्य जीवन एक प्रतिध्वनि की तरह है, जो देंगे वही आपके पास वापस आएगा। अगर एक दूसरे की खूबी को आप सराहते हैं तो कमियों को भी नज़रअंदाज करना सीखिए। एक दूसरे की असहमति को समझें और ध्यान दें कि कहीं आप कंट्रोल फ्रीक तो नहीं होते जा रहे। एक दूसरे की कमियों और खूबियों को ही उसकी विशेषता समझें और हर कदम पर अपने जीवन साथी को बदलने की कोशिश हरगिज ना करें, वरना जीवन में सिवाय कलह के और कुछ नहीं मिलेगा। कुछ तुम समझो कुछ हम समझे, ये वाला सूत्र अपनाएं और दाम्पत्य की गाड़ी को दोनों पहियों पर चलने दें।
0: और ये जो इन्होंने लिखा है ना कि बदलने की कोशिश ना करें, जब आप किसी से अगाध प्रेम करते हैं तो आप उसको उसकी हर अच्छाई बुराई, उसकी कमियां खूबियों सबके साथ उसे अपनाते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। कहीं आपको सिर्फ खूबियां देखकर किसी से प्रेम हुआ और बाद में कमियों के देखते अगर झगड़े में चीज़ें बदल जाती हैं तो ये सुखी दाम्पत्य जीवन की निशानी रही है, क्योंकि जहाँ खूबियां होती हैं वहीं कमियां सब में होती हैं। और एक चीज़ और है ममता जी, कि जो चीज़ आपको कमी लगती है वो किसी अन्य को खूबी लग सकती है, और जो आपको खूबी लगे वो किसी अन्य को कमी लग सकती है। ये सबका देखने का समझने का अपना नज़रिया होता है।
1: और दिन भर आरोप प्रत्यारोप भी दाम्पत्य जीवन को कमज़ोर बनाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो दोनों की जहाँ समझदारी होती है वहाँ लंबे समय तक दाम्पत्य टिकता है, जबकि कोई बहुत बड़ी समस्या ना हो, बड़ी घटना ना हो। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि छः आने का टिकट भाग दो का इंतज़ार है, देख इन्होंने सुन लिया, और ये जो विषय है सुखी दाम्पत्य जीवन मेरे कोमल दिल पर मरहम है और प्रहार भी। बहुत ही नाजुक विषय है, चर्चा का इंतज़ार है, सहन शक्ति की परीक्षा है। जब विवाहित जीवन 30 साल पूरा होता है तो साथ रहना भी है, एक दूसरे का के साथ दुश्मनी भी है, तो फिर भी कट ही जाएगी, ऐसा इन्होंने लिखा है। दरअसल इन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा है, शायद हो सकता है कि छोटी सी दरार पड़ जाती है दाम्पत्य जीवन में तो लोग उसको बहुत बड़ा भी बना लेते हैं कई बार। हाँ। और कई बार उस दरार को पाटने की कोशिश नहीं करती है तो टूटने की नौबत आ जाती है, तो कोशिश हो कि वो दरार पाट लिया जाए।
0: और हमारे श्रोता ने लिखा ना कि कई बार मुश्किल वक्त में साथ देना होता है, तो बहुत सारी मुश्किलों का समय आता है जब पति पत्नी की भी एक बहुत कठिन परीक्षा होती है। अभी मान लीजिए आपके जो पतिदेव हैं यानी किसी स्त्री के पति हैं, उनकी नौकरी छूट गई या बिजनेस में कोई बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, और ये ऐसे समय में ना एक जीवन साथी की आवश्यकता

सबसे ज्यादा होती है। हो सकता है कि अगर कोई महिला है वो कोई बिजनेस वुमेन है यानी कि वो नौकरी करती हैं या कोई व्यापार करती हैं और उनके व्यापार में घाटा हो गया, तो चाहे वो पति हैं या पत्नी हैं, कामकाज जब मंदा होता है या छूट जाता है तो घर में आर्थिक समस्याएं आती हैं और बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल होने लगती हैं। ऐसे में परिवार में लोगों का तनावग्रस्त

0: मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी है
1: जी
0: कि आप एक दूसरे की बात को समझें, और जहां कोई एक परेशान है तो साथी को चाहिए कि वो आपकी उस परेशानी को दूर तो नहीं कर सकता है कोई एकदम से,
1: जी
0: लेकिन उस परेशानी में ये जताना बहुत जरूरी है कि हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे वो ये नौबत जो आपने ऑफिस की बात कही, चाहे वो हो, चाहे एक दूसरे में से कोई एक जोड़ा बीमार पड़ जाता है तब की समस्या है, या फिर कई कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसका शिकार हो जाता है, तब तो निश्चित रूप से दोनों में से एक की जरूरत पड़ती है। बात जरूरत की नहीं है, जरूरत तो आप और भी तरीके से पूरी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत यहां पर बात यह है कि आप जिससे प्रेम करते हैं दांपत्य जीवन में निश्चित रूप से प्रेम की नींव होती है, मतलब प्रेम की बुनियाद पर ही टिका होता है, उस प्रेम को टूटने से कैसे बचाएं।
1: और जैसे आपने कहा ना कि चिंता ना करते हुए अगर कोई भी एक शख्स ये कह देता है कि आप चिंता मत करो मैं हूं ना आपके साथ,
0: बिल्कुल,
1: तो ये जो शब्द हैं बहुत कहते हैं कि मजबूत बना देते हैं।
0: अब एक गाना सुनते हैं।

तो ये गाना सखियाँ और सखा सुन रहे थे और हमारी बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि पति पत्नी के आपसी विश्वास और साथ से दाम्पत्य जीवन भी सुखी और बच्चे भी सुखी होते हैं। बात यहाँ

0: की है तो ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। कई बार दांपत्य जीवन को स्थायी रखने के लिए, टिकाऊ रखने के
1: हाँ
0: लिए
1: हाँ
0: बच्चे बच्चे की भूमिका बहुत अहम होती है।
1: हाँ
0: कई बार बच्चे पति पत्नी के झगड़ों में आकर अच्छी बड़ी भूमिका निभाते हैं और झगड़े को ख़त्म भी करवा देते हैं।
1: बिल्कुल
0: और
1: सही
0: कई
1: कहा।
0: बार ये माता पिता भी बच्चे के लिए अपने झगड़े ख़त्म कर देते हैं।
1: बहुत सही कहा आपने। और कई बार ऐसा भी होता है ना, जब मुश्किल का समय आता है, जैसे हम एक बात कर रहे थे, हमने एक सिर्फ कारोबार या नौकरी की बात की, ऐसे समय में पत्नियां एक तरीके से इस चीज़ को टूल की तरह इस्तेमाल करती हैं। भाई अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं मायके चली जाऊंगी। यानी कि बात बात पर आपको अपने, चाहे वो कोई छोटी सी नोकझोंक वाली बात है या कोई बड़ी समस्या आपके साथ में हुई है
0: चंचल
1: दाम्पत्य
0: जी,
1: जीवन
0: यहाँ पर अब उल्टा
1: में
0: भी होने लगा है। हमने तो सुना है कि अब महिलाएं ये कहती हैं कि मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं तुमको घर से निकाल
1: अच्छा तो भाई दोनों
0: दूंगी।
1: ही परिस्थितियां जो है वो ठीक नहीं है। ना तो पति को घर से बाहर निकालने वाली परिस्थिति ठीक है, ना ही मायके जाने वाली है। जो भी कोई समस्या आपके जीवन में आई है, जो दाम्पत्य जीवन के साथ में उलझनों को बढ़ा रही है, तो उसे सुलझाने का प्रयास करना है और दोनों को मिलजुल कर ही करना है। अगर किसी तरह से हमें पता लगता है कि जीवन साथी के साथ कोई स्वास्थ्य समस्या भी है, किसी रोग से वो ग्रसित हैं, तो ऐसे समय में भी धैर्य से काम लेना है। अगर वो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, चाहे वो पति हैं या पत्नी, तो उनका सहयोग अगर मिलेगा, आप ध्यान देंगे, तो वो जो भी आपका रोग है या आपकी समस्या है, उससे जल्दी स्वस्थ होकर, सुरक्षित होकर, उबर कर बाहर आ सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और देखिए, कुछ मिलती जुलती बातें हमारे श्रोताओं की ओर से भी आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सुखी दाम्पत्य जीवन की कुंजी खुशी है, जो पारस्परिक सम्मान, अटूट विश्वास और खुले मन से संवाद रूपी की चेन में बंधी हुई है। अध्यात्म और ज्योतिष दृष्टि से सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शिव पार्वती को ध्यान में रखना चाहिए। और इस मतलब आध्यात्म की ओर ले जाने की बात इन्होंने कही है।
1: जी
0: दरअसल आज जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, ऐसे में आपको सबसे बड़ी कुंजी तो यही है कि आप एक दूसरे की बात को सुने और समझें, तो काफ़ी कुछ मुश्किलें हल हो जाती हैं।
1: एक बड़ा छोटा सा बात छोटी सी कही है शोधा ने, लेकिन अहम बात है। उन्होंने लिखा है कि सुखी दाम्पत्य जीवन कोई बना बनाया नियम नहीं, ये दोनों की भागीदारी की निरंतर प्रयासों और आपसी समझ के बिना किसी शर्त के बिना एक दूसरे को स्वीकार करने की भावना से ही ये रिश्ता फलता और फूलता है।
0: चंचल जी, दरअसल ये बड़ी बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही नाजुक डोर होती है
1: जी
0: दांपत्य की, और इस नाजुक डोर को टूटने से बचाना ही सही होता है। हालांकि अब दौर बदल चुका है, जब हम सभी इस बात पर चर्चा करते हैं और स्त्री विमर्श की जब बात आती है, तो यही होता है कि आपकी, जब आपका मन एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, तो आप एक दूसरे के साथ को छोड़ दें। लेकिन बहुत मुश्किल होता है छोड़ना भी।
1: जी
0: जोड़ना जितना आसान होता है, छोड़ना उतना ही कठिन होता है। तो जब आप घर में बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है और बहुत ज़्यादा रोज़ रोज़ की मारपीट, लड़ाई झगड़े जब एकदम
1: जी
0: अति हो जाती है, तो निश्चित रूप से छोड़ना ही बेहतर होता है। लेकिन उसके लिए लड़कियों की बचपन से जो कंडीशनिंग होती है, लड़कियों की जो पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी जो परवरिश होती है, उनको शुरू से ट्रेंड करना बहुत ज़रूरी है। अब पिछला समय जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही सम्मान देना चाहिए और शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। अमूमन हमने देखा है कि घरों में लड़कियां कभी पिता के सहारे, कभी भाइयों के सहारे, फिर कभी दोस्तों मित्रों के सहारे ही अपना जीवन जीती हैं। तो
1: जी
0: जब पति पत्नी के बीच ऐसी नौबत आती है, तो वो औरत ये सोचती है कि अब हम कहाँ जाएं, अब हम क्या करेंगे, किसके सहारे जिएंगे। तो ये जो सहारे वाली बात मन में आती है, इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो दौर बदल चुका है।
1: और कई बार जब त्रिकोण वाली परिस्थिति आती है ना, अगर आपका कोई साथी है, कोई मित्र है, पति की कोई अगर महिला मित्र है या पत्नी की कोई पुरुष मित्र है, तो उनको लेकर भी कई बार संदेह मन में इस तरह के आते हैं कि दाम्पत्य जीवन टूटने की कगार पे आ जाता है। और कई बार आजकल मोबाइल जो चीज़ है, हम एक दूसरे की अंदर झांकने के लिए उस मोबाइल को देखने की कोशिश करते हैं। अगर वहाँ कोई पासवर्ड है वो हमें ना मिले, तो शक कहते ना पक्का हो जाता है, गहरा हो जाता है कि भाई पासवर्ड क्यों लगाया है आपने अपने मोबाइल पर, ऐसा क्या है जो हम नहीं देख सकते। तो ये चीज़ें भी कई बार परिस्थितियों को बहुत उलझा देती हैं, तो चीज़ों को समझ के लेने वाली बात है।
0: और पासवर्ड तो अमूमन महिलाओं को, मतलब महिलाओं का पासवर्ड पुरुष ही तय करते हैं, तो ये तो शायद भेद अब तक नहीं

0: मिट पाया है, और ऐसी तमाम छोटी छोटी बातें हैं जो जिसे हम अनदेखा करके दाम्पत्य जीवन को संभाला जा सकता है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब एक साथी की नाइट शिफ्ट होती है और दूसरा घर में है, मान लीजिए पति की नाइट शिफ्ट है और पत्नी घर में रहती है और घर की पूरी देख रेख कर रही है, उसके कंधे पर पूरी घर की जिम्मेदारी है, तो यहाँ भी टसल होने के चांस होते हैं, क्योंकि उसको नींद की ज़रूरत होती है पति को, और वो घर उतना मैनेज नहीं कर पाता है, तो भी मुश्किलें होती हैं। तो ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके कारण टकराव होते हैं।
1: कुल मिला के कहना यही है कि हर समय, चाहे वो कठिन समय है चाहे आपके प्यार के पल हैं, एक दूसरे का हाथ हमेशा थामे रहें और अपनी ज़िंदगी की मुश्किल भरे दौर में भी एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। जब आप खुशी एक साथ साझा करते हैं तो दुख को भी एक साथ साझा करें।
0: साथ छोड़ने की जब बात आती है तो बहुत ज़रूरी है कि स्वावलंबी होना
1: जी
0: महिलाओं का। महिलाएं अगर आत्मनिर्भर हैं और उनकी भी आजीविका है साथ में, तो जब ऐसी नौबत आती है तो उनके ऊपर दुख का पहाड़ नहीं टूटता है।
1: जी
0: इसलिए बचपन से लड़की और लड़के को बराबर रखना चाहिए, और बात जब दाम्पत्य जीवन को संभालने की आती है तो यही हम सभी यही कहते हैं कि तोड़ने से बेहतर होता है जोड़ना।
1: जी
0: तो जितना हो सके जोड़िए एक दूसरे को।
1: अब
0: फिलहाल
1: सुनते
0: सुनिए
1: हैं।
0: ये गाना।

0: देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना अभिमान फिल्म, ये भी तो दाम्पत्य जीवन पर ही आधारित
1: है, किस तरह से थोड़े से अहम को लेकर दाम्पत्य जीवन टूट जाता है।
0: तो अहम का टकराव नहीं होना चाहिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है, सुखी दाम्पत्य जीवन भाई दाम्पत्य जीवन सुखमय ही नहीं अपितु आनंद युक्त होना चाहिए, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी लोगों के पास आनंद नहीं है, बहुतेरे अपने उस बेगाने प्यार की तलाश और मोबाइल में कर रहे हैं, तो क्या किया जाए।
1: जी बिल्कुल सही बात है। तो चलिए अब कुछ खट्टे मीठे चटपटे जिस तरह के भी व्यंजन हैं इनकी बात हो जाए। और आज हम बात कर रहे हैं जिन व्यंजनों की, उसमें से एक है शुक्तो। ये एक पारंपरिक बंगाली मिश्रित सब्जी होती है जिसका स्वाद हल्का कड़वा और मलाईदार होता है। मुख्य सामग्री इसमें होती है करेला, कच्चा केला, बैंगन, सहजन की फलियां यानी कि ड्रमस्टिक्स और राधुनी मसाला और दूध। इसे बंगाली दोपहर के भोजन की शुरुआत के समय मेन कोर्स के रूप में परोसा जाता है।
0: और एक व्यंजन इस तरह से बना है, सोनार मूंग दाल। ये भुनी हुई मूंग दाल से बनने वाला खास और शाही व्यंजन कहलाता है। इसमें दाल को पहले सूखा भून दिया जाता है जिससे इसमें एक बेहतरीन सोंधी खुशबू आती है। मुख्य सामग्री है सोना मूंग दाल, छोटे दाने वाली खास तरह की दाल, घी, काजू, किशमिश और हरी मिर्च। इसे बंगाली शादियों, त्योहारों और विशेष पूजा के अवसरों पर चावल के साथ परोसा जाता है।
1: इसी तरह से एक और रेसिपी हमारे पास आई है, ये मोचार घंटों, और ये बिहारी रसोई में भी बनाया जाता है बंगाली रसोई के साथ साथ। और जिनके भी घर में केले का पेड़ लगा हो वहाँ केले का गोंद गिरता है, उससे फूल बनता है। और ये इन्होंने रेसिपी बताई है कि उस फूल को निकाल कर ये सब्जी बनाई जाती है। थोड़ी सी मेहनत इसमें ज़्यादा लगती है लेकिन उसके भीतर पुंग केसर को निकालना पड़ता है और थोड़ा सा एक कसैला भी लगता है। इसे उबालकर बेसिक मसालों के साथ और बिना प्याज लहसुन के बहुत स्वादिष्ट सब्जी बन जाती है। उबालने के बाद पिसे हुए चने या मसूर दाल में मिलाकर इसकी पकौड़ियों की तरह बनाकर इसके कोफ्ते भी बनाए जाते हैं।
0: पातिशाप्ता जानती हैं आप क्या होता है? नहीं जानती है?
1: जी चलिए बताइए।
0: तो हमारी श्रोता ने ये लिख भेजा है, पातिशाप्ता ये एक तरह की पारंपरिक बंगाली मिठाई है और जो पतले चीले की तरह दिखती है। ये बेहद मीठी और मलाईदार होती है। मुख्य सामग्री इसमें लगती है मैदा, सूजी और चावल के आटे का घोल, जिसमें खोया कद्दूकस किया हुआ, मतलब मावा कद्दूकस करके नारियल और खजूर का गुड़ भरा जाता है। और इसे विशेष रूप से पौष संक्रांति के त्यौहार पर सर्दियों में बनाया जाता है।
1: इसी तरह से एचौरा डालना, ये कच्चे कटहल की एक गाढ़ी और मसालेदार तरी वाली सब्जी होती है। इसका स्वाद और बनावट काफ़ी हद तक जो मांसाहारी व्यंजन होते हैं उनकी तरह, मतलब देखने में लगता है। और इसमें मुख्य सामग्री होती है कच्चा कटहल, आलू, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, बंगाली पंचफूरन के साथ और गर्म मसाले के साथ इसे परोसा जाता है और इसे शाही मटन भी कहते हैं।
0: और जब भी ये सब व्यंजन बनाएं आप तो उस समय गाना ज़रूर सुने, वो भी विविध भारती से। फिलहाल ये गाना सुने।

0: अब जरा घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 4 बजने को हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

श्रोताओ, प्रत्येक सोमवार सेहतनामा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं सेहत से जुड़ी समस्याएं और उनके निदान पर विशेषज्ञों से बातचीत। बालों की सुंदरता और इसके लचीलेपन को लेकर हम बड़े

0: सजग रहते हैं और हर तरह से इनकी सुंदरता के लिए प्रयास भी करते रहते हैं, फिर भी बालों को लेकर एक समय के बाद कुछ न कुछ समस्याएं देखने में आ ही जाती हैं। पिछले हफ्ते आज ही के दिन बालों की समस्या और देखभाल इस विषय को लेकर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत हमने आपको सुनवाई थी। आज इसी बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाते हैं।
1: अच्छा, मुझे ये बताइए कि कई पुरुषों में जो बालों की समस्या वो दो तरह से होती हैं। एक तो ये कि बाल पीछे की तरफ सरकते चले जाते हैं और ये माथा जो है वो बड़ा होता चला जाता है। दूसरा, जिसको हम हिंदी में चांद निकलना कहते हैं, बेल्डनेस आती है बीच के हिस्से में। इन दोनों को रोका जा सकता है? इनका कोई उपाय है? या ये जेनेटिक है और ये खानदानी चीजें हैं तो इसको टाला नहीं जा सकता?
2: एक भ्रम है लोगों में।
1: अच्छा,
2: कि जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट नहीं है। ये भ्रम। अगर मैं कहूं कि डायबिटीज भी जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट मत लीजिए। हो सकता है?
1: नहीं हो सकता है, मुश्किल हो जाएगी।
2: तो जरूरी समझना है कि जेनेटिक बीमारियां जो होती है, साइंस ने इतना रिसर्च कर लिया कि उसमें ट्रीटमेंट लाई हुई है।
1: ओके।
2: और हमने ऐसे ट्रीटमेंट देखे हुए हैं कि जिसको रिस्पॉन्स काफी तरह होता है। सिर्फ ट्रीटमेंट का तरीका अलग अलग है। स्टेज वन, स्टेज टू, अलग अलग स्टेजेस में हमको ट्रीटमेंट देने होती है। तो चांद निकला है, शायद मेडिकल लाइन इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हो, उससे फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि बहुत बड़ा चांद है।
1: बहुत बड़ा चांद है, सिर पर बहुत बड़ा चांद है।
2: तो उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है।
1: जी जी जी, ओके।
2: उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है।
1: उसकी भी बात हम आगे चलकर करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो क्या है, उसकी बात आगे करते हैं। तो ये टाला जा सकता है, मतलब ये कि अगर कोई खानदानी मामला भी है, जेनेटिक मामला भी है, तो भी डॉक्टर के पास जाए।
2: या क्योंकि ट्रीटमेंट है, रिसर्च ने ट्रीटमेंट निकाली है उस पर।
1: जी,
2: आपको लेना या नहीं लेना आपका डिसीजन है।
1: राइट, बिल्कुल। अच्छा, ये जो चारों तरफ बड़े सजीले विज्ञापन आते हैं, इसमें लहराते हुए बाल नजर आते हैं और ये शैम्पू लगाने से बाल चमकीले, और वो कमाल कमाल के वर्ड्स का इस्तेमाल है जो हम यहाँ नहीं दोहराना चाहेंगे।
2: तभी तो उससे विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन का काम ही है कि आप देख के थक हो जाओ।
1: हाँ, कि ये रिचनेस आती है, फलाना, अलग अलग टेक्निकल चीजें बताई जाती हैं कि ये विटामिन से भरपूर है और ये दादी नानी के नुस्खों से भरपूर है। क्या कोई शैम्पू सचमुच में बालों का भला करता है, या बिना सोचे समझे शैम्पू का इस्तेमाल करने का मतलब है कि उल्टा असर हो जाएगा?
2: मैं उल्टा नहीं बता सकूंगी कि उल्टा असर होगा। शैम्पू बहुत माइल्ड तरीके से स्लोली काम करता है। इट्स अ सपोर्टिव। जैसे कुछ शैम्पू जो है कि हमारे स्काल्प का इकोसिस्टम होता है, हमारे स्काल्प पर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे स्काल्प को हेल्दी बनाते हैं और हेयर को हेल्दी बनाते हैं। जब गंजापन आता है तो इसका जो ये है सपोर्टिवनेस या इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाती है। तो कुछ शैम्पू ये है, इंग्रेडिएंट्स जो शैम्पू में होते हैं, ये बालों के इकोसिस्टम को रेस्टोर करने का काम करते हैं स्लोली। पर कुछ शैम्पू ऐसे, अब कोई हार्श शैम्पू आजकल तो नहीं लगाता है। अच्छे वाले शैम्पू ही लगाते हैं, लेकिन वो शैम्पू में ये इकोसिस्टम को रेस्टोर करने की कैपेसिटी है या नहीं है आपको नहीं पता चलेगा।
1: जी जी,
2: आपको डॉक्टर ही बता सकेगा कि ये शैम्पू में ये सिस्टम है, आप ये लगाइए। नॉर्मल लोगों को देखना है कि आपका हार्श शैम्पू नहीं लगा। हार्श आप कैसे समझोगे? तो जब झाग ज्यादा होता है, हमारी मेंटेलिटी क्या है,
1: झाग ज्यादा है तो अच्छा है,
2: अच्छा है, पर वो ज्यादा झाग वाला शैम्पू आपका स्किन का, हेयर का मॉइस्चर निकाल लेता है पूरा।
1: ओहो, जो हर धारणा जो है लोकप्रिय धारणा, उसमें आज आप भयानक तोड़फोड़ कर रही हैं। जी, ये क्योंकि हमें तो लगा कि वाह वाह, झाग वाला शैम्पू है।
2: एडवर्टाइज देखोगे तो झाग वाला शैम्पू से भरपूर ऐसे, और लोगों को लगता है कि लेना चाहिए।
1: जी,
2: तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जितना ज्यादा झाग उतना ज्यादा तुम्हारा मॉइस्चर
1: चले जाएगा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शैम्पू की फ्रीक्वेंसी क्या हो और उसका सही तरीका क्या है,
2: उसके लिए आपकी लाइफस्टाइल समझना जरूरी है। अगर आप रोज जिम जा रहे हो या पसीना आ रहा है तो आपको रोज करना चाहिए, पर करने के टाइम पर आपको ध्यान देना है कि वो शैम्पू माइल्ड तरीके का हो।
1: ये ऐसा झाग वाला नहीं हो।

0: झाग वाला नहीं चाहिए। अदरवाइज महिलाओं में 2 से 3 बार, पुरुषों में डेली या 3 से 4 बार। अभी जिसको स्केलिंग है, डैंड्रफ है, उसके लिए आप फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, अलग टाइप का शैम्पू लेना होता है। और जब भी आप शैम्पू करें और आपके बाल ड्राई होते हैं, तो पहले दिन या 1 घंटा पहले आपको ऑयल लगाना ज़रूरी है। कोकोनट ऑयल से क्या होता है, कोकोनट ऑयल का एक कैपेसिटी है जो हेयर के अंदर के सेल तक जाके रुकता है। तो इससे उसमें से का मॉइस्चर है ना, वो शैम्पू के टाइम पर नहीं निकलता जल्दी से।
1: ओके,
0: तो ड्राई नहीं होते हैं।
1: बहुत महत्वपूर्ण बात है ये।
0: और फिर भी आपको लगता है कि ड्राई हो रहे हैं, तो कंडीशनर लगाना चाहिए। भले ही आप 2 मिनट के लगाओ, 5 मिनट के लगाओ, लेकिन कंडीशनर लगाइए। पहले वाला कंडीशनर मतलब तुम्हारा ऑयल जो कोकोनट ऑयल है, बाद में वाला कंडीशनर मतलब अभी मार्केट में अच्छे वाले कंडीशनर आते हैं। इसके बावजूद भी आपके बहुत ड्राई है, लस्टरलेस है, तो आपको देखना चाहिए, उसको बोलते हेयर शार्प डिसऑर्डर्स, मतलब आपकी शार्प की क्वालिटी कुछ खराब हो रही है। वो भी जेनेटिक होता है और नॉन जेनेटिक भी होता है।
1: ओके,
0: तो वो एक एनालिसिस करके लेना जरूरी होता है।
1: जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: मजेदार ये है कि हम बातें बालों की कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और गाने भी जो हैं वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि शैम्पू की फ्रीक्वेंसी की सारी बातें हो गई कि किस तरह से शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने बड़ी सूझबूझ के साथ नारियल के तेल का जिक्र किया। आज के लड़के या कुछ हद तक लड़कियां भी बालों में तेल लगाने से परहेज करते हैं क्योंकि रोज बाहर जाना है वो गंदा दिखेगा, बाल चिपचिपे दिखेंगे। ये तेल लगाना कितना जरूरी है?
1: तो मैं कहूंगी तेल लगा के बाहर नहीं जाइए, रात को तेल लगाइए, सुबह आपको शैम्पू करना है तो जो दिन शैम्पू करना है उसके पहले रात को तेल लगा लीजिए।
0: जी,
1: तेल लगाने का और एक फायदा होता है, ये रिसर्च बोलती है। और ये जब मैं सोचती हूँ कि हमारे टाइम पर हम लोग तेल लगा के शैम्पू करते थे बचपन में,
0: बिल्कुल
1: एक क्या बोलते हैं, माहौल रहता था, रूल था कि मम्मी आती थी अच्छे से तेल चंपी करती थी और दूसरे दिन हम शैम्पू करते थे। रिसर्च ने बताया है कि कुछ तेल ऐसे हैं जिसकी इकोसिस्टम मेंटेन होती है, जो मैंने बोला है इकोसिस्टम,
0: हाँ जी,
1: वो तेल से मेंटेन रहती है।
0: तो देखिए कि ये हमारी पुरानी
1: परंपरा
0: कितनी साइंटिफिक
1: है, तभी साइंटिफिक नॉलेज नहीं था। तो अभी क्या हुआ कि पेरेंट्स वो टाइम के चले गए, अभी मॉडर्न पेरेंट्स आए हैं तो उनको ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं है।
0: जी,
1: मैं तो कहती हूँ तेल लगाना जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है
1: इकोसिस्टम के हिसाब से, अगर आपको बालों के इकोसिस्टम मेंटेन करने। इस सिंपल एक एग्जांपल देते हो, आप बालों को मॉइस्चराइजर, हाथों को मॉइस्चराइजर लगाते हो, क्यों लगाते हो?
0: रूखे हो जाते हैं।
1: स्काल्प को हम मॉइस्चराइजर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सीबम रहता है अपने बालों में, एक सीबम जो बालों में बहुत ज्यादा रहता है, सीबेसिस ग्लैंड बहुत रहता है, तो मॉइस्चर की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए। लेकिन ओवर पीरियड जब हम धूप में जाते हैं, हमारी जब उम्र होती है तो इसका प्रमाण भी सीबम सिक्रीशन का कम हो जाता है। तो हम रोज नहीं लगा रहे ऑयल, पर बॉडी में हम रोज लगाते हैं स्नान करने के बाद, ड्राई होते हैं, तो कभी कभी सर के बालों को, स्किन को तेल लगाना जरूरी है।
0: ये फ्रीक्वेंसी क्या हो, इसका भी कंफ्यूजन दूर होना चाहिए।
1: हफ्ते में 2-3 बार। आप शैम्पू तो हफ्ते में 2-3 बार कर ही रहे हो। और बहुत चिपचिप नहीं, थोड़ा सा, जैसे आप मॉइस्चराइजर बॉडी को लगा रहे वैसा समझ के लगाइए तेल।
0: जो लोग नहीं लगाते हैं बालों में तेल, चाहे वो अपनी मान्यता की वजह से या फैशन की वजह से या लापरवाही की वजह से, उनके बालों पर क्या असर पड़ता है?
1: देखो, सिर्फ बालों से नहीं, ये बालों का जो इकोसिस्टम सपोर्टिव सिस्टम है, आपका मेन कॉज क्या है, अगर हेयर फॉल का मेन कॉज अलग है, अगर मैंने उसको नहीं ठीक किया तो सिर्फ तेल लगाने से काम नहीं होने वाला।
0: जी, वो एक पूरा स्कैल्प और पूरा
1: इकोसिस्टम, ये होलिस्टिक अप्रोच ले करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल।
1: दूसरा मैं कह रही थी कि जो आपने देखेंगे ना, जो तेल लगाते हैं, रेगुलर तेल लगाते हैं, उनका शायद बाल झड़ने का प्रमाण जल्दी ठीक हो जाता है।
0: जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर बोल दीजिए, बहुत सारे लोगों को समझ में आए।
1: जो बालों में तेल लगाते, बालों में मतलब स्किन पर, जब बालों में हम तेल लगाते हैं वो कंडीशनिंग करके होता है, सर के स्किन को तेल लगाते हैं वो इकोसिस्टम इंप्रूव करने का काम करता है,
0: उनके बाल सही सलामत रहते हैं,
1: रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
0: जी बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर एक गाना आएगा और वो सावन की घटा फिल्म का गाना है, जुल्फों को हटा दे चेहरे से, थोड़ा सा उजाला होने दे। सुनते हैं ये गाना

0: इतने जुल्फों के गाने हम बजा रहे हैं और इतनी इम्पोर्टेंट बातें कर रहे हैं. आपने कई ऐसी पॉपुलर मान्यताओं में तोड़फोड़ कर दी जिनको हम मानते थे कि जैसे झाग वाला शैम्पू, तेल ना लगाना, ये तमाम बातों को लेकर बड़ी उपयोगी जानकारी आपने.
1: ड्राइनेस कम हो जाता है जैसे ही आप, वैसे ही जैसे आपका कलर डाई भी लाइट कलर का होगा, गोल्डन होगा, तो ड्राई बहुत ज्यादा होता है. मेहंदी लोग इसके लिए लगाते हैं कि वो ये कलर डाई से डरते हैं, पर अगर आप देखेंगे कलर डाई इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, साइड इफेक्ट्स वाले होने वाले प्रमाण बहुत कम है.
0: बिल्कुल.
1: पर मेहंदी लगाने से ड्राइनेस काफी ज्यादा आता है बालों में.
0: तो इसमें एक फैसला करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सी चीज ठीक है.
1: अमोनिया फ्री अच्छे कंपनी का डाई
0: जी,
1: उसके साथ आपको कंडीशनर करिए तो आपके ड्राई नहीं होंगे बाल. तो ये जो डाई करना है कलर डाई, अगर आप ग्रे के लिए करना चाहते हैं तो नुकसान नहीं होता है. हम सभी लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ. पर आप बहुत अलग तरह के, मतलब रेड वाले कलर करोगे तो आपके बाल ड्राई होते रहेंगे. फिर वो ड्राई बालों को ठीक करने के लिए आप दूसरी प्रोसेस करोगे, तीसरी प्रोसेस करेंगे, तो ये तो विशेष साइकिल चालू रहेगी.
0: बिल्कुल. तो इसलिए समझदारी से चीजों का इस्तेमाल करना जरूरी है. यहाँ पर एक गाने की बारी है.

0: ये जो हेयर कलर्स हैं, क्या ये कोई बड़ा नुकसान अचानक कर सकते हैं कि बालों का एकदम बड़ा पैच अचानक गायब हो गया?
1: अगर आपका कलर लो क्वालिटी का है, उसमें इरिटेशन बहुत ज़्यादा है, रिएक्शन हो गई आपको, यस, कुछ लोगों को रिएक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये रिएक्शन वाली बात हुई तो डेफिनेटली यस
0: तो इसको लेकर सावधानी की जरूरत
1: यस
0: है। एक बहुत बड़ी और कॉमन समस्या हर उम्र के लोगों में है और वो डैंड्रफ की समस्या है, जिसको लेकर भी विज्ञापन इंडस्ट्री बहुत सक्रिय है। तो डैंड्रफ से जुड़ी भ्रांतियां दूर कीजिए।
1: डैंड्रफ के साथ बहुत लोगों को एक स्टिकी टाइप का डैंड्रफ होता है, किसी लोगों को फ्लेकी फ्लेकी
0: जो
1: टाइप का
0: जो
1: डैंड्रफ
0: नीचे
1: होता
0: गिरता
1: है,
0: रहता है।
1: गिरता रहता है। लोगों में धारणा ऐसी है कि डैंड्रफ हुआ तो मुंह से हुए, ये गलत
0: अरे
1: है, ये गलत है। वो डैंड्रफ फेस पर आता है और फेस में, वो
0: जी
1: अलग है, मुंह से का पैथोजेनेसिस बिल्कुल अलग है और डैंड्रफ का अलग है।
0: जी
1: डैंड्रफ के प्रकार जो होते हैं उसमें आपको समझना चाहिए माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है, क्योंकि वो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट अलग होती है। यहाँ मैं सावधान करना चाहूँगी कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट मतलब हम स्कोप के नीचे देखते हैं, बहुत सारे आधे लोगों को स्कल सोरेसिस होता है। ये स्कल सोरेसिस अलग बीमारी है,
0: जी
1: या जैसे हमारे बॉडी में सोरेसिस है वैसे एक स्कल सोरेसिस एक प्रकार है।
0: उसके बारे में भी बता
1: हाँ,
0: दीजिए।
1: तो ये स्कल्प सोरेसिस हमको वो टेस्ट करने मतलब ट्राइकोस्कोप से समझ में आती है कि स्कल्प सोरेसिस है या डैंड्रफ है। जो जो लोगों को डैंड्रफ करके डायग्नोस हुआ, 50% लोगों में स्कल्प सोरेसिस निकला, इसका हमने रिसर्च किया हुआ है। तो स्कल्प सोरेसिस की ट्रीटमेंट अलग है, हालांकि उसको क्योर नहीं है, बट हम बिल्कुल कंट्रोल रख सकते हैं दवा से। दवा भी बहुत सिंपल है, बहुत हार्श दवा नहीं है, पर रिकरेंस इज वेरी कॉमन, तो लोग फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं रो, तो उसको कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि रिकरेंट होती रहती है। कंट्रोल करना हमारे, जैसे हम डायबिटीज़ की दवा लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, हम ऐसे बोलते हैं क्या कि मुझे खाना नहीं है, कितने सालों तक मैं खाऊँ,
0: ऐसा तो कभी नहीं हो सकता
1: ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो कुछ चीज़ों को हम एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए।
0: जी। कई शैम्पूज इस तरह के विज्ञापन के साथ आते हैं कि वो डेंड्रफ के दुश्मन हैं, क्या ऐसा होता है?
1: शैम्पू डैंड्रफ के दुश्मन है कि शैम्पू डैंड्रफ के लिए है?
0: बताइए कि शैम्पू डेंड्रफ हटाते हैं या नहीं हटाते हैं?
1: नहीं, कुछ शैम्पू डैंड्रफ हटाते हैं, और बहुत बार कैसे होता है कि सेम तरीके का शैम्पू जब आप इस्तेमाल कर रहे हो और कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद वो शैम्पू काम करना बंद हो जाता है।
0: अच्छा,
1: मतलब
0: ऐसा भी
1: आपको
0: होता है।
1: लगता है कि अभी ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इंग्रेडिएंट को कभी कभी ये मैलेजिया फरफर करके एक फंगा होता है, वो काम नहीं करते, तो दूसरा इंग्रेडिएंट हुआ शैम्पू आप ले सकते हो। पर भी आपके नहीं जा रहे, तो आपको देखना है कि आपका स्कैल्प सोरेसिस नहीं है ना, आपको नहीं पता चलेगा। दोनों स्कैल्प सोरेसिस और डैंड्रफ बहुत दिखने में सेम दिखते हैं। इससे अच्छा मैं मैसेज देना चाहूंगी कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपने ट्राई किया है,
0: जी
1: आपको फर्क नहीं हो रहा है, तो आपको स्कल्प सोरेसिस है या नहीं है इसकी जान लीजिए।
0: ओके, उसको आपको टेस्ट करवा लेना
1: हाँ,
0: है। जी, ये एक थंब रूल हो
1: थम
0: गया।
1: रूल, मतलब लोग
0: बिल्कुल
1: ऐसे ही बहुत सालों तक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं, एक छोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और बहुत परेशान हो जाते हैं।
0: हाँ,
1: तो आपको देखना है कि आपको स्कल्प सोरेसिस है कि नहीं है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये मैसेज जाना चाहिए।
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अब मुझे लगता है एक गाना करते हैं और उसके बाद हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करेंगे, जो एक बहुत
1: बिल्कुल,
0: बड़ा मुद्दा है।
1: बहुत
0: तो
1: बड़ा मुद्दा है।
0: यहाँ पिया का घर फिल्म का गाना आ रहा है, ये जुल्फ कैसी है
1: ओ
0: जंजीर जैसी है
1: क्या,
0: ना।

0: डॉक्टर, हमने ये इतनी सारी बातें की तो लोगों को ये समझ में आ गया कि क्या तरीका है बालों की देखभाल का, लेकिन कई बार ये होता है कि बाल तो चले ही गए और एक और बहुत ज़्यादा चलन चारों तरफ है कि कोई एक व्यक्ति अपना ट्रांसप्लांट करवा के आता है और एकदम उसका रूप बदल जाता है और सब लोग उससे पूछने लगते हैं कि ये क्या किया, तो पता चला कि उसने ट्रांसप्लांट करवाए और बाल, मतलब लुक जो है वो पुराना वाला आ गया। ये तरीका क्या जनरलाइज्ड सब लोगों के लिए कारगर है या ये कुछ कुछ लोगों पर काम करता है?
1: सब लोगों पर कारगर के लिए हमें जानना जरूरी है कि उसका अंडरलाइन कॉज क्या है।
0: जी,
1: अगर अंडरलाइन कॉज है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या सिकेट्रिशियल एलोपेशिया बोलते हैं, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है। अगर हेयर फॉल का कारण अलग है और आप नहीं जानते हैं, और हेयर ट्रांसप्लांट करने से मतलब नहीं है। अभी सेफ्टी के इशू में अगर बात करें तो बहुत बड़ी, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट ऐसी हो रहा है आजकल कि बहुत सेंटर पर टेक्नीशियंस हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, टेक्नीशियंस एनेस्थीसिया देते हैं।
0: ओहो हो,
1: तो ये गलत बात हो जाती है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन जो भी, ये एक प्रोसीजर है जो लोकल में होती है। जैसे आपके यहाँ हम सूचर करते हैं, समझो आप एक सर्जन से सूचर करवाए या कंपाउंडर से सूचर करना पसंद करोगे?
0: सीधी सी बात है।
1: लोकल एनेस्थीसिया देते हो, डॉक्टर को सब मालूम है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, रिएक्शन हुआ, कैसे मैनेज करना है, कितने अमाउंट में लोकल एनेस्थीसिया देना जरूरी है, अंडरलाइन पेशेंट का हिस्ट्री क्या है, पेशेंट स्मोकर है या कोई कन्वर्शन की मेडिसिन ले रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, ये सब कौन कर सकता है? डॉक्टर ही कर सकता है।
0: यस।
1: सो अगर इसमें उदाहरण मैं देना चाहूंगी तो अगर मैंने आपको एक चक्कू दिया, जो आप मूर्तिकार है, और एक चक्कू मैंने छोटे बच्चे को दिया, चक्कू चक्कू ही है पर छोटा बच्चे के हाथ में बहुत डेंजरस है, और आप मूर्तिकार हैं, आप एक अच्छी मूर्ति बना सकते हैं, तो आपके हाथ में बहुत सेफ है।
0: यस।
1: तो आपका सर आपके किसके हाथ में दे रहे हैं वो जानना जरूरी है,
0: बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
1: यस,
0: बिल्कुल। ये हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसेस क्या है और ये कितना महंगा है?
1: ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है
0: जी,
1: क्योंकि ये वन टाइम एक ही दिन में होता है ट्रांसप्लांट, और प्रोसेस ये है कि आपके जो पीछे के बाल होते हैं, मतलब हमारे गर्दन के पीछे के साइड के ऊपर के जो बाल होते हैं, वो जल्दी नहीं जाते हैं, मतलब थिन नहीं जल्दी होते हैं, तो वहाँ से निकाल के रिपोजिशनिंग, बेसिकली वहाँ से बहुत घने होते, वहाँ से कुछ प्रमाण से 2000, 3000, 4000 हेयर फॉलिकल्स, मैं हेयर नहीं बोल रही हूँ, हेयर फॉलिकल्स, एक फॉलिकल में शायद दो भी हेयर हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, वो हम जितना एरिया होगा वो हिसाब से गंजे एरिया पर डालते हैं। अभी डालने का तरीका और लगाने का तरीका बताती हूँ। लोकल एनेस्थीसिया में वो रूट्स निकालने पड़ते हैं, तो रूट्स के साथ हेयर होते हैं, साथ में छोटे हेयर होते हैं क्योंकि ट्रिम करना पड़ता है
0: जी।
1: तो रूट्स को हम, जैसे हम झाड़ की सैंपलिंग करते हैं, वैसे रूट्स को निकाल के हम गंजेपन को जगह पर एक निक देते हैं, स्लिट देते छोटी सी, और उसमें हम

0: डिपॉजिट करते हैं ताकि बॉडी उसको रूट्स को लिए और हेयर उसमें से बाहर निकले, बट हेयर निकलने का टाइम रहता है 6 से 9 महीना
1: जी,
0: उसके बाद वहां से बाहर, और आप उसको कोम कर सकते हैं, शेप नॉर्मल, मतलब आपके ओरिजिनल
1: ओरिजिनल बालों की तरह हो जाते हैं,
0: बिल्कुल ओरिजिनल
1: बालों के, जैसे पौधे को यहां से हटा के
0: वहां लगा दिया।
1: जी जी, और आपने कहा कि एक महंगी प्रोसेस है,
0: ये थोड़ी महंगी प्रोसेस होती है,
1: क्या ये फेल्योर भी हो सकती है?
0: फेल्योर रेट बहुत कम है
1: जी,
0: अगर अच्छे सर्जन ने किया तो फेल्योर रेट बहुत कम है
1: जी। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं,

0: डॉक्टर, इतनी सारी बातें हमने की इसमें ना, महिलाओं की बातें हमने की, पुरुषों की बातें की, अलग अलग उम्र के लोगों की बातें की, बातें टीनेज से शुरू हुई, बच्चों में बालों की जो समस्याएं इन दिनों में आप देख रही हैं वो क्या हैं और क्या उनके निदान और सावधानियां हैं?
1: आप अभी सही पकड़े हो। बच्चों में बहुत कॉमन हो रहे हैं बालों की समस्या
0: जी।
1: उनके रीजन अलग है, जो बड़ों में है वो रीजन नहीं है बच्चों में। फंगल इन्फेक्शन है बच्चों में, बच्चों में एलोपेशिया एरियाटा कॉमन हो रहा है। ये दो चीजें बहुत सारे हमने कॉमन देखे, और जनरली पैंडेमिक के बाद एलोपेशिया एरियाटा बहुत कॉमन हो गया बच्चों में, जो अभी बड़ों में कम दिखाई देता है लेकिन बच्चों में ज़्यादा दिखाई देता है। और इसमें छोटे छोटे ऐसे पैचेस, राउंड राउंड पैचेस, बहुत सारे राउंड राउंड पैचेस आते हैं। बच्चे स्कूल में जाना टालते हैं क्योंकि

0: के स्कूलमेट्स उनको चिढ़ाते हैं. आप कभी भी देखेंगे तो कैप लगाए हुआ कोई बच्चा दिखेगा तो एक तो फंगल इन्फेक्शन होगा उसको या तो एलोपेशिया एरेटा होगा.
1: ओके,
0: फंगल इन्फेक्शन के लिए कैप जो पहनते हैं, कोई कैप पहनता है, वो कैप शेयर नहीं करना चाहिए, उनकी कोम शेयर नहीं करना चाहिए. और तुरंत ट्रीटमेंट इसके लिए जरूरी है कि कुछ फंगल इन्फेक्शन जो स्काल्प में होते हैं उससे परमानेंट हेयर डैमेज हो जाते हैं. परमानेंट मतलब वहां कभी बाल नहीं आएंगे.
1: अरे बाप रे.
0: हाँ, तो उसके लिए वो केरियन कहा जाता है. तो उसके लिए ट्रीटमेंट जरूरी है. और इसकी ट्रीटमेंट ऐसे नहीं कि एक दिन दस दिन, इसकी ट्रीटमेंट कभी कभी 4 हफ्ते से 6 हफ्ते तक भी चल सकती है. फंगल इन्फेक्शन जो होता है बालों के नीचे के हिस्से तक जाके बैठता है, तो उसको निकालने के लिए टाइम लगता है. और ये 6 हफ्तों तक मेडिसिन लेनी होती है. तो इनके टॉवल्स अलग, कोम अलग, सोप अलग.
1: अच्छा, इतना सब करना पड़ता है.
0: इतना सब करना पड़ता है
1: जी.
0: एलोपेशिया एरेटा, अभी एलोपेशिया एरेटा की जो बात करते हैं, सब लोग घर का सुनते हैं, इन्फ्लुएंसर का सुनते हैं, कुछ अलग अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं जो नॉन स्पेसिफिक है. इसमें टाइम बहुत निकल जाता है, कभी कभी बहुत साल भी निकल जाते हैं. और जब तक हमारे पास आते हैं उनके 5-6 साल हो जाते हैं. ये 5-6 साल इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये टाइम पर जो स्टेम सेल्स होते हैं उनकी जो रीग्रोथ की पोटेंशियल है वो कम होती जाती है.
1: जी जी,
0: जितना आपने टाइम गंवाया उतना आपका हेयर ग्रोथ की चांसेस कम होती जाती है. तो इस पर रिसर्च अभी लेटेस्ट जो डेवलप्ड हुए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जो बालों की ये जो एलोपेशिया एरेटा पर इफेक्टिव रीग्रोथ 100% पॉसिबल होने के चांसेस है.
1: ओके, तो एक उम्मीद बंधी है.
0: यस, बट ट्रीटमेंट टाइम पर लेना, इट्स अ टाइम बाउंड डिसीज मैं कहूंगी.
1: हमारी पूरी बातचीत में ये बात बार बार आती है कि समय पर सावधान होकर इलाज की तरफ बढ़ना है. यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं.

0: इतनी लंबी बातचीत का जो आखिरी मकाम है, मुझे लगता है कि यहाँ ये बात करनी ज़रूरी है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल में बालों की सामान्य रूप से देखभाल का क्या पैटर्न होना चाहिए। इसमें एक और चीज़ जोड़ देता हूँ कि बदलते हुए मौसमों में भी किस तरह से हम अपनी रूटीन लाइफस्टाइल में बालों की देखभाल करते रहें, क्या आइडियल तरीका है?
1: आपका लाइफस्टाइल के साथ आपका शैम्पू कैसे यूज़ करते हो, आप कितने कड़ी धूप में जाते? बहुत बार कड़ी धूप में हम प्रोटेक्ट नहीं करते बालों को, तो कड़ी धूप में से भी आपके हेयर फॉल हो सकते हैं बहुत कड़ी धूप में। तो नॉर्मल शैम्पू, अच्छा वाला शैम्पू जो हार्श नहीं हो, बहुत झाग वाला नहीं हो, रूटीनली आपको 2 से 3 बार हफ्ते में करना चाहिए। साथ में अगर ऑयल लगा के करें 1 घंटा पहले या रात को ऑयल लगा के करें तो बेहतर है। खाने में आप ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कीजिए, जो अभी आजकल आया है ऑटोफेजी और 16 घंटे खाते नहीं हैं, उसका असर बालों पर गिरता है। तीसरी बात जो है कि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, तो हमारे इसमें अमाइनो एसिड्स की थोड़ी कमतरता होती है, क्योंकि हमारे वेजिटेबल्स में इतने अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं, तो अमाइनो एसिड लेना ज़रूरी है। फिर आपका प्रोटीन इंटेक भी, बहुत बार वेजिटेरियन लोगों का प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट नहीं होता है, तो उस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। ये नॉर्मल लोगों के लिए बोल रही हूँ जिसके बाल नहीं झड़ रहे हैं
0: जी।
1: जब आपके बाल झड़ते हैं तो क्या कारण है, रीजन क्या है, वो एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो रीजन के हिसाब से ट्रीटमेंट अलग अलग होती है।
0: बिल्कुल।
1: और सोना,
0: नींद
1: मॉर्निंग से हो गया अभी शाम का टाइम, शाम को हेवी खाना नहीं खाना है। आप कहेंगे मैं 11 बजे नॉनवेज खा के सोता हूँ, अच्छा आपके इंटेस्टाइन सोने के टाइम पर आप उसको इंटेस्टाइन को जगा रहे हो
0: जी जी,
1: तो वो नहीं ठीक है। ओकेशनली ठीक है, पर हर बार डेली होते रहेगा तो नहीं चलेगा। बाहर का आप बहुत सारा चीज़ें खाते हैं जो प्लास्टिक में आते रहती हैं, हाँ टेस्ट के लिए एक बार खा लिया ठीक है, पर आपने उसको आदत ही बना लिया तो फिर कैसे होगा?
0: बिल्कुल।
1: तो ये सारी चीजें ये नॉर्मल हेयर को मेंटेन करने के लिए है, बाकी तो फिर बीमारी के लिए तो हम लोग हैं।
0: तो मतलब ये है कि एक तो नॉर्मल जो हमारी एक लाइफस्टाइल को हमको पालन करना है और सावधानियां जरूरी तौर पर रखनी है। डॉक्टर रचिता धुरत, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी जानकारियां आपने बड़े विस्तार से दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, हसीन जुल्फों पर, खूबसूरत बालों पर ना जाने कितने ही गीतकारों ने गीत भी लिखे हैं। जब हम सजते संवरते हैं तो अपनी हेयर स्टाइल को खास तरह से संवारते हैं। बालों के स्वास्थ्य की किस तरह से देखभाल की जाए कि इनकी सुंदरता बनी रहे, तो आज के सेहतनामा में बालों की समस्या और देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आपने सुना। अगले सोमवार आज ही के दिन एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे हमारे विविध भारती के स्टूडियो में। आपके स्वास्थ्य को लेकर फिर होंगे एक नए विशेषज्ञ, तो सुनते रहिए सेहतनामा। कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: अभी तक आप सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 5 बजने को हैं, अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। 2 दिन के किर्गिस्तान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठकों में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की भी समीक्षा की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री आज रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वे कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 4th भारत जर्मनी पर्यावरण मंच कल नई दिल्ली

0: में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण प्राकृतिक संरक्षण जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन स्नाइडर इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग स्पोर्ट पोत आईएनएस निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि आईएनएस निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा। इसे विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दी है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 903 हो गई है। 4,247 लोग अभी भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारतीय बचाव दल चिली में लांगटांग में पानी संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जलग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगाई मैदान वाले इलाके, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक आंधी तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi held a bilateral meeting today with the President of the Islamic Republic of Iran, Dr. Masoud Pezeshkian, on the sidelines of the SCO summit in Bishkek. The two leaders discussed bilateral ties. They also discussed the recent developments in the West Asia conflict and shared perspectives on the evolving situation. Prime Minister expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Later, the Prime Minister also met President of the Kyrgyz Republic, Sadr Zaparov, today. The two leaders reviewed the progress made in bilateral relations and reaffirmed their commitment to further strengthening the strategic partnership between India and the Kyrgyz Republic. Earlier in the day, Prime Minister Modi met PM of Armenia, Nikol Pashinyan, in Bishkek. The two leaders discussed ways to further strengthen bilateral cooperation across various areas, including defense, economic, pharma, science and technology, culture, and education. Tomorrow, PM Modi will address the 26th SCO summit in Bishkek. The government today notified the Semicon India Programme 2.0 with an outlay of 1.27 lakh crore rupees to boost the chip manufacturing ecosystem in the country. Union Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw released the notifications for all six pillars of the Semicon 2.0 scheme while addressing a press briefing in New Delhi today. Mr. Vaishnaw said there is confidence among global semiconductor industry stakeholders that India is the right destination for major investments in the coming decades.
2: The capex support is at a particular level that's a globally competitive support.

ईश्वर की राह पर जब कोई कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसके जीवन में आने वाली सारी विघ्न बाधाओं को हर लेते हैं। बस हमें अपना हौसला बुलंद करके अपने प्रभु में विश्वास रखना होता है। जब हम ऐसा करने में सक्षम हो पाते हैं तो हर सुख सुविधा हमारे पास बिना मांगे ही प्रभु प्रदान कर देते हैं, क्योंकि भक्तों को खुशियों से वो हमेशा निहाल करते हैं।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में शुरू किए हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां साधारण बीमारियों के साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर जैसी बीमारियों की जांच और निशुल्क इलाज भी होगा।
3: हर केंद्र पर टेलीमेडिसिन सुविधा से उपलब्ध होगा विशेषज्ञों का परामर्श, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य के लिए होगा योगा और व्यायाम प्रशिक्षण भी।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से,

0: एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संध्या कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवा मंच।

0: सभी सुनने वालों को रीना का प्यार भरा नमस्कार। युवा मंच कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जी हां श्रोताओं, आज हम बात करेंगे अपने युवाओं की, जिनकी चिंता हमें हर वक्त लगी रहती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि माता पिता होने के नाते बच्चों की सबसे ज़्यादा चिंता हमें ही होती है। बात करें आजकल के बच्चों की, तो ये बहुत ही होशियार भी हैं, साथ ही साथ इनका स्वभाव बहुत तेज़ी से बदल रहा है। तो इसका क्या कारण है, क्यों आजकल के बच्चे खुद में रहना चाहते हैं, इन सब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं मनीषा गौतम जी, जो कि एक निजी स्कूल में निदेशक है। सबसे पहले मनीषा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ये बताइए कि आज के समय में युवाओं के व्यवहार में सबसे प्रमुख परिवर्तन कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं?
1: अगर हम आज के समय की बात करें तो युवाओं में बहुत से परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। स्पेशली जब हम उन्हें देखते हैं कि वो छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, इरिटेट होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो उनकी जो एक ज़िंदगी की जो एक शैली है वो हमारे समय से बहुत ज़्यादा बदल चुकी है।
0: बिल्कुल।
1: और इसलिए उनके जो व्यवहार है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। तो हम आज अगर हम कहें कि आज उनकी क्या दिक्कतें हैं या वो किस तरह से हमारे साथ रिएक्ट करते हैं, वो काफ़ी डिफरेंट है जैसे हम होते थे। तो हम उस चीज़ को वैसे नहीं देख सकते कि उनकी आजकल क्या दिक्कतें हैं या वो किस ढंग से बिहेव करते हैं। वो अपने हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से काफ़ी अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन वही है कि हमें समझने में समय थोड़ा वक्त लगता है।
0: यही मैं पूछना चाहती हूँ कि इस बदलाव के मुख्य कारण क्या हैं?
1: जैसे कि सिर्फ मैं नहीं, आई थिंक सारी दुनिया ये चीज़ कहती है कि उनकी मेन बदलाव उनका आ रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। ज़्यादातर हम टेक्नोलॉजी को कहते हैं कि बच्चा जो है, हमारे युवा स्पेशली जो हैं, वो अपने फ़ोन से इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं या अपनी स्क्रीन टाइम इतने ज़्यादा जा चुके हैं कि वो घर वालों से बैठ के बात करना, उनके एक्सपीरियंसेस समझना, उनकी जो भी ज़िंदगी की सीख है वो लेने में थोड़े कतराते हैं।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि आजकल उनको लगता है जो कुछ भी है सब उनके हाथ में है। वो एक अपना कोई ऐप खोलते हैं और सारे आंसर उनके पास होते हैं, तो उन्हें लगता है माँ बाप की जो भी एक्सपीरियंस है उसे सीखना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सो ये कुछ एक चीज़ें हैं और उनके अंदर ये चीज़ एक जो आ जाती है कि हमें सब पता है। मैं ये नहीं कहती कि ये पहले नहीं हुआ है, हमारी जनरेशन जब थी तब हम भी शायद कभी ना कभी थोड़े बहुत रेबल, हर क्योंकि चेंज जो है वो होता ही होता है, तो हम सभी कभी ना कभी एक रेबल रहे हैं। हम जो अपने बड़े हैं हमें लगता है कि उनसे शायद ज़्यादा हमें पता है क्योंकि हमें ज़्यादा एक्सपोजर है, हमें दुनिया का ज़्यादा पता है। तो यही एक रीज़न है बेसिकली कि बच्चे जो हैं आजकल सुनना नहीं चाहते और उन्हें लगता है कि हमें ज़्यादा पता है, तो असली प्रॉब्लम वहाँ से आती है
0: जी।
1: और बड़े जो हैं, हम जो हमारी जेनरेशन है, हम उनके साथ उस लेवल पे समझ नहीं पाते उनको। तो कई बार क्या है कि वो जो हमें अपने हिसाब से समझाना चाहते हैं, हम पुराने ही ढर्रे पे चल के उनको उसी तरह से समझाना चाहते हैं, तो हमारे जो क्लैशेस हैं बच्चों के और हमारे बीच में क्लैशेस आते हैं। हमारे सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है, हम कुछ और ढंग से सोचते हैं, हम सोचते हैं आज के बच्चे भी वैसे ही सोचें।

0: जबकि हम क्या करते हैं, हम खुद एक फ़ोन लाकर उनके हाथ में दे देंगे, एक टैबलेट लाके उनके हाथ में दे देंगे, कंप्यूटर उनके हाथ में दे देंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है हमें भी इन बच्चों को अपने जो दूसरे दोस्त हैं उनके बराबर, उस बच्चे के पास ये है, वो इतना तेज़ चल रहा है, वो ये कर रहा है, तो हम भी लाके उनको सब कुछ उनके हाथ में दे देते हैं। लेकिन हम एक चीज़ से बच जाते हैं, गाइडेंस। तो मुझे ये लगता है कि अगर बच्चों में कोई दिक्कत आ रही है तो वो बेसिकली गाइडेंस नहीं होने की वजह से आ रही है। तो उन्हें एक मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है अपने से बड़ों का, लेकिन उनके बराबरी पे जाकर।
1: कहीं ना कहीं आजकल ऐसा भी देखा जाता है कि पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि बच्चों को वो समझाएं, इसलिए जैसा कि आपने कहा गैजेट्स की बात है तो हम दे देते हैं कि चलिए आपको ज़रूरत है तो, लेकिन जो प्रॉपर हमें टाइम देना चाहिए मुझे लगता है वहाँ कुछ कमी रह जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि असली चीज़ ही ये रह गई। देखिए, एक टाइम था जब हम छोटे थे तो एक तरीका बना हुआ था कि जो लड़कियां हैं घर में माँ की हेल्प करेंगी, खाना भी बनाएंगी। आज हम उसे कुछ और ढंग से देखते हैं कि लड़कियों का काम क्या सिर्फ घर पे ही रह गया है, लेकिन नहीं, वो एक फैमिली बॉन्ड बनाने का तरीका था। तो जब फैमिली बॉन्ड हम बनाते थे तो उसके लिए हम कुछ कुछ उनको एक्टिविटीज़ दिया करते थे। लड़के जो हैं वो बाहर का काम करेंगे, जाओ तुम बाज़ार से कुछ सामान लेकर आओ, हम यहाँ से घर में जो हैं लड़कियाँ काम कर रही हैं। तो एक सबको डिवाइड किया हुआ था कुछ चीज़ों में, जिसको आज हम बहुत अलग ढंग से देखते हैं और उसको, लेकिन उस समय क्या था, इस वजह से एक फैमिली में बॉन्डिंग बनी रहती थी। अब हमने वो बॉन्डिंग नहीं बनाई क्योंकि हमें लगता है, हमें खुद को लगता है कि अब इनको जब तक हम समझाएंगे तब तक हम काम खुद कर लेंगे, तुम हमें तंग मत करो, ये लो तुम्हें फोन देते हैं तुम इसमें देखो। तो हमारी ये जो प्रॉब्लम्स है ये हमारी अपनी खुद की क्रिएटेड हैं, हम खुद इन प्रॉब्लम्स को जन्म दे रहे हैं और फिर उसके बाद उस पर रो रहे हैं।
1: बिल्कुल। क्या सोशल मीडिया और डिजिटल तकनीक युवाओं के व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है या नकारात्मक रूप से?
0: ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, थैंक यू फॉर आस्किंग। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं दोनों ही तरफ से देखती हूँ, क्योंकि अगेन बात आती है गाइडेंस की। सकारात्मक, बहुत सकारात्मक चीज़ें भी हो रही हैं, बच्चे क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ। अगर आप देखें तो बच्चे बहुत यंग एज में कमाना शुरू कर दे रहे हैं, कोई पॉडकास्ट कर रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, कोई उसमें और काम कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है। लेकिन अगर उसे शुरू से गाइडेंस में लिया जाए तो डेफिनेटली बच्चे इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमने इनके हाथ में दे दिया अब इनको कुछ कर लेना चाहिए, वो नहीं होगा। क्योंकि इसके अपने एक टाइम था जब हम छोटे थे तो उस समय एक बीमारी आई थी जिसको हम बोलते थे टेलीविजन, इडियट बॉक्स बोल के कहा जाता था, और हमें सबसे ज़्यादा डांट पड़ती थी कि जब देखो तब टीवी के सामने बैठे रहते हो। वही चीज़ है, उसका एक और नेक्स्ट लेवल आ चुका है अब फ़ोन। फ़ोन में तो और भी दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, फ़ोन के अंदर बहुत सारी चीज़ें और हैं। चाइल्ड लॉक है, आप बच्चों की क्या वो देखते हैं उस पर मॉनिटर कर सकते हैं, ऐसी बहुत सी ऐप्स हैं जिससे आप उन पर नज़र रख सकते हैं। लेकिन क्या है, हमें खुद उस चीज़ के बारे में पता नहीं है और हम बिना जाने उनके हाथ में वो चीज़ दे देते हैं। अब मान लीजिए हम एसिड्स के साथ कुछ काम कर रहे हैं, जो हमारे एसिड्स होते हैं, तो हम बच्चों के हाथ में एसिड नहीं देते ना, हमें पहले पता होता है कि उससे क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, हम इन्हें समझाते हैं इससे ऐसा करोगे तो ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन फ़ोन देने से पहले हम कभी नहीं समझाते। तो अगर हम उस चीज़ पे थोड़ा सा काम करें तो बहुत सकारात्मक इसका इफ़ेक्ट हो सकता है युवाओं पे, बच्चों पे, सभी पे, कि उन्हें बताया जाए कि इसको हम किस ढंग से बहुत अच्छे ढंग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी कितनी हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस हो सकती है। सो असली चीज़ ही मुझे लगता है कि यहाँ गाइडेंस, और यहाँ पे पेरेंट्स को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन को या टेक्नोलॉजी को एक विलन बना के अगर हम जब तक रखेंगे तब तक हम खुद ग्रो नहीं कर पाएंगे, हमें उसको देखने के लिए उस टेक्नोलॉजी को खुद भी समझना पड़ेगा, तब हम बच्चों को करेक्ट गाइड कर पाएंगे।
1: और आजकल के युवाओं में जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, अधीरता है, तो ये सब क्यों बढ़ रहा है?
0: हाँ, ये इसलिए है क्योंकि उनके अंदर एक टाइम था, हमें जो घर वाले हैं वो मार मार के घर बुलाते थे क्योंकि खेलने में हम इतने बिजी रहते थे कि घर आना हम भूल जाते थे।
1: जी बिल्कुल।
0: अब बच्चे जो हैं वो बाहर नहीं निकले, अगर बाहर अपने दोस्तों के पास जाएंगे तो फ़ोन लेके जाएंगे, उसी के ऊपर वो गेम्स चलती हैं उनकी, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो चुकी।
1: लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि बच्चा हमारी नज़रों के सामने ही बैठा रहे।
0: बिल्कुल। लेकिन उसी के उसमें संदर्भ में कहूँ तो आज के ज़माने में इस समय इतनी ज़्यादा, क्योंकि बिज़नेस हर कोई करना चाहता है, हर किसी के पास गवर्नमेंट जॉब है नहीं, तो बिज़नेस के नए नए आइडियाज़ आते हैं, तो लोग बहुत

0: वो खेलने का वक्त मिल सके। अगर बच्चों के अंदर खेलने का, अपने हुनर को तराशने का कुछ मौका मिलता रहे तब तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तब उनके अंदर चिड़चिड़ापन भी ख़त्म होगा। जैसे हम आजकल, जैसे हम स्कूल में भी देखते हैं कई बार कि बच्चों के अंदर एक, ने सुना होगा ADHD, वो एक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हर दूसरे घर में एक बच्चे में आपको, अपने ही घर में अगर दो बच्चे हैं, एक के अंदर आपको ADHD के लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। हम मानते नहीं हैं इस बात को, लेकिन ये एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जैसे बायोलॉजी का एक नियम है ना कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ हमारी चीज़ें बदलती हैं। जैसे पहले हमारा अंगूठा नहीं था, जब हमें क्लाइंबिंग और पकड़ने की ज़रूरत पड़ी तो हमारा अंगूठा बनना शुरू हो गया। इसी तरह से कई साइंटिस्ट ये भी कहने लगे हैं कि जो हमारी सबसे छोटी फिंगर है वो धीरे धीरे जो है टेढ़ी होती जाएगी, आने वाले जनरेशन में हो सकता है वो टेढ़ी बने क्योंकि फ़ोन पकड़ना होता है ना। तो ऐसे ही जो है जो इनकी ग्रोथ जिस ढंग से हो रही है, तो हमें इनकी चिड़चिड़ापन ये सब इसी वजह से आ रहा है क्योंकि उनके अंदर एक्टिविटी नहीं है। तो उनको एक्टिविटी की तरफ ले जाने के लिए उनको कहीं ऐसी चीज़ों में डालना पड़ेगा जहां उनकी एनर्जी निकले
1: जी।
0: जब तक वो एनर्जी उनके अंदर रहेगी वो वैसे ही उबलते रहेंगे। वो एक जैसे होता है ना पॉपकॉर्न के अंदर, जब एकदम से एनर्जी आती है जब उसको गर्म करते हैं, जब कॉर्न वैसे तो बड़ा सुंदर सा कॉर्न होता है लेकिन जब गर्मी का पटक के वो एकदम से पॉपकॉर्न बन जाता है, बस वही हिसाब हमारे बच्चों का है इस समय कि वो एनर्जी इतनी ज़्यादा है और फिर जैसे ही उसको ज़रा सा एक वो मिलता है, प्रिक मिलता है, वो एकदम से गुस्सा हो जाता है।
1: मनीषा जी, ये बताइए कि परिवार की क्या अहमियत होनी चाहिए इस समय युवाओं के लिए?
0: परिवार सबसे बड़ी जो है बच्चों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है
1: जी,
0: उससे बढ़कर कुछ नहीं। क्योंकि आज के ज़माने में आप देखो बच्चे अपने रिश्तेदारों के घर भी सेफ नहीं हैं, हमने बहुत केसेस इस समय देख लिए हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है, परिवार का समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतनी विकृतियां बन रही हैं सबसे, हर कोई इस चीज़ पे जो है इतनी इजीली अवेलेबल मटेरियल देखता है फ़ोन पे और इस पे कि उनकी विकृतियां बढ़ती जा रही हैं। और उससे क्या हो रहा है कि बच्चे इसके सबसे बड़े शिकार भी बन रहे हैं क्योंकि सबसे मासूम होते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं, आधी बातें समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो है इनके अंदर एक डर बैठ जाता है पेरेंट्स के अंदर, तो वो चाहते हैं कि बच्चे हमारे पास ही रहें। लेकिन अब बच्चों अगर साथ ही रह रहे हैं, उनके अंदर एक डायलॉग होना, उनके बीच एक वार्तालाप होना बहुत ज़रूरी है रोज़मर्रा में, कि जहाँ पे वो एक बच्चे अपने मन की बात बता सकें, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी। एक चीज़ बहुत ध्यान देने लायक ये है कि अगर बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ अपनी सारी बातें कह सकता होगा ना, चाहे उसने कोई गलती भी की है, तो उसे कभी कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता।
1: बिल्कुल।
0: और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही ब्लैकमेल से आती हैं, क्योंकि अगर उसकी कोई कमज़ोरी है, मान लो उसने कुछ एग्ज़ाम दिया है और उसमें उसके नंबर कम आ जाते हैं, लेकिन घर में पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, नहीं बता सकता है, उससे बहुत उम्मीदें हैं, तो दूसरे बच्चे उसको उस बात पे भी ब्लैकमेल कर सकते हैं कि घर में बता देंगे तेरे नंबर। ये एक बहुत छोटी सी बात है
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इसी से जो है प्रॉब्लम्स आगे बढ़ती हैं। किसी बच्चे ने किसी को कुछ कह दिया, किसी से कुछ, किसी टीचर ने उसको क्लास में डांट दिया, किसी दोस्त के साथ उसकी बहस हो गई, किसी ने किसी को छेड़ दिया और उसका नाम आ गया, तो क्या है वो घर में नहीं बता पाया क्योंकि उसे जजमेंट होगी, डांट पड़ेगी, और उसी का फ़ायदा जो है जो दूसरे लोग होते हैं वो उठा सकते हैं। इसलिए एक संवाद होना बहुत ज़रूरी है,
1: यानी पारिवारिक जो माहौल है वो बच्चों के अनुरूप होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: कि बच्चा फ्री रहे उसमें, कि जो कुछ भी वे बताना चाहे वो आराम से बता सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल। और मनीषा जी, क्या बदलती जीवन शैली और प्रतियोगिता का दबाव भी आजकल बहुत है युवाओं में?
0: बिल्कुल
1: है ना, आपने... तो ये भी मानसिक रूप से युवाओं को प्रभावित करता है।
0: ये सिर्फ आपको मैं बताऊं कि सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं रह गया अभी, ये जो पीयर प्रेशर है, जो साथ में और लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसका इतना दबाव बढ़ चुका है कि इसके एक फोटो पे इतने लाइक आए हैं,
1: बिल्कुल,
0: ये इंसान यहाँ घूमने चला गया, इसने ये पहन लिया, इसने इतने का फोन ले लिया, इसने इतने की गाड़ी ले ली, इतने के कपड़े पहनता है, ये ब्रांडेड चीज़ें पहनता है, ये सब भी एक पीयर प्रेशर में आते हैं। इनडायरेक्ट पीयर प्रेशर है लेकिन है, और ये इससे इवन पेरेंट्स अछूते नहीं हैं।
1: बिल्कुल,
0: है ना, इससे सभी जो हैं। तो बच्चों के अंदर एक ये चीज़ लानी कि आपको किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, आप अपने आप में संपूर्ण हो, आप जो हो वो यूनिक हो, आप अच्छे हो, और आप जो भी करते हो वो हमें बहुत पसंद है, जब बच्चों के अंदर पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ

0: से और अपने पियर्स की तरफ से भी एक ऐसी चीज़ आ जाए कि नहीं हम मिलके कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। जब तक ये कंपटीशन रहेगा ना तब तक ये दिक्कतें आती रहेंगी। जब तक ये होगा कि ये इधर घुमाए ये उधर घुमाए हम नहीं गए वो घर में लड़ाई उसके पास ये वाला फ़ोन है मेरे पास नहीं है ये मुझे चाहिए या उसके पास, छोटी छोटी चीज़ों से
1: छोटी छोटी
0: शुरू होता है ये सब।
1: चीजें।
0: और ये ही चीज़ वो पेरेंट्स के थ्रू भी देखते हैं, वो सेम चीज़ है, उसके इतने नंबर आ गए तुम्हारे नहीं आए, हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं।
1: कई बार पेरेंट्स खुद कंपैरिजन करते हैं बच्चों का।
0: एग्जैक्टली, कई बार बोलेंगे अच्छा वो खुद टीचर के पास जाएंगे उस बच्चे के कितने नंबर आए
1: हाँ
0: हैं इसके कितने आए हैं वो कंपैरिजन करेंगे, तो बच्चा वहाँ से कंपैरिजन करना सीख जाता है अगर उसके पास ये है तो फिर मेरे पास क्यों
1: मेरे
0: नहीं
1: पास
0: है।
1: क्यों।
0: सो वो सिर्फ वो बात छोटी छोटी चीज़ों मार्क्स से शुरू होती हैं ग्रेड से शुरू होती हैं जाते जाते बहुत बड़ी हो जाती हैं।
1: एक तरह से मानसिक तनाव
0: हाँ वो पीयर
1: बच्चों
0: प्रेशर आ
1: का।
0: जाता है, फिर उसी में आकर तो बच्चे कई बार मादक पदार्थों की तरफ भी मुड़ जाते हैं, वो करता है तो मैं भी कर सकता हूँ। सो ये बहुत चीज़ें जो हैं हम शुरू से जब बच्चों के अंदर जब बीज डालते हैं ना इस चीज़ का, वहीं पे इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि कंपैरिजन ना किया जाए।
1: जी बहुत अच्छी बात कही। और ये बताइए मनीषा जी कि यदि कोई युवा अचानक गुस्सैल या अकेला रहने लगता है, युवा तो वैसे भी चाहते हैं कि हम अकेले रहें हमें कोई डिस्टर्ब
0: बिल्कुल
1: ना करे, या उदास रहने लगता है एकदम, है ना,
0: हाँ
1: तो परिवार या जो उसके साथी हैं मित्र हैं उन्हें क्या करना चाहिए?
0: बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी नीड है।
1: जी
0: और इसमें क्या है, सबसे पहले तो जो अभिभावक हैं या टीचर जिसको भी पता चलता है कि बच्चे में कोई चेंजेस आ रहे हैं, अकेला रहना शुरू कर रहा है या चुप रह रहा है या कमरे से नहीं निकलता है कितनी कितनी देर, सबसे पहले तो वो पेरेंट्स को से संवाद ये करना है, ये नहीं कि तुम ये नहीं करते या वो नहीं करते, लेकिन एक ये संवाद कि जो भी तुम फील कर रहे हो तुम्हारा हक है वो फील करना, तुम्हें जो फील कर रहा है बिल्कुल सही फील कर रहे हो। उनको ये चीज़ समझाना कि उनकी फीलिंग को हम वैलिडेट करते हैं, हम मानते हैं कि तुम्हें ये फील हो सकता है चाहे वो कैसी भी फीलिंग हो। आजकल देखिए इतना उनके ऊपर एक्सपोजर है कि बच्चों की छोटी छोटी एजेस में रिलेशनशिप्स हो रहे हैं,
1: बिल्कुल।
0: है ना, ये एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है आज के ज़माने में, पहले वेस्टर्न में ही होता था लेकिन अब
1: रिलेशनशिप्स को भी स्टैंडर्ड माना जा रहा है आजकल।
0: हाँ ये एक ये हो गया कि अच्छा इसके अभी तक नहीं कोई
1: हाँ
0: रिलेशनशिप तो ये तो
1: उस
0: मतलब किसी वो नहीं हो, अगेन वो कंपैरिजन आ गया, अगेन वो चीज़ आ गई कि भी मैं पीछे ना रह जाऊँ।
1: बिल्कुल।
0: तो लेकिन ऐसे में क्या है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एज होती है और ऐसे में पेरेंट्स को उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, उनकी एक फ्रीडम होनी ज़रूरी है, स्ट्रिक्ट होने से नहीं होगा कि हम ये स्ट्रिक्ट हो गए हमारे बच्चा तो ये नहीं करता, लेकिन बच्चे का मन है, बच्चा ऐसे लोगों के बीच में रहता है, वो देखता है अपने अराउंड क्या हो रहा है, उसके मन में भी कुछ होता होगा, जब तक आप उसको बांध के रखोगे उसके अंदर की कुंठाएं बढ़ती जाएंगी। और यही एक रीज़न है कि बच्चों में इतना डिप्रेशन आ चुका है, युवा इतने डिप्रेशन में रहते हैं। आप देखिए तो आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि शादी नहीं करना चाहते हैं अगर
1: बिल्कुल।
0: आप जाएं तो, क्योंकि एक उनके अंदर एक चीज़ फीलिंग आ चुकी है ये चीज़ कि हमें सुनने वाला कोई नहीं है, हमें समझता कोई नहीं है। ये एक आप समझ लीजिए, इसे मैं तो एक बीमारी ही मानती हूँ और ये सिर्फ निग्लेक्ट की वजह से है कि हम लोग उन चीज़ों को निग्लेक्ट कर जाते हैं। हमें बच्चों के साथ एक संवाद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी बात सुने और जो वो फील कर रहे हैं उसे नकारें नहीं, ये ना कहें कि तुम्हें गलत फील हो रहा है, नहीं हमें उनको ये समझाना, क्योंकि उन्हें तो फील हो ही रहा है, तो हमें उन्हें ये समझाना है कि जो तुम फील कर रहे हो बिल्कुल सही है, अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे लिए शायद ये इतना ठीक नहीं है, हम इस पे और काम कर सकते हैं, तुम हमें कहो हम तुम्हारे साथ हैं, जो भी तुम्हारी फीलिंग है हम तुम्हारे साथ हैं, हम मिलकर इस पे काम कर सकते हैं। जब तक वो अपने आप बोलेगा नहीं खुलेगा नहीं ना बच्चा, फिर वो चाहे, और ये अभी टीनेजर्स और युवा नए नए जो कॉलेज जाते हैं इन बच्चों में ये चीज़ें इस समय ज़्यादा हैं, क्योंकि वही कंपैरिजन वाली चीज़ है, कोई बच्चा किसी कोई मोटरसाइकिल पे आता है कोई गाड़ी में आता है कोई ये पहन रहा है कोई वो दिखा रहा है, तो उन चीज़ों में थोड़ी जो है बच्चों के अंदर अगर पेरेंट्स के साथ वो ओपन होंगे जुड़े हुए होंगे और उनकी हर चीज़ को समझते होंगे, इवन उनकी फाइनेंशियल इश्यूज़ को समझते होंगे, अगर अपने पेरेंट्स के फाइनेंशियल इश्यूज़ को भी समझते होंगे तो वो समझ जाएंगे कि हमारी कहाँ तक लिमिट है और हमें क्या सही है और क्या गलत है।
1: और युवाओं को ये समझना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है।
0: युवाओं का भी समझ में आना ये बहुत ज़रूरी है, उन्हें
1: जी
0: अपने माँ बाप की जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत ज़रूरी है, वो ये इस चीज़ को समझें कि अगर वो उनको सब कुछ लाकर दे रहे हैं तो उसके लिए वो भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इस समय अगर युवाएं युवा

0: जो है समय कुछ चीजों को अपनी अपना हक समझने लगे हैं, ये तो हमारा हक है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी ड्यूटी क्या है ये भी उनको समझना जरूरी है कि हमारे भी फंडामेंटल राइट्स हैं तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, उसी तरह से अगर आपके हक हैं तो आपकी जिम्मेदारियां भी हैं।
1: जी बिल्कुल। और मोबाइल और इंटरनेट के बहुत ज़्यादा उपयोग से युवाओं में एकाग्रता और धैर्य जो है वो कम हो रहा है, तो इसका भी कारण यही मोबाइल इंटरनेट का उपयोग ज़्यादा होना है,
0: इसका हम ये कह सकते हैं कि वही की गाइडेंस ना होना है,
1: सुनना नहीं चाहते आजकल के
0: सुनना नहीं
1: बच्चे।
0: चाहते, क्योंकि देखिए एक टाइम था जब हम काफ़ी काफ़ी टाइम तक किसी प्रोग्राम की वेट करते थे कि हम कुछ दिन भी वेट करके हम उसका इंतज़ार करते,
1: महीना
0: सीरियल
1: भर
0: भी
1: भी
0: आते
1: वेट
0: थे
1: किया है
0: कई
1: ना।
0: बार करते थे। आज क्या है, फिर उसके बाद डायल अप कनेक्शंस आए तो हम वो इंटरनेट को ज्वाइन करने के लिए भी हमारे अंदर पेशेंस थी कि जब जुड़ेगा तब देखेंगे कोई एक आध चीज़ दिख पाएगी, तो पेशेंस थी। अब क्या है, अगर वो बफरिंग एक कुछ सेकंड्स की भी हो जाती है, मैच चला है और थोड़ी सी बफरिंग हो जाए तो वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, पेशेंस नहीं रह गई है, बिकॉज एवरीथिंग इज कमिंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड, उनको ना बहुत तेज तेज मिल रहा है सब
1: सब
0: कुछ,
1: कुछ।
0: तो अब उनको सब कुछ तेज ही चाहिए, तो इसलिए जो है उनके अंदर जो है एक पेशेंस की कमी हो गई है, उनके अंदर वो पेशेंस नहीं रही है, इस वजह से वो जो ज्यादा
1: गुस्से
0: इरिटेट हो
1: वाले।
0: जाते हैं, गुस्सा आ जाता है उनको।
1: इसमें क्या अच्छी संगति और सकारात्मक वातावरण, पॉजिटिव इन्वायरमेंट युवाओं के व्यवहार को बेहतर बना सकते हैं?
0: देखिए ये तो आज की नहीं, तो हम पता नहीं हमारे बुजुर्ग भी कह गए हैं इस चीज को कि जब जिस संगति में हम बैठते हैं हम उसी का रूप ले लेते हैं, तो यस इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि जैसे आप क्या देख रहे हैं, कि इंटरेस्ट किस चीज़ में। अब ये चीज़ जो है बहुत सी कंपनीज ने पकड़ ली है, जितनी भी ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो भी कंपनीज होती हैं कि वो उनके एल्गोरिथम में जाके देख लेते हैं कि ये जो नंबर है ये यहाँ पे इतनी देर के लिए रुका है, उसके बाद चाहे वो कुछ सेकंड्स में ही रुका हो उसके बाद उसको वो ही चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं।
1: बिल्कुल।
0: शॉपिंग के लिए रुका है तो फिर शॉपिंग ही आती रहेगी, अगर वो कोई गाना देख रहा है तो फिर उसके बाद गाने ही आते
1: अगर हम
0: रहेंगे,
1: इसके बारे में बात भी करेंगे फिर हमें वही चीज़ें
0: वही
1: दिखाई
0: चीज़ें
1: देने
0: आएंगी
1: लगती हैं।
0: बिल्कुल। तो ये चीज़, ये सारे एल्गोरिथम में इनका फेड है, इतना स्मार्ट इनका सिस्टम है कि उस चीज़ से वो चल, इसीलिए हम क्या देखते हैं ये युवाओं को अब जानना बहुत ज़रूरी है, कि क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसे ही अफवाहें जो फैलती हैं वो ऐसे ही फैलती हैं, बीच में कोई एक चीज़ देखी उसको देखा नहीं कि वो सही था गलत था क्या था, भेज दिया आगे,
1: भेज
0: मेरे को
1: दिया।
0: सबसे पहले भेजना है, फिर वही है कहीं पे कोई लैंडस्लाइड हुआ आज से 5 साल पहले हुआ गा लेकिन इस साल भेज देंगे, तो वो एक लोगों में भय
1: भाई बिल्कुल
0: चलेगा
1: डर बना रहता है।
0: बिल्कुल, कोई छोटी सी कोई चीज़ कहीं हुई है उसको इतना बड़ा चढ़ा के आगे बता देंगे, क्यों, क्योंकि मुझे पहले बनना है, मुझे दिखाना है कि मुझे ज़्यादा पता है। सो ये चीज़ें जब होती जाती हैं तब उस चीज़ से, सो उनका ये जानना ज़रूरी है कि मतलब हम किस संगति में हैं, और जब साथ बैठेंगे अपने दोस्त यारों के साथ भी बैठेंगे जब, तो वो क्या किस बारे में बात कर रहे हैं क्या बना रहे हैं, तो अगर उनके अंदर ग्रोथ वाली कोई चीज़ होगी तो नेचुरली वो ग्रो करेंगे।
1: बिल्कुल। युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन और सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: मैं यही कहूंगी कि उन सबको अपने स्किल्स डेवलप करने चाहिए,
1: अपने ऊपर काम करना
0: अपने ऊपर
1: चाहिए।
0: काम करना चाहिए, उनको अपने स्किल बनाने बहुत ज़रूरी हैं, और एक जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी वो देख रहे हैं सुन रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है, बिना कोई चीज़ जाने पहचाने उसे आगे ना तो फॉरवर्ड करें ना उसके ऊपर आगे चलें। मेरा तो इनके लिए यही एक चीज़ होगी कि अपने स्किल्स पे अपनी ग्रोथ पे काम किया जाए, अपनी थोड़ा पढ़ाई, अब पढ़ाई बोलना किताबें बोलना आज इनको अच्छा नहीं लगता है लेकिन अगर आप ऑनलाइन भी कुछ देख रहे हैं
1: अच्छी
0: तो
1: चीज़ें
0: अच्छी
1: देखें।
0: चीज़ें देखें, रिप्यूटेड चीज़ें देखें और उसके ऊपर चलने की कोशिश करें।
1: आज के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है?
0: यही कि आप धीरे चलो, डीपली चलो, चीज़ों को समझो, एक अच्छे नागरिक, बाद आने वाले दिनों के लिए नागरिक तो आप बनेंगे ही, मतलब आने वाला समाज आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आज भी आप एक बहुत जिम्मेदार नागरिक बनो, और आप लोगों की जो एनर्जी है जो सोच है जो आप लोग इन चीज़ों से सीखते हैं शायद हमसे कहीं ज़्यादा हो, तो उस चीज़ का इस्तेमाल करो, और गलत संगति में पड़ने से पहले, कुछ भी किसी कंपैरिजन में आकर कोई चीज़ ना करने
1: ना
0: से
1: करें।
0: बेहतर है अपने घर वालों के बारे में भी सोच के, और

0: एक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ो।
1: जी बिल्कुल मनीषा गौतम जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी बातें हमारे युवाओं के साथ हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए हैं। आइए सुने आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। शाम 6:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सांझ। 6:30 पर कार्यक्रम मौजंग रैंदियां पेश किया जाएगा। शाम 7:00 के समाचारों में पहले 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी। आकाशवाणी शिमला से 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात 8:00 सुनिएगा विधानसभा समीक्षा। 8:30 पर देशभक्ति गीत प्रसारित किए जाएंगे। समाचार संध्या 8:45 पर रात 9:00 News@9 आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले की जाएंगी। रात 9:15 पर आज आप सुनेंगे एक ही संगीतकार, और आज के संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। रात 10:00 से लेकर 11:00 तक आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे। श्रोता, ये तो थी आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आइए अब एक नज़र डालते हैं कल प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों पर। कल सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी। दोपहर 12:30 पर सुनेगा कार्यक्रम सुनो सखी। कल शाम 6:06 पर युवा मंच कार्यक्रम पेश किया जाएगा।

के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:58 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और रिले के लिए आपको करना होगा कुछ ही पलों का इंतजार।

0: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही 3 दिन के अवकाश के बाद आज शिमला में फिर शुरू हुई। सदन की बैठक शुरू होते ही पूर्व विधायक राम रतन शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में शोक प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम रतन शर्मा नादौनता विधानसभा क्षेत्र से जुड़े रहे और बाद में इस विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलकर बड़सर हुआ। उनका जन्म 28 जनवरी 1937 को हमीरपुर जिला के चकमोह में हुआ था। वे लंबे समय से राजनीति और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे तथा सामाजिक जीवन में लगातार सक्रिय रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राम रतन शर्मा भाजपा और उससे पहले RSS के समर्पित कार्यकर्ता रहे। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन में राम रतन शर्मा की सक्रिय भूमिका रही। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि राम रतन शर्मा 2 बार भाजपा के विधायक रहे और वे कर्मठ व जुझारू व्यक्ति थे। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि राम रतन शर्मा अपने इरादों के पक्के थे और जो ठान लेते थे उसे समर्पित भाव से पूरा करते थे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी खुद को शोकोद्गार में शामिल करते हुए दिवंगत राम रतन शर्मा के योगदान को याद किया। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में JBT और TGT के कुल 5209 पद खाली हैं। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज विधायक पवन कुमार काजल, हंसराज जीतराम कटवाल और दलीप ठाकुर के सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि JBT के सबसे अधिक 4019 पद रिक्त हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 31 जुलाई 2026 तक TGT के कुल 1190 पद रिक्त थे और इनमें से 764 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरे जा रहे TGT के 13 पदों के अलावा किसी अन्य पद के लिए बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया जारी नहीं है। विधायक

0: सतपाल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि प्रदेश में एड्स नियंत्रण संस्थाओं में काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इन संस्थाओं में 414 कर्मचारी कार्यरत हैं जो संबंधित गैर सरकारी संस्थाओं के अधीन साल दर साल अनुबंध समझौते के अनुसार सेवाएं दे रहे हैं। विधायक हरदीप सिंह बावा के सवाल के लिखित जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में आशा वर्करों को भविष्य में नियमित करने के लिए सरकार कोई नीति नहीं बनाएगी। उन्होंने बताया कि आशा वर्कर स्वैच्छिक कार्यकर्ता हैं और आशा कार्यक्रम एनएचएम के दिशा निर्देशों के तहत चलाया जा रहा है। शांडिल ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था के अनुसार आशा वर्करों के लिए स्थायी नीति का कोई प्रावधान नहीं है। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस द्वारा चुनाव के समय जनता को दी गई 10 गारंटियां अभी भी धरातल पर उतरने का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देने, युवाओं को हर साल 1 लाख रोजगार, 300 यूनिट मुफ्त बिजली सहित बड़े बड़े वायदे कर सत्ता हासिल की है, लेकिन अब यही सरकार के लिए गले की फांस बन गई हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि 4 साल के कार्यकाल के बाद भी सुक्खू सरकार इन गारंटियों को पूरा करने की बजाय बहाने बना रही है, जिससे स्पष्ट है कि ये वायदे केवल चुनाव जीतने का राजनीतिक हथकंडा थे। हिमकेयर योजना को लेकर राजेंद्र राणा ने कहा कि जिस योजना ने प्रदेश के आम परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का भरोसा दिया था, उसकी व्यवस्था को भी सरकार ने कमजोर कर दिया है। उन्होंने 10 गारंटियों पर तत्काल श्वेत पत्र जारी कर हर गारंटी की स्थिति सार्वजनिक करने की सरकार से मांग की है। सिरमौर जिला किसान सभा की एक बैठक आज नाहन में आयोजित हुई। किसान सभा के राज्य सचिव राकेश सिंघा बैठक में विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों को समय पर दूध का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राकेश सिंघा ने मिल्क प्लांट में दूध की जाँच के लिए आधुनिक उपकरण स्थापित करने की सरकार से मांग की है।
1: हिमाचल प्रदेश की सरकार ने वो दाम तो उसका 61 रुपया जरूर बढ़ाया है, लेकिन वो हर महीने मिल नहीं पा रहा है किसान को पैसा। इस विषय को लेकर भी पिछले दिनों में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब से वार्ता हुई है। उन्होंने वैसे तो वायदा किया है कि वो हर महीने देंगे, लेकिन वो 61 रुपये भी उनको तुरंत करना चाहिए। और ये भी हम मांग कर रहे हैं कि उसके फैट और SNF को टेस्ट करने के लिए ऑटोमेटिक मिल्क यूनिट्स हैं, वो भी नीचे सोसाइटी को मिल जाने चाहिए।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: पापा लाइए 3000।
3: क्यों भाई?
2: मेरी पॉकेट मनी।
3: अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।
2: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
3: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1000 ले जाओ,
2: अपना मोबाइल लाओ।
3: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुरमई सांझ। सुरमई सांझ सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज के प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा।

जी बिल्कुल, शाम हुई और बदरिया उमड़ घुमड़ कर अपने रंग दिखा रही है। सुरमई सांझ कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। आखिर क्यों फिल्म का गाना भी आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना और राजेश रोशन का संगीत इस गीत में था। अब लीजिए सुनिए तेरे मेरे सपने, इस फिल्म का ये नगमा किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल सुरों में ये गाया हुआ है।

शाम के 6:14:33 प्रोग्राम चल रहा है सुरमई सांझ। मेला फिल्म का नगमा अब आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सांझ FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम मौजंग राइंदियां।

0: कार्यक्रम औजां ग्राइंदियां सुनने वाले सारे किसान बागवान भाई भैणा जो सारे श्रोतियां जो ग्राम सेवक दी राम राम कने किसान साथियों अज मेरे कने टियाले पर न मस्टरैणी और मस्टरैणी जी राम राम
1: राम राम ग्राम सेवक जी कने सारे सुनने वाले किसान कने बागवान साथी हैं जो साड़ी संजा दी बेला दी राम राम
0: जी जी कने जी। देखा लंघ गया देखा मैं थोड़े वास्ते ना अज बिना ले हुंदे बनाई के बढ़िया
1: साहबी
0: है ना देखा पुराने टाइम में साढ़े कितने छाल छाल बिन्ने घरे बनाते है ना
1: बिल्कुल जी बिल्कुल दिखा ना
0: रंगी बनाई के है ना
1: बिल्कुल कने दिखा ना पुराने टाइम में क्या करते है ना सिर्फ बिन्ने नहीं तुहानू पता है ग्राम सेवक जी जड़ियां हाड़ियां बोरियां होंदियां ही ना जियां चीनियां ही बोरियां होई गईयां तालू तिना दा बड़ा बारी प्रयोग करते हे जालू जी मैं भी छोटी हुंदी ही ना ता मैं भी जालू पढ़दी ही कने स्कूले जांदी ही कने कने खेती दे काम करते हे ता मेरी दादी क्या गलांदी ही भई दिख एना इना तू बोरियां दा ना एक बड़ी छैड़ कढ़ाई करना सीख जिहड़ी हाड़ियां उन्ना नहीं होंदियां ही जियां हां स्वैटर वगैरह बनांदे हे जिन्हें जिहड़े तागे होंदे हे ना तत्तीना परना हां मोटा सूआ लैना ना कने तिसने कढ़ाई करनी कने बड़े छैड़ जिहड़े ने फुल पाने कने तिना बोरियां दा भी जिहड़ा है ना बिच समान भरी के बड़ा छैड़ बीना बनाना कने बीने भी कई तरीके दे बनदे
0: महिला भैणा जिहड़ियां असां करदियां ही ना जल्लू खेती बाड़ी ते कम्मे दे थोड़े बेल मिलदी ही तां है ना
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: कने इह तां देखा जी पुरानियां चीजां जिहड़ियां असां हुण आस्ते आस्ते

0: लुफ्त होआ कर दी हैं, लेकिन
1: बिल्कुल दिखाना तो तालु उस टाइम में क्या होया कि मिंजो तो मेरी है दादी है सह कम सिखाई था गां, मैं भी सोचा भी गां बच्चों जो भी तो पता होना चाहिए था, तो मैं भी सिखाया, पर गां इं है ना कि सारिया जो जेड़ा है ना अपने च कोई हुनर होए कोई कला होए ना सह अपने तक ही नहीं रखना चाहिए, भी होरना जो भी जरूर जी सह सिखाना चाहिए, चाहे सह खेती ने जुड़ी हो है चाहे सह कुछ बनाने की है ना। तो दिखा कई बार ऐसी चीज़ा के पत्तर बड़े कमे आते है ना, तो कोई फुलां दियां हाँ चीज़ा होंगे जिन्होंने हाँ इत्र बनाई सकते या कैसी होर चीज़ा च हूँ दिखा ना दे दे कम अगर हाँ करे तो तिसने भी साड़ी दिखा ये जड़े बीने न जिंह तुह बनाए चलो तुह इं तो लिंदा मिंजो पर दिखा ये भी बिकते बड़े छैल बने होंगे कने ये भी बिकते है ना, ये साढ़े ताई तो दिखा ये नॉर्मल चीज़ा होंगे ना क्योंकि हाँ इन्हें जो रोज़ दिखना करना, पर कई जड़े लोग बाहर के होंगे जिन्हें इन्हें बार तिना जो बड़े छैल लगते सह के करते ना जोड़ा अपना एक कोई होल हों या ड्राइंग रूम हों ना तो इस सजाई सजाई के दसते दे दी चीज़ा।
0: ठीक बोला दे तुह ठीक बोला दे कने दिखा सजाने की तुह गल करा है ग्राएं तो कई तरह दसिया चीज़ा होंगे जिन्हें जे सजाई के रखे होंगे
1: बिल्कुल
0: जो कैंठू होंगे है ना
1: जी
0: कैंठू भी दिखा बढ़िया बढ़िया रंग करी के सजाई के रखे होंगे
1: बिल्कुल सर टोकरियां जी होंगे या छज जो
0: चलापुआ कई तरह की चीजा बनाई है ना
1: बिल्कुल छज्जा च भी कई तरह के रंग किए होंगे कहने फिर से दीवारा पर टूंगे होंगे पर तिना जो ये चीज़ पता होए ना होए भाई ये छज जड़ा है चोणा छंडने के कमे होंगे कि कैस की हो ये जरूर पता होंगे भाई सजाने के कमे जड़ियाँ ने चीज़ा
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक गला दे तां दिखा अज जड़ी अहां एक खास गल करनी है सह है कृषि क्षेत्र च आधुनिक तकनीका दा भी जड़ा है सह अहां उपयोग करा कर दे कहने ये कौन कौन तकनीका हो सकदियां ने या फिर साढ़े किसान भाई बंधु कौन कौन तकनीका जो अपना कर दे जिसते आधुनिकीकरण जड़ा है सह कृषि च आवा करता है।
1: बिल्कुल जी
0: तां पहले तो गल यही है कि दिखा जालू आधुनिक तकनीकों की अहां गल करते तो साढ़े जड़े पुराने तौर तरीके हैं खेतीबाड़ी के जिसी अहां पारंपरिक खेतीबाड़ी बोलते हैं ना तो तिस जो होर ज़्यादा उपयोगी बनाने ताएं होर ज़्यादा तिसियो सक्षम बनाने ताएं कने तिसियो एक लाभप्रद बनाने ताएं जड़ा ऐसा इन आधुनिक तकनीकों का प्रयोग जड़ा ऐसा किया जाता है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल तिना तकनीकों जो तहां छड़ना नहीं है पर तिस च बोलते ना कि और ज़्यादा हाँ चीज़ा जोड़नी है कने ऐसिया चीज़ा जोड़नी है जिसने साड़ी खेतीबाड़ी खरी होए साड़ी फसल खरी होए साड़ी पैदावार खरी होए क्योंकि अहाँ सब कुछ क्या करा दे कि अहाँ जड़ा ऐसा खरा खान बिना रसायन ने जुड़िया चीज़ा खान क्योंकि सर रसायन जड़े न सह साड़ी सेहता ताई भी खराब है दिखा साड़ी जमीन जड़ी है सह साड़ी सबना ते बड़ी पूंजी है जे साड़ी मिट्टी दी सेहत ठीक रहेंगी तो साड़ी फसल भी जड़ी है खरी होनी कने नवीं तकनीकों का प्रयोग जियां कि होई आ ड्रिप सिंचाई होई है या फिर स्प्रिंकलर होई है या मलचिंग जड़ी है तिस जो करी के हाँ करी सकते जियां मिट्टी दी जांच करनी है कने फिरी मिट्टी दी सेहता दा पता करीने हाँ खाद पानी है कने घट पानी च भी जड़ी है ज़्यादा पैदावार हाँ कियां ले सकदे कने प्राकृतिक कने जैविक खेती करने कने जड़ा हाँ नवीं किस्मां दे बीजां ते कियां हाँ अपनी बेहतर पौध जड़ी है सह तैयार करी सकदे कृषि मशीनरी दा कियां हाँ सही प्रयोग करी सकदे छोटे किसानां ताई भी जड़ा है इस दा प्रयोग हाँ कियां करी सकदे सब्जियां फलां कने फुलां च भी जड़ा है सह कियां हाँ फसलों च नवीं तकनीकों का प्रयोग करी सकते फसल कटाई के बाद जड़ा साड़ा नुकसान घटी आए कने भंडारण कियां करिए हाँ तिस दी पैकेजिंग कियां करिए तिस खर्चे जो कियां कटाइए सह सब अहां जड़ा नवीं तकनीकों ने अपनाई के करी सकते कने पुराने ढंगे ने ही खेती जड़ी है सानू नहीं करना चाहिए ड्रिप सिंचाई करने सानू क्या फायदा मिलता कि बूंद बूंद जड़ी है सह पौधे जो साड़े मिलती कने साड़ी जड़ी है पानिये दी भी जड़ी है सह वेस्टेज यानी कि जड़ा है सह नहीं होंगी कने जरूरत दे मुताबिक पानी जड़ा साड़े पौधे जो मिलता है।
0: जी बिल्कुल तुम ठीक गला दे कने दिखा मिस्ट्रैणी जी अगर अहाँ तकनीक की गल करिए तो हूँ जड़ा ऐसा है एक नया जमाना जिसी अहाँ गलाई सकते भी आई है कने दिखा हूँ ड्रोन तकनीक भी सिंचाई बिच चली पई है
1: बिल्कुल जी।
0: है ना ड्रोन तकनीक भी जड़ा ऐसा है अहाँ अपनी फसल की निगरानी भी करा करते इस कने फिर कीटनाशकों का छिड़काव भी अहाँ ड्रोन के जड़ा माध्यम कने करा करते हैं है ना कने खेत का जड़ा साड़ा सर्वेक्षण है कौन फसल जड़ी ऐसा खरी चली हो कौन पौध खरी चली हो कौन जड़ी खराब हुआ कर दी ऐसा सारी निगरानी।

0: जी, तो मिश्राणी जी दिखा अहाँ अपनी गलबात जो थोड़ा देर विराम देना है,
1: जी
0: कई की समय हो करता है, एक संदेश दा कने एक लोकगीत भी अहाँ सुनना है,
1: जी
0: तो पहले संदेश कने फिर ही सुन देने एक प्यारा दिया लोकगीत।
1: जी
2: छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: ऐसी पीली पड़ गई है।
1: इसे अनीमिया है। इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ। और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
0: जी डॉक्टर साहब।
1: सिर्फ इसे नहीं, सभी को अनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
2: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: जी मिस्टर रानी जी, दिखा प्यारा दी माता दी भेंट जड़ी ऐसे हाँ सुनी कने बड़ा बांका लगा, क्योंकि इस वक्त जड़ा ऐसे भजन कीर्तन दा भी वेला है ना।
0: बिल्कुल,
3: धूप टिक्के दा वेला है।
0: बिल्कुल,
3: ता माता दी भेंट सुनी के जड़ा ऐसे मन जड़ा ऐसे बिल्कुल प्रसन्न हो गया।
0: बिल्कुल जी।
3: कने असा गल करा दे है कृषि क्षेत्र च आधुनिक तकनीकां दे उपयोग दे बारे च, है ना।
0: जिस च भी यहां गल करा दे है ड्रोन दे बारे च।
3: जी
0: तां दिखा ड्रोन एक बड़ी अच्छी चीज़ होई हो कि मन्ना साड़ी कुथी खेते च जड़ा है फसला जो कोई नुकसान पुज्जा दा तां सै भी जड़ा है सै अहां अपने ड्रोन दे माध्यम ते दिखी सकदे। कुथी बड़ा पानी खड़ोत्या है या फिर कोई साड़ा डंगर बच्छू गुआची है या कुनी साड़े खेते च जड़ी है सै बाड़बंदी तोड़ीती हो या इन्हां सबना चीज़ां पर अहां निगरानी जड़ी है सै ड्रोन ने ही रखी सकदे। कने दिखा उसने अहां जड़ा है सै छिड़काव भी जो दिखी के करी सकदे कि कुथू जड़ी है पानी की जरूरत है। कने इन्हां सारियां चीज़ां दा ध्यान रखी के अहां जड़ी है खरी फसल ले सकदे।
3: जी बिल्कुल, तो हाँ ठीक गला दे। कने इसते अलावा दिखा जी ड्रोन तकनीक ते बाद अहां गल कर दे प्रिसीजन फार्मिंग दी, है ना। इस च क्या होंदा कि GPS कने सेंसर दी मदद ते खेत दे हर कोने च जड़ा ऐसा पानी उपलब्ध करवाया जांदा है और उर्वरक दी स्टीक मात्रा दा उपयोग भी इस उपकरण दे माध्यम कने अहां करी सकदे हां।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, दिखा जालू अहां खादा दी ठीक मात्रा पांगे ता तिसदा उपयोग ठीक होगा ता साड़ी फसल जड़ी है सै ठीक होनी। कने अगली गल कीती जाए ता अहां करी सकदे इस कने स्मार्ट सिंचाई, यानी कि दिखा साड़ा जड़ा पौधा है उस च अहां खरे तरीके ने सिंचाई करगे, कोई फालतू पानी नहीं पांगे। कने ड्रिप कने स्प्रिंकलर दी सहायता कने सिंचाई करगे। कने सोलर पंप कने ऑटो मिशन दा उपयोग करी ने अहां जो जड़ी है सै पानी दी बचत भी हो जानी। दिखा कई जगह ऐसी होंगी कि जित्थू पानी नहीं हुंदा, पानी पुजाया भी होए तां सै इतनी मुश्किलां ने पुजाया हुंदा कि उत्थू खेतीबाड़ी करना जड़ा बिना पानी दे असंभव ही हुंदा। तां दे दियां चीज़ां च अगर अहां इन्हां चीज़ां जो अपनांगे ता खरी फसल लई के खरा मुनाफा जड़ा सै कमाई सकदे। कने मिट्टी कने मौसम दे सेंसर यानी कि मिट्टी दी नमी, तापमान कने वास्तविक समय दे मौसम दी जानकारी प्राप्त करी ने अहां सही कने साफ फैसले जड़े न सै समय पर ले सकदे। कने तिन्हां ने अहां जड़ा सै फायदा चुकी सकदे। कने दिखा सब ते वड्डी गल तां इह है कि साड़ी मिट्टी जड़ी है इस च पोषक तत्व हुंदे, कुछ एक पोषक तत्वों की जड़ी है सै मिट्टी च कमी हुई है तो साड़ी फसल जड़ी है सै खरी नहीं हुंदी। जियां क्या हुंदा कि अहां हाड़ा माणुआ दा जड़ा शरीर है तिन्हां च भी कई बारी कैल्शियम, आयरन या खूने की कमी हो जाती। तो क्या हुंदा कि जलू अहां कमजोरी हां जो लगती तो अहां डॉक्टर वाल जाते जांच कराने ताई तो तिसने पता लगता जी जांच च कि खूने की कमी है कि कैल्शियम की आयरन की है तो तिसते संबंधित जड़ी है सै डॉक्टर सांजो दवाइया देंदे। तीं साड़ी खेती की फसल च जड़ी है सै मिट्टी च कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती, जिन्हां की कमी हो जाए तिन्हां जो पाई के अहां जड़ी है सै अपनी मिट्टी खरी करी सकते कने खरी फसल जड़ी है सै ले सकते।
3: जी बिल्कुल, तो ठीक गला दे। कने एक बारी फ्री अहां अपनी गलबात जो थोड़ा जिहा विराम देना है, कने एक संदेश कने एक प्यारा जिहा लोकगीत सुन।
4: जान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।

डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना।

0: जान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: जी दिखा संजय बेला बड़ा ही प्यारा जेड़ा सै लोक गीत हाँ सुनिया, कने दिखा ग्राम सेवक जी अजकल तो हाल ही है ना, कोई पता नहीं लगा था कि कलू जड़ी है सै बरखा पई आनी, कलू नेरी चुली पौनी, कने कलू जड़ी है सै धुप लगी पौनी।
2: बिल्कुल, कने दिखा कल्ले दा मौसम दिखा संजय दे बेले साढ़े धर्मशाला टियाले च जड़ा है सै बड़ी बड़ी नेरी चुली थोड़ी देर ता है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल,
2: कने इं लगा था भी हो सकता कि पेड़ी ना पई आए।
1: बिल्कुल जी,
2: पर दिखा जी अजकल जड़ा है सै पेड़ा ते मिंजो एक चीज और याद आई कि दिखा बरसात दा मौसम है ना
1: जी,
2: कने ज्यादा ते ज्यादा जड़ा है सै पेड़ पौधे लगाना चाहिए सन जो है ना
1: जी। बड़ी छेड़ गल तुहा कीती दिखा, ज्यादा ते ज्यादा पेड़ पौधे लगांगे ता साडा वातावरण जड़ा है सै उतना ही ज्यादा जड़ा है सै शुद्ध रहना, साफ रहना, कने दिखा पेड़ पौद्या दा जड़ा है सै साढ़े जीवन च बड़ा ज्यादा योगदान है। दिखा सानू हर साह च जड़ी है सै ऑक्सीजन चाहिए, कने हाँ अपनी जड़ी है कार्बन डाइऑक्साइड जड़ी छड़दे सै भी ये पेड़ पौधे लैंदे, कने बदले सानू जड़ी है खरी ऑक्सीजन जड़ी है सै भी यही दिंदे। दिखा जल छोटे छोटे होंदे है ना क्लासा च तो तालू इन्हां चीज़ां जो हाँ पढ़ते हे, कने जालू जी ओले ओले हाँ बड़े होंदे जांदे ते इन्हां चीज़ां जो हाँ सीखते जांदे, कने फिर पता लगता जांदा भाई कियां पेड़ पौधे ऑक्सीजन दिंदे, कने कियां जिहड़ी है सै कार्बन डाइऑक्साइड लैंदे। दिखा ना पिछे गर्मी है ही है ना ग्राम सेवक जी,
2: जी
1: तां जालू हवा चलदी ना

0: भाई मिश्रैणी जी दिखा कितना बांका कने कितना मीठा लोकगीत है ना।
1: बिल्कुल जी।
0: पर दिखा गड़ी दी सुनिया सांझो ज्यादा गलबात करने दा जेड़ा ऐसा मौका नहीं दिया कर दिया ना, है ना। उठने दा इशारा हुआ करदा ता असा अपने किसान बागवान भाई भैणा जो दस दिए। कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रहा अंकित धीमान और कार्यक्रम प्रस्तुति डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह।
1: उन सांझो दोनों जो दिया अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद, हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजें गरेंदियां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7 बजने को हैं, अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। पहले हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में ये वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GDP वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की दृढ़ता को दर्शाती है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय लोगों की मेहनत को जाता है। उन्होंने कहा कि NDA सरकार के सुधारों और अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रबंधन के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश ने 10 साल के लक्ष्य के मुकाबले 4 साल में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को तैयार करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता

0: है। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने जल क्षेत्र के ऊपर ईरान की ओर से किए गए ड्रोन हमले की निंदा की है। यूएई की वायु रक्षा प्रणालियों ने ड्रोन को रोक दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के हमले तनाव बढ़ाने वाले हैं और यूएई की सुरक्षा, स्थिरता तथा संप्रभुता के लिए खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन है। यूएई ने कहा है कि वो अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा और इन हमलों का जवाब देने का अधिकार रखता है। उसने इन हमलों को तुरंत रोकने की अपील की। यूएई ने मिसाइलों से जॉर्डन को निशाना बनाए जाने की भी निंदा की। AFC Under-20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 4th भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi today held bilateral talks with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek. Prime Minister Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian during the meeting discussed various aspects of bilateral ties. They reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Prime Minister Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Prime Minister Modi and his Armenian counterpart Pashinyan during the talks discussed ways to further strengthen bilateral cooperation across various areas including defence, economic, pharma, science and technology, culture and education. Tomorrow, on the second and final day of his visit to Kyrgyzstan, Prime Minister Modi will address the 26th summit of the Shanghai Cooperation Organization in Bishkek. India's real GDP has observed a growth rate of 7.8% in the first quarter of the financial year 2026-27 against the growth of 6.9% against the same period of the previous financial year. The Indian economy has sustained growth momentum despite global headwinds. The nominal GDP has also registered 10.3% growth during the first quarter of the current financial year. The Ministry of Statistics and Programme Implementation today released the quarterly estimates of the GDP for the first quarter from April to June of the current financial year. Prime Minister Narendra Modi has termed India's exemplary GDP growth of 7.8% in the first quarter of the financial year 2026-27 a Herculean feat. In a social media post, the Prime Minister said that the achievement reflects the collective strength and resilience of the people of the country despite oil price shocks, supply chain disruptions and global uncertainties. Prime Minister News just in, Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin held a bilateral meeting on the sidelines of the SCO summit in Bishkek a short while ago. The two leaders discussed bilateral ties and regional issues. They also reviewed ways to expand trade, economic ties and supply chain resilience between India and Russia. The government today notified the Semicon 2.0 scheme with an outlay of 1.27 lakh crore rupees to boost the chip manufacturing ecosystem in the country. With this, India could account for nearly 10% of the global semiconductor industry market in the coming years and is expected to play a much bigger role in the global semiconductor value chain. Union Minister for Electronics and Information Technology Aswini Vaishnav said this while addressing the media in New Delhi today. Meanwhile, the India Electronics and Semiconductor Association has hailed the official notification of Semicon 2.0. In a statement, the association said that a comprehensive approach

0: कार्यक्रम खेती बाड़ी सुना करते सारे ही किसान कने बागवान साथियों जो मास्टरनी दी दो हाथ जोड़ी करी राम राम कने किसान साथियों दिखा मेरे सोगी टियाले पर है अज ग्राम सेवक जी ग्राम सेवक जी तुहानजो भी मेरी राम राम
1: जी राम राम मास्टरैनी जी एक बारी फ्री टियाले दे माध्यम कने जड़ा ऐसा असां दे सारे किसान बागवान भाई भैन जो सारे सुनने वाले श्रोत्या जो राम राम कने अहां एक बारी फ्री हाजिर हो चुके हैं ढेर सारी जानकारियां मिठे मिठे प्यारे प्यारे लोक गीत ले करी
0: बिल्कुल जी
1: ता दिखा जी गलबात असां जड़ी ऐसा किसान भाइयां यो करदे रहंदे कि भाई तुसां जो जड़ा ऐसा अपनी खेती बाड़ी ते कियां कियां मुनाफा मिली सकदा क्या क्या काम कार जड़े ऐसा अजकल तुहां अपनी खेती बाड़ी च करी सकदे या फिर अहां अपने बाड़ुआं सगाड़ुआं च जड़ा ऐसा क्या कुछ लगा कर दे क्या कुछ लगाया कियां तिन्हां दा ध्यान रखना है ना
0: जी। दिखा टियाले दे माध्यम ते साड़ी यही कोशिश रहिंदी कि अहां खरियां खरियां छैल जानकारियां देन कि जिस ते साड़े किसान साथियों दी फसल खरी होए खेत खूब लहलहान कने साड़े देशे दा साड़े ग्राएं दा नां जिहड़ा ऐसा खरा होए तां अज अहां गल करनी है एक ऐसी योजना दी जिहड़ी देश भरे दे किसानां ताई चलाई गई हो है जिहदा सीधा फायदा किसान दे बैंक खाते च जिहड़ा ऐसा पुजदा है। इस योजना दा नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। पर ए योजना है क्या किसाना ताई क्या इसका फायदा है कुना किसाना जो इदा फायदा जड़ा ऐसा मिलता है कने पैसा किया जड़ा ऐसा उना जो मिलता है पैसा बैंका च किया आंदा है कने जे अगर पैसा नहीं आंदा है तो हांजो क्या करना चाहिए कने ई के वाई सी जड़ी है क्या चीज़ है ता जे ग्राएं दा हर किसान चाहे सै पढ़िया लिखिया है या फिर नहीं है इसा गल्ला जो खरे ने समझी सकता है
1: जी। मस्टरैनी जी अगर हाँ कुल मलाई के देखा जाए गल करन ता साड़ी

किसान साथियों दिखा संजय दी बेला। हाँ जड़ा है सै बड़ा प्यारा है, माता दा भजन सुनिया कने दिखा हाँ जड़ी है ना उन गल्ला बाता च गलबात करनी है सम्मान निधि योजना दे बारे च। तो दिखा ये बड़ी ही फायदेमंद जड़ी है सै योजना है ना, कने दिखा जालू इसका पैसा मिलता है ना किसान ना जो तो सै बड़ा कम्मे होंदा

0: खेतीये दे कम्मे होंदा। दिखा जालू जी 2000 रुपया मिलना है, कने तिस जो अहां खेतीये दे कम्मा चलाना है, कने बी लियाने हैं, खाद लियानी है, चाहे कुछ ही काम करना है, तो सानू ना एक अलग ही खुशी मिलती कि सानू जिहड़ा है पैसा मिलिया, कने अहां जिहड़ा है इस जो इसी कम्मे चलाना है, कने अपनी खेतीये जो जिहड़ा है से अच्छा बनाना है।
1: जी बिल्कुल। कन्नै दिक्खा जी गल्लबात अहां करनी है, लेकिन केईं बारी क्या होंदा कि साढ़े उन्नत किसान भाई बंधुआं ने भी जिहड़ी ऐसा साढ़ी केईं बारी टियाले दे सदस्य हो या फिर साढ़े अधिकारीगण जिहड़े ऐसा गल्लबात करदे ने ना,
0: जी
1: तां कुछ इक तिन्हां दियां गल्लां तिन्हां दे अनुभव जिहड़े से अहां अपने किसान भाइयों तक पहुँचाने की कोशिश करदे ने, तां
0: जी
1: इसी कड़ी च इक जिहड़ा ऐसा गल्लबात अहां अपने किसान भाइयों तक पहुँचाते हैं।
0: जी
2: किसान साथियों, कार्यक्रम किसान वाणिज्य जी कि तुहां जानते हैं कि हर दिन एक नित नई जानकारी ले करी अहां जड़ा सा भेंट वार्ता दी इस कड़ी विच आंदे हैं। अज उसी कड़ी विच मिंजो कन्ने एक उन्नत महिला किसान जड़े से जुड़ा करदे हैं, करदे हैं इन्हां कन्ने गलबात। राम राम जी।
3: राम राम जी।
2: जी अपना नाम दसा।
3: मेरा नाम शक्ति देवी है।
2: हाँ जी।
3: गांव पुआड़ा है मेरा।
2: हाँ जी। कने तहसील कने ब्लॉक?
3: तहसील शाहपुर कने ब्लॉक रहत।
2: ता शक्ति देवी जी तो हाँ खेती बाड़ी कर दे?
3: हाँ जी कर दे खेती बाड़ी।
2: अच्छा।
3: ज्यादा तो नहीं पर थोड़ी दे ही है।
2: अच्छा जी, तो हाँ थोड़ी कर दे। ता कितनी की जमीन है तो हाँ वाल?
3: ऐ कोई 2.5 कनाली।
2: अच्छा।
3: 2.5-3 कनाली है।
2: सारी जी 2-2.5 कनाल जमीन है सारी वाही हुंदी तो हाँ?
3: हाँ जी सारी वाही हुंदी।
2: क्या क्या बन दे इस च?
3: अजकल तो धान लगांदे कने फिरी सर्दियां च कणक लगांदे।
2: अच्छा।
3: थोड़े दसन प्याज प्यूज सब कुछ।
2: हाँ यानी कि अपना थोड़ा सुवाड़ू वगैरह भी।
3: सुगाड़ू वगैरह भी लगा लेंदे।
2: ता शक्ति देवी जी जी या बी वगैरह कौन बांध दे दो? हाँ बी को तू दे दे दो। हाँ
3: बी ता हाँ कदी ब्लॉक ते भी ले लेंदे।
2: अच्छा।
3: कदी जी हम बारे ते भी ले लेंदे जी या ठीक लगी आने।
2: अच्छा।
3: हिसाब ने ले लेंदे।
2: यानी कि हाइब्रिड बीज बांध दे या ना?
3: हाँ जी है।
2: तो इबे जड़े धान लगायो तो हाँ जो पता कि कौन धान लगायो ना?
3: हाँ जी इबे 834 धान लगाया।
2: अच्छा इबे पहली बारी लगाया?
3: नहीं पहले भी लगाया हाँ पर ठीक रहता है तान।
2: अच्छा अच्छा यानी कि विश्वास हो ही होना कि 834 जड़ा था।
3: हाँ जी ठीक है।
2: जी तो हाँ दस्या कितनी की तानी भाई तो हाँ 2-2.5 कनाल
3: कोई? हाँ कोई 3 किलो बी भाई पहले हाँ वो पनीर दिती उसके बाद फिर है लगाया फिर यहाँ।
2: कदी फसल है इबे?
3: अली तक तो ठीक ही है पहले बरखा नहीं है ता फिर बरखा हुई है थोड़ी बहुत ही है ता फिर।
2: मैं देखिया कि तुहां दे इलाके विच तो जड़ा सा पानी दी तो कोई कमी नहीं है ना? पानी खरा होंदा
3: कुल्ला? पानी तो ठीक होंदा पर पिछे दी थी थोड़ी कुल्ला टूटी है थी ता थोड़ी थी मुश्किल।
2: ए कुदू ते होंदी कुल्ले?
3: ए ता पर नरेड़ा साइड ते होंदी।
2: अच्छा अच्छा ए गज खट ते लगदी? खोली है
3: ना?
2: खोली खड है।
3: खोली।
2: अच्छा तो इसके बाद गल कर दे जी खाद वगैरह दी।
3: खाद जी हां जी बनाना दस दे तू ग्रुपां च।
2: अच्छा
3: हां ते दई थोड़ा बहुत छिड़काव कर दे।
2: कौन खाद है यानी कि देसी?
3: हां जी देसी।
2: अच्छा किन्ना के अरसा होई या देसी तरीके कन्ने खेती कर दे?
3: तो कुछ थोड़ा टाइम होया है ली जी। अच्छा। थोड़ा टाइम हो ग्रुपां ने जुड़े ता
2: पहला कर दे है रासायनिक विधि वाली खेती है ना?
3: हां जी।
2: तो हां जो कदे लगा कि जी पहला तो हां रासायनिक विधि कन्ने खेती कर दे है तो कन्ने हुन तो हां जेड़ा सा देसी प्राकृतिक विधि कन्ने करा करते हैं ता ठीक है प्राकृतिक विधि कन्ने खेती भी
3: ठीक है जी हां करदे रहन जी हां ता थोड़ी ज्यादा होंदी जी स्टार्टिंग ते अगर पहले दूई करा दे फिर अगर करन थोड़ी काट निकल दी।
2: हां जी
3: ते फिर इस ते अगर करदे रहन ता फिर अपनी पैदावार थोड़ी ज्यादा देनी देना जी हां पहली बारी करन ता थोड़ी दिन काट देनी अपनी पैदावार।
2: बिल्कुल दिखा भाई अहां भी जेड़ा सा यही संदेश जेड़ा सा अपने किसान बागवान साथी दंदे ने कि अगर जेड़ा थोड़ा बहुत अनाज अहां आप जेड़ा अपने घर ताई अगर हां गल करिए ना
3: जी
2: तो हां जो तेदा एक विश्वास होना चाहिए कि नहीं इस च कुछ भी जहर नहीं है बाकी ते लगभग दिखा सब कुछ जेड़ा सा बाजारे ते होदा ना किसान या जेड़ा सा एक तसी इतना एक तसल्ली होंदी कि नहीं ए अहां अनाज उगाया कने इस विच अहां कोई जेड़ा सा जहर जेड़ा कोई यूरिया होई या कोई दवाई छिड़काव जेड़ा सा नहीं कीती है तो अहां दे सुनने वाले शक्ति देवी जी तुहां ए दसा कि जेड़े तुहां दसिया ना कि हां घटक बनाई के छिड़काव करदे हन क्या क्या बनांदे तुहां तिस च?
3: तिस च अहां बनांदे गंजी अमृत फिर मास्तर फिर अग्नि अस्त्र ब्रह्मास्त्र हां जी दे छिड़काव बनांदे।
2: क्या क्या पौंदा है छिड़काव बनाना ओदा समान क्या क्या लगदा सी?
3: समान जी गोए दे पहले है गोबर थोड़े थोड़े है गोबर बनांदे ते बाद गूंतर कठेरदे ते दा छिड़काव बनांदे फिर एक जेड़ा अग्नि ओ नीम दा बनांदे नीम दे पत्ते फिर हरी मिर्च गुड़ फिर बेसन ते दा बनांदे।
2: हां जी हां देखा कने सारीयां चीजां हां जो घर मिल जांदियां आसानी कन्नै ते घर तुहां गाय वगैरह पाली ता?
3: नहीं जी गा नहीं पानी
2: तगी गोमूत्र को ते लेना अगर घटक बनाना था
3: जी हां बखियाने ते ले लंदे ता दे।
2: अच्छा मिल जांदा ना?
3: हां जी
2: तुहां दे माध्यम

0: जरा सा एक संदेश जरा सा अहां दे सुनने वाले जा करदा कि ऐसा
1: जी
0: नहीं है, अगर गा नहीं पाली हो है,
1: हाँ जी
0: अगर अहां बाल अहां दे मने विच ऐसी प्रेरणा कने लगन है ना कि अहां देसी विधि कने खेती करनी है, तां
1: हाँ
0: अहां
1: जी
0: गोमूत्र कने गोबर ग्राएं च भी कुछ ते ले सकदे ने।
1: हाँ जी ले सकते जी दे हाँ जी
0: क्या लगा ऐसा कि जड़ा सा बिल्कुल रसायन मुक्त खेती की जाएगा ना, भी कोई यूरिया वगैरह कुछ नहीं पाना, पंजो कुतु ते प्रेरणा मिली।
1: से अहां ब्लॉक ने कन्ने थे ओंदे हे थु नीतिका मैडम जी
0: हाँ
1: कन्ने
0: जी
1: अहां दे भी थु दे जुड़े होंदे ना कन्ने
0: अच्छा
1: ते फिर ते नहीं ग्रुप बनाए ते नहीं हां जी छिड़काव वगैरह बनाना तुसे
0: अच्छा अच्छा
1: हां जी ए वृंदा देवी हैं फिर तुनी चंद जी हैं इत्थे
0: अच्छा
1: दे
0: अच्छा
1: ये दोनों आए भी ना ग्रुप ग्राफ बनाए
0: अच्छा
1: हैं
0: ग्रुप बने तो हाँ दे
1: हां
0: ना।
1: जी हां जी बने
0: अच्छा, खेती दी है ना।
1: हां जी
0: कल देखा ग्रुप विच तां देखा अगर ग्रुप बने हों तां बड़ा वधिया रहिंदा, खेती करना भी
1: हां जी
0: ग्राएं विच देखा पता भी लगता रहिंदा कि कोई ब्लॉक च कोई समान आया है ना,
1: हां जी हां
0: ग्रुपां च
1: जी
0: जेहड़ा सा पहला समान
1: समान
0: मिलता,
1: मिलता हां
0: जियां
1: जी
0: कोई बीज है बंडी
1: बीज
0: की होना।
1: हां जी हां जी
0: खेती कियां करदे, ट्रैक्टर वगैरह ना करदे
1: हां जी ट्रैक्टर ने
0: अपना कि
1: नहीं
0: किराए
1: नहीं
0: पर
1: किराए बुआंदे ना
0: करे, जियां खेती दा कम आपू ही कर लैंदे या मजदूर वगैरह भी लगांदे।
1: नहीं आपू ही कर लेंदे कन्ने जी हाँ जरूरत पवे तो मजदूर भी लगा लेंदे
0: अच्छा, कितने सदस्य ने घर है जेडे मिली की खेती तक काम कर दे।
1: हाँ तो यहाँ चार ना भरा पर वे सब अपना अपना अलग अलग ही करते
0: जी तुहां दस्या कि तुहां दा जेड़ा सा एक खेती दा जेड़ा सा ग्रुप जेड़ा सा बनया, एक समूह बनया,
1: हाँ जी
0: समूह च और भी जियां कुछ काम करदे, जियां कुछ किसान भैणा मिलेगी, जियां कोई अपना समान वगैरह, जियां कोई अचार मुरब्बा चटनी सेवियां बड़ियां यो दे भी कुछ कदी बनाया।
1: नहीं मिली के तनी बनाए पर अलग अलग अपने अपने घर बना
0: अच्छा,
1: दे हैं
0: अपने घरे दाइयां बना लैंदे हैं
1: हाँ
0: ना।
1: जी
0: कर देखा ये तो ग्राएं विच जेड़े सा एक परंपरा ही है कि
1: हाँ
0: जल
1: जी
0: अहां दिखियो ना कि वो फलाणिया का देखा अज सीरा पाई लिया
1: सीरा पाया
0: या सेवियां पाई लिया, तो भी सह कोई जी कोई मशीन होंगी है तो सह भी जेड़े सा बोलते हो कि फलाने के घर शायद मशीन मिलनी है। कहना देखा अज जी छुट्टियां पे या निके आने घर है या कोई परौने आए तो भी मशीन ने बाट देने भी जेड़ा सा कोई बंदा जेड़ा सा मिली जा।
1: जी हाँ जी
0: अच्छा जी तुहां दस्या कि तुहां जेड़ा सा डंगर बच्छू नहीं पाले घर है ना,
1: हाँ जी
0: ता दूध वगैरह क्या मुल लेंदे?
1: दूध मुल्ला ही हाँ जी
0: अच्छा, ये तो ग्राएं ची मिली जाता होना।
1: ग्राइंड ची ग्राइंड ची
0: अच्छा,
1: ले लेंदे
0: किन्नी किलो बांध लवाइयो?
1: हाँ तो किलो लगा ही है
0: अच्छा, हर दिन थी है ना,
1: हाँ जी
0: आपू लेना जानते कि आपू दे जानते?
1: नहीं आपू ले होना जानते
0: प्योर करना अगर बिल्कुल जिसी यहाँ बोलते ना बढ़िया कोई उत्पाद लेना था ग्राएं बीच ही मिल सकता है
1: ग्राइंड ची
0: ना।
1: हाँ जी
0: शक्ति देवी जी अहां दी जड़ी बेरोजगारी युवा पीढ़ी है ना,
1: हाँ जी
0: सह दिखा नौकरियां पिछे तां तू घुमा कर दे कने कुछ हद तक जड़ी सह नौकरी नहीं भी मिला कर दी,
1: हाँ जी
0: उस युवा पीढ़ी जी तुहां क्या सुनेहा देना चाहेंगे कि सह भी कियां जड़ा सह अपने खेती दे कम में जो करेगी जड़ा सह अपना रोजगार बनाई सकन?
1: दिखा जी काम इतो अजकल बच्चे ऐसे ने कि ता गलियां गुड़ियां च घूमते पर खेतां च कमाना नहीं चाहते
0: हाँ जी हाँ जी
1: पर
0: हाँ
1: ये है कि भाई तेने भी थोड़ा माँ बाबा करना सहयोग देना चाहिए थोड़ी मेहनत करना चाहिए
0: हाँ जी, कहना देखा अगर अपने माँ प्यो का
1: हाँ
0: साथ
1: जी
0: देना है
1: दिन
0: ना,
1: थोड़े चार पैसे भी आई जाते थोड़ा तेना अनाज बेची करी थोड़ा घर
0: थोड़ी
1: का गुजारा
0: अपनी
1: भी हो जाता
0: अपनी आजीविका भी चली
1: हाँ
0: पौंदी,
1: जी
0: कहना घरे आने थोड़ा जेड़ा सा सहारा भी हो जाता कि नहीं अहां दे बच्चे भी अगर थोड़ा साथ दिया करते हैं
1: दिया
0: तो
1: कर दे
0: अहां
1: तां
0: भी जेड़ा
1: भी
0: सा जमीन ने जो खाली नहीं छड़ी
1: हाँ
0: है
1: जी
0: ना।
1: हाँ जी
0: कहना
1: भाई
0: भाई शक्ति देवी जी तुहां अपने खेतीबाड़ी दे अनुभव अहां कन्ने साझा किते,
1: हाँ
0: अपना
1: जी
0: कीमती समय तुहां अहां जो दिता तुहां दा बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी मिश्रैणी जी, तो दिखा कुछ पुरानियां गल्लां कुछ पुराने किसानां कन्नै जिहड़ी असें गल्लबात कीती हुंदी ही ना, तां साडी कोशिश ये रहिंदी कि अहां जिहड़ा असें अपने किसानां दे अनुभव भी जिहड़ा असें अपने किसान भाईवान भाई भैणां कन्नै सांझा करिए,
1: जी
2: तां इसी कड़ी च जानकारी थी।
1: जी ग्राम सेवक जी कने बड़ी छैल गल हुंदी दिखा तुहां मिंजो याद है कि पिछले साल भी जलू सीरा पाया है ना तो तुहां मिंजो है सीरा दिता हा कने सह सीरा जेड़ा है सह बड़ा खादा कने अजे भी पे है कने हुण
2: जी
1: मिंजो पता है कि इस साल भी तुहां जेड़ा है सह सीरा देना है
2: जी देखा जी, सीरा तो हो ही है लगभग, हूँ तो खाने वाला मौसम आई है, हूँ तो बनाने
1: जी
2: वाला चली ही है ना,
1: जी जी जी
2: पर यह है कि जलू भी कोई नई चीज़ बनती है ना
1: जी
2: या फिर ही साढ़े किसान भाइयों वाल कोई नई चीज़ होती है तो असर जरूर एक ही दूए ने बंडी के जड़ा ऐसा है तो इसका जड़ा ऐसा बंडते ने कने दिखा साढ़े तो घीए कद्दू है ना काकड़ियाँ या जो भी ऐसी कोई फल सब्जी भी साढ़े अगर घरे च या ग्राएं च लगती है तो
1: जी
2: सब भी अहाँ इक्की दुए ने बंडी के ही खाते हैं ना।
1: बिल्कुल जी दिखा जी है तो
2: तो
1: हमें जो की ये लेंदे हुए तो हाँ
2: जी
1: साढ़े कद्दू थे भिंडियां ही है तो है मैं तो अंजो दी
2: जी
1: कन
2: जी
1: जालू जी मैं बड़ियां पाई ही है ना पेठे दियां तो
2: जी
1: सह
2: जी
1: भी मैं तो अंजो दी ही भुले तो नहीं गई हो
2: नहीं जी नहीं बिल्कुल, देखा जी
1: बिल्कुल
2: बोलते स्याणे बोलते भी खरा खाद्या कने

0: पूरा गला या कदी नहीं भुलदा,
1: बिल्कुल
0: है
1: जी,
0: ना। तां ये तां गल रही मिस्टर रैणी जी अपने ग्राएं च सहयोग दी, कने जिहड़ी सीरे वाली गल है ना, तां सीरा भी जिहड़ा ऐसा इस बारी तुहानूं जरूर पुजी आना तुहाडे घरे,
1: जी
0: कने जिन्हां दे घरे सीरा है ना, अहां अपने टियाले दे माध्यम कने गलाना चाहंगे भी इस सीरे ओ जिहड़ा ऐसा इक बारी जरूर कुहाड़ी के दिख लिया, क्योंकि अजकल बरसाती दा मौसम है, कने
1: कीड़ू
0: कीड़ियां भी
1: पे ही
0: पई
1: आंदे,
0: जांदे है ना।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। फिर दिखा ना इतनी महंगी कने इतनी खरी चीज दिखा, इसदे गुण ही बड़े भारी है ना। कने दूजी
0: जी
1: गल है कि भाई मेहनत तो बड़ी भारी लगती है ना,
0: बिल्कुल
1: गलाने तो होंदा है भाई कणका दा बने है ना, पर तीस जो दिखा पहले सेड़ा, फिर इसे तीयो पिया, फिर तीयो नचोड़ा, फिर तिसते वास का, तो कितनी बड़ी मेहनत है ना। तो तिसते
0: बिल्कुल
1: पिछे मेहनत बड़ी बड़ी होंगी। तो जे तुहा जिन्ना जिन्ना रखे हो है ना, से अपने ढकणुआ खोली के ना तीस जो धुप जरूर लुआई लैन।
0: जी बिल्कुल। कने इस कने ही जड़ा ऐसा एक प्यारा दिया लोकगीत होर करा दा सुन, है ना, सुन दे
1: जी
0: मन
1: जी
0: करा
1: जी
0: दा, ता सुन दे ने प्यारा दिया लोकगीत।
1: जी

0: कन्ने कार्यक्रम खेतीबाड़ी का समय इतनी संपन्न हुंदा है। जाने से पहले दसी दईए तकनीकी सहयोग रहा अंकित धीमान दा, कन्ने प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह
1: जी, कन्ने हुण असां दुनियो कार्यक्रम संपन्न करने दी दिया अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:42 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में यानी 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार और रात 8 बजे विधानसभा समीक्षा रिले की जाएगी। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जेबीटी व टीजीटी के 5000 से अधिक पद खाली, 764 पद भरने की प्रक्रिया जारी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा, एड्स नियंत्रण संस्थाओं के कर्मचारियों को नियमित करने का कोई विचार नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा, संस्कृत महाविद्यालयों में कर्मकांड पुरोहित कोर्स की कक्षाएं आरंभ करेगी सरकार। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पकड़ी आर्थिक रफ्तार, पहली तिमाही में 7.8% की शानदार जीडीपी वृद्धि। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जेबीटी और टीजीटी के कुल 5209 पद खाली हैं। शिमला में 3 दिन के अवकाश के बाद शुरू हुए प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक पवन कुमार काजल, हंसराज जीतराम कटवाल और दलीप ठाकुर के सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जेबीटी के सबसे अधिक 4019 पद रिक्त हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 31 जुलाई 2026 तक टीजीटी के कुल 1190 पद रिक्त थे और इनमें से 764 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरे जा रहे टीजीटी के 13 पदों के अलावा किसी अन्य पद के लिए बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया जारी नहीं है। विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि प्रदेश में एड्स नियंत्रण संस्थाओं में काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इन संस्थाओं में 414 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो संबंधित गैर सरकारी संस्थाओं के अधीन साल दर साल अनुबंध समझौते के अनुसार सेवाएं दे रहे हैं। विधायक हरदीप सिंह बावा के सवाल के लिखित जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में आशा वर्करों को भविष्य में नियमित करने के लिए सरकार कोई नीति नहीं बनाएगी। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर स्वैच्छिक कार्यकर्ता हैं और आशा कार्यक्रम एनएचएम के दिशा निर्देशों के तहत चलाया जा रहा है। शांडिल ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था के अनुसार आशा वर्करों के लिए स्थायी नीति का कोई प्रावधान नहीं है। इससे पहले आज सदन की बैठक शुरू होते ही पूर्व विधायक राम रतन शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में शोक प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम रतन शर्मा नादौनता विधानसभा क्षेत्र से जुड़े रहे और बाद में इस विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलकर बड़सर हुआ। उनका जन्म 28 जनवरी 1937 को हमीरपुर जिला के चकमोह में हुआ था। वे लंबे समय से राजनीति और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे तथा सामाजिक जीवन में लगातार सक्रिय रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राम रतन शर्मा भाजपा और उससे पहले आरएसएस के समर्पित कार्यकर्ता रहे। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन में राम रतन शर्मा की सक्रिय भूमिका रही। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि राम रतन शर्मा 2 बार भाजपा के विधायक रहे और वे कर्मठ व जुझारू व्यक्ति थे। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि राम रतन शर्मा अपने इरादों के पक्के थे और जो ठान लेते थे उसे समर्पित भाव से पूरा करते थे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी खुद को शोकोद्गार में शामिल करते हुए दिवंगत राम रतन शर्मा के योगदान को याद किया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि अधिकारियों को जबरदस्ती नैनो यूरिया प्लस ना देने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा में नियम 62 के अंतर्गत विधायक भवानी सिंह पठानिया द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से ऐसे कोई निर्देश नहीं है कि यूरिया के साथ नैनो यूरिया को भी किसानों को जबरदस्ती खरीदने पर विवश किया जाए। उन्होंने कहा कि इफको की ओर से भी ऐसा लेटर दिया गया है जिसमें किसानों को जबरदस्ती नैनो यूरिया नहीं देने की बात कही गई है और इस संबंध में हिमफेड को भी निर्देश जारी किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
1: डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर रोग एक खतरनाक बीमारी है। इसमें बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, ज्यादा भूख लगना इत्यादि इसके लक्षण हैं। इसका शुरुआत में ही पता लगाना बहुत जरूरी है।
2: प्रदेश के हर स्वास्थ्य उपकेंद्रों में शुगर की मुफ्त जांच का प्रावधान है, अतः आप तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी शुगर की जांच करवाएं और अपनी आंखों और गुर्दे की गंभीर बीमारी होने से बचाएं।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे संस्कृत महाविद्यालयों में कर्मकांड पुरोहित कोर्स की कक्षाएं आरंभ करने पर विचार किया जाएगा। आज शिमला में प्रदेश ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इसके तहत डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स आरंभ किए जाएंगे। इस बीच मुख्यमंत्री ने मोबाइल रिसोर्स सेंटर थेरेपी ऑन व्हील्स की पहल के तहत 3 मोबाइल रिसोर्स सेंटर वाहनों को शिमला से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पहल से विशेष रूप से ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये पहल प्रारंभिक चरण में 3 जिलों मंडी, शिमला व कांगड़ा में संचालित की जाएगी। इधर शिमला स्थित एकीकृत कमांड व नियंत्रण केंद्र और राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र का भी मुख्यमंत्री ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र में स्थापित त्वरित घटना रिपोर्टिंग प्रणाली के विभिन्न निगरानी कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न डैमों से पानी छोड़ने और बरसात के दौरान नुकसान की स्थिति का स्टीक डेटा तैयार करने के निर्देश दिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक रफ्तार पकड़ी है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की 7.8% जीडीपी ग्रोथ हुई है। जयराम ठाकुर ने इस वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि अप्रैल से जून की तिमाही में देश की वास्तविक जीडीपी 81,36,000 करोड़ रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में ये 75,46,000 करोड़ थी। उन्होंने कहा कि नॉमिनल जीडीपी में भी 10.3% वृद्धि दर्ज हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये आंकड़े भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का प्रमाण है। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस द्वारा चुनाव के समय जनता को दी गई 10 गारंटियां अभी भी धरातल पर उतरने का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये देने, युवाओं को हर साल 1,00,000 रोजगार, 300 यूनिट मुफ्त बिजली सहित बड़े बड़े वायदे कर सत्ता हासिल की है, लेकिन अब यही गारंटियां सरकार के लिए गले की फांस बन गई हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि 4 साल के कार्यकाल के बाद भी सुक्खू सरकार इन गारंटियों को पूरा करने की बजाय बहाने बना रही है, जिससे स्पष्ट है कि ये वायदे केवल चुनाव जीतने का राजनीतिक हथकंडा थे। हिमकेयर योजना को लेकर राजेंद्र राणा ने कहा कि जिस योजना ने प्रदेश के आम परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का भरोसा दिया था, उसकी व्यवस्था को भी सरकार ने कमजोर कर दिया है। उन्होंने 10 गारंटियों पर तत्काल श्वेत पत्र जारी कर हर गारंटी की स्थिति सार्वजनिक करने की सरकार से मांग की है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: के जन्म दिवस को 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान के रूप में मनाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि 17 सितंबर को हर घर में सेवा नाम और 2047 विकसित भारत के संकल्प का दीप जलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान भाजयुमो द्वारा प्रदेश भर में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे और स्कूलों में पेंटिंग, भाषण व निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। ने बताया कि अभियान के तहत महिलाओं द्वारा विकसित भारत 2047 और मोदी जी के जीवन पर सेवा संकल्प रंगोली बनाई जाएगी।
1: 17 तारीख से लेकर 17 अक्टूबर तक एक महीने का सेवा संकल्प अभियान ये चलाए, विकसित भारत का संकल्प की एक यात्रा और सेवा ज्योति यात्रा, सेवा में मेरा योगदान, देश का प्रत्येक व्यक्ति और हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी सेवा में मेरा योगदान, ये अभियान चलाएगी जिसमें अनेक अनेक प्रकार से सेवा के अभियान हो सकते हैं। वो स्वच्छता सेवा के हो सकते हैं, रक्तदान शिविर के हो सकते हैं, चिकित्सा सेवा के हो सकते हैं।
0: प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी रहा। बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश में 76 सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि 5 बिजली ट्रांसफार्मर और 72 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग द्वारा कल 2 सितंबर को शिमला, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिलों और 3 सितंबर को कांगड़ा व सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जेबीटी व डीजीटी के 5000 से अधिक पद खाली, 764 पद भरने की प्रक्रिया जारी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा, एड्स नियंत्रण संस्थाओं के कर्मचारियों को नियमित करने का कोई विचार नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा, संस्कृत महाविद्यालयों में कर्मकांड पुरोहित कोर्स की कक्षाएं आरंभ करेगी सरकार। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पकड़ी आर्थिक रफ्तार, पहली तिमाही में 7.8% की शानदार जीडीपी वृद्धि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
3: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
2: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
3: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी प्रसारित किया जा रहा था। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। लीजिए पेश है रोजगार समाचार। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर जिला सोलन से प्राप्त सूचना के अनुसार, धर्मपुर के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 4 पद तथा सहायिकाओं के 11 पदों को भरने हेतु इच्छुक पात्र महिला उम्मीदवारों से सादे कागज पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों को भरने हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। इन पदों हेतु साक्षात्कार 17 सितंबर 2026 को बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर के कार्यालय में प्रातः 10:30 पर आयोजित किए जाएंगे। इन पदों हेतु पात्रता की शर्तें इस प्रकार से हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने हेतु केवल महिला उम्मीदवार ही योग्य है। प्रार्थी की आयु 11 सितंबर 2026 को 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के लाभान्वित पोषक क्षेत्र की सामान्य निवासी होनी चाहिए तथा संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के सर्वेक्षण रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि होनी चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और इससे संबंधित प्रमाण पत्र तहसीलदार, नायब तहसीलदार अथवा कार्यकारी दंडाधिकारी स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। प्रार्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से 10+2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को नियमानुसार अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। उम्मीदवार का हिमाचल का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इसके साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। लीजिए अब पेश है विधानसभा समीक्षा, जिसके लेखक हैं प्रकाश भारद्वाज, राज्य ब्यूरो प्रमुख दैनिक जागरण, वाचक स्वर राजकुमारी चंदेल के। विधानसभा समीक्षा मीडियम वेव के साथ साथ हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुनी जा सकती है।
1: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान कुल्लू अस्पताल में मातृ मृत्यु का बहुचर्चित मामला, दूरदराज के क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी और विकास कार्यों में अनियमितताओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे प्रमुखता से गूंजे। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पहले पूर्व विधायक राम रतन शर्मा के देहांत पर शोक प्रस्ताव के तहत सदस्यों ने भाग लिया। उसके बाद प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में प्रसव के बाद 23 वर्षीय महिला की दुखद मौत का मामला उठाया। उन्होंने सरकार से जांच की वर्तमान स्थिति और लापरवाही बरतने वालों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा। इसके जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन को आश्वस्त किया कि इस मामले में दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि महिला की मृत्यु अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई है। मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 2 स्तरों पर जांच की जा रही है, एक अस्पताल प्रबंधन द्वारा और दूसरी स्वतंत्र चिकित्सा विशेषज्ञ बोर्ड द्वारा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद बिना किसी दबाव या पक्षपात के कड़ी कार्रवाई की जाएगी और निर्दोष को सजा नहीं मिलेगी। उन्होंने विपक्ष से इस संवेदनशील मामले को राजनीतिक रंग न देने की भी अपील की। इससे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने सदन को जानकारी दी कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर एक डॉक्टर और 2 स्वास्थ्यकर्मियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही अस्पताल में विरोध प्रदर्शन कर चिकित्सा सेवाओं को बाधित करने वाले लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में एक अन्य प्रश्न को लेकर दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त की। विधायक नीरज नैयर के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार चंबा के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 311 पद भरने की तैयारी कर रही है। उन्होंने निराशा जताते हुए कहा कि सरकार चिकित्सकों को 5 लाख रुपए तक का वेतन देने को तैयार है, इसके बावजूद डॉक्टर दूरदराज के क्षेत्रों जैसे चंबा में जाने के बजाय दुबई जाना पसंद करते हैं। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए सरकार एक नई नीति लाने पर विचार कर रही है। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मुख्यमंत्री ने विधायक संजय अवस्थी के प्रश्न के उत्तर में कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर वितरण के लिए औषधालयों का युक्तिकरण किया जाएगा। यदि किसी पंचायत में एलोपैथी और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी एक ही स्थान पर चल रही है तो उनमें से एक को ऐसे क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। इसका उद्देश्य संस्थानों को बंद करना नहीं बल्कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है। सदन में आज प्रश्नकाल के दौरान पानी के टैंक निर्माण में दोहरे

दावों और खराब गुणवत्ता का मुद्दा भी गरमाया। कसौली से कांग्रेस विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने कोटबेजा और देवठी पंचायत का उदाहरण देते हुए बताया कि एक ही पानी के टैंक के निर्माण का दावा जल शक्ति विभाग और जायका दोनों एजेंसियां कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं चौपाल से भाजपा विधायक बलवीर वर्मा ने पंचायतों में बन रहे पानी के टैंकों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि निर्माण के एक सप्ताह के भीतर ही टैंकों में रिसाव शुरू हो गया है। उन्होंने विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन जियो टैगिंग और फोटो अपलोड करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने विधायक से ऐसे मामलों की लिखित जानकारी मांगी और आश्वासन दिया कि जहां भी गलत काम हुआ है सरकार उसकी निष्पक्ष जांच करवाएगी। प्रश्नकाल के बाद विधानसभा के शून्यकाल में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़ी जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाया। सदन में ग्रामीण क्षेत्रों की चरमराई परिवहन व्यवस्था से लेकर बिजली, राजस्व रिकॉर्ड की खामियों और कानून व्यवस्था के महत्वपूर्ण विषय विस्तार से गूंजे। शून्यकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों ने कोरोना काल से बंद पड़े बस रूटों का मुद्दा उठाया। भोरंज से कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार और चौपाल से भाजपा विधायक बलवीर सिंह वर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की कमी से छात्रों, कर्मचारियों और बुजुर्गों को हो रही परेशानी का जिक्र करते हुए तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की। इस पर उप मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इंटरनेट मीडिया पर खराब बसों के वायरल वीडियो पर तंज कसते हुए कहा कि यदि किसी बस का टायर पंक्चर हो जाए या छोटी तकनीकी खराबी आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कबाड़ हो गई है। उन्होंने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए 300 नई इलेक्ट्रिक बसों का मास्टर प्लान सदन में रखा। परिवहन मंत्री ने बताया कि भोरंज सहित मुख्य रूटों पर ई बसें चलाई जाएंगी और वहां से मुक्त होने वाली मजबूत डीजल बसों को ग्रामीण रूटों पर भेजा जाएगा ताकि गांवों में परिवहन व्यवस्था फिर से सुचारू हो सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी भोरंज की जनता को बसों का इंतजार जल्द खत्म करने का आश्वासन दिया। बिलासपुर से भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने अपने क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज से मचे हाहाकार का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन को बताया कि बिजली की आंख मिचौली के कारण पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं, जिससे पानी की सप्लाई बाधित है और बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि RDSS और विश्व बैंक की परियोजनाओं के टेंडर समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। बड़सर के भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने अनुसूचित जाति के फलेड़ा समुदाय की गंभीर समस्या को सदन के सामने रखा। उन्होंने बताया कि पुराने राजस्व रिकॉर्ड में समुदाय का नाम सही दर्ज है, लेकिन कंप्यूटर रिकॉर्ड में स्पेलिंग की गलती के कारण इसे पपेड़ा दर्ज कर दिया गया है। इस तकनीकी खामी के कारण लोगों को नए जाति प्रमाण पत्र बनवाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि लोगों की सुविधा के लिए कंप्यूटर रिकॉर्ड को पुराने राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार तुरंत दुरुस्त किया जाए। बलह से भाजपा विधायक इंद्र सिंह गांधी ने ऊपरी बलह क्षेत्र में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और चिट्टे के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने अपराधों पर लगाम कसने के लिए क्षेत्र में तुरंत पुलिस थाना खोलने की मांग की। विधायक ने सदन को याद दिलाया कि पूर्व जयराम सरकार ने यहां के लिए थाना स्वीकृत किया था, जिसे मौजूदा सरकार ने निरस्त कर दिया था। वर्तमान हालातों को देखते हुए उन्होंने इसे फिर से खोलने की आवश्यकता पर जोर दिया। विधायकों द्वारा उठाए गए बिजली, राजस्व रिकॉर्ड और कानून व्यवस्था के इन महत्वपूर्ण विषयों की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने संबंधित विभागों से तुरंत जवाब तलब किया है। उन्होंने निर्देश दिए कि जनता की इन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान किया जाए। जैसे ही आज 3 दिन के अवकाश के बाद विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो पिछले दिनों पूर्व विधायक राम रत्न शर्मा के निधन पर शोक प्रस्ताव लाया गया और पूर्व विधायक राम रत्न शर्मा जी के निधन पर गहरा दुख जताया गया। सदन में मौजूद सभी नेताओं ने उनके परिवार को ढांढस बंधाया और उनकी याद में 2 मिनट का मौन रखा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें याद करते हुए कहा कि राम रत्न शर्मा जी नादौनता इलाके से 2 बार बीजेपी के विधायक रहे। उन्होंने बताया कि शर्मा जी का रहन सहन एकदम सादा और संतों जैसा था। वे हमेशा समाज की भलाई के लिए काम करते थे। हमेशा भगवा रंग के कपड़े पहनना ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी उनके निधन पर

0: दुख जताया। उन्होंने बताया कि शर्मा जी राजनीति में आने से पहले आरएसएस के कार्यकर्ता थे। राम मंदिर आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने शर्मा को एक बहुत ही सीधा साधा इंसान बताया। उन्होंने कहा कि शर्मा जी हमेशा युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह देते थे। जब वे विधायक थे तब लोगों का हाल चाल जानने के लिए अपने इलाके में पैदल ही घूमा करते थे। मंत्री राजेश धर्माणी और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी शोक जताते हुए कहा कि राम रतन शर्मा जी 1982 और 1990 में विधायक बने थे। उनका जाना हमारे समाज और राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसी के साथ प्रदेश विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे विधानसभा समीक्षा, जिसके लेखक थे प्रकाश भारद्वाज, राज्य ब्यूरो प्रमुख दैनिक जागरण, और वाचक स्वर राजकुमारी चंदेल के। विधानसभा समीक्षा मीडियम वेव के साथ साथ हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी प्रसारित की जा रही थी। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर 8:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस।

दिलजीत दोसांझ का गाया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अब लीजिए सुनिए पंकज उदास को। जानीमन एल्बम से ये गाना हमने लिया है।

मिलोजुले गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। रजत नागपाल के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनिए नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत सिंह को इस पंजाबी गीत में।

0: करें।
1: रात्रि के 8:22 और 33 सेकेंड प्रोग्राम सुन रहे हैं सबरस। विविध संगीत का ये कार्यक्रम है जिसमें हम अलग अलग तरह के रंग आप तक पहुंचाते हैं। अब लीजिए सुनिए सोनू निगम को।

आप सुन रहे थे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

0: बेजान छतों में क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: देश प्यार के गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था।

फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां, पूजा।

करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम। हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं रखा। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।

हमलावर इस दीवार से टकराकर वापस जाते रहे, जो 1962 में हुआ, वही सन 65 में और वही 71 में। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है, यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते, तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या, रात 9:00 न्यूज़ एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले की जाएंगी।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित 4,247 से अधिक लोग लापता। और फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
2: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने

0: किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादुल जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी है, जिसमें ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख आधार है। श्री पुरी ने कतर में भारत के नवनियुक्त राजदूत डॉ. के शिखर रेड्डी से मुलाकात की। श्री पुरी ने पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच 20 वर्ष के एलएनजी समझौते का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष के इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
2: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशन हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियो पोलिटिकल सिचुएशन में उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय देश के लोगों और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा किए गए सुधार और अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीडीपी वृद्धि की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
3: गृहमंत्री ने कहा कि इस समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि समझौते से बिहार और झारखंड के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि इससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
4: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में

0: 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
1: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच पीएम प्रगति के अंतर्गत टीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय को मजबूत करने पर बल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2013 में दिए गए निर्देश के बावजूद एसिड की आसानी से उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच आज केंद्र सरकार से पूछा है कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है वे 30 सितम्बर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने तथा हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक बचाव उपकरणों की कमी के कारण खतरनाक इलाकों में बचाव अभियान विशेष रूप से कठिन हो रहा है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ को विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। भारत ने नेपाल में बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशकियान के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात

0: वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान, नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई और FC Under-20 फुटबॉल एशिया कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Russian President Vladimir Putin in Bishkek, focusing on trade, energy and defense, says India backs every effort to end war in Ukraine. Prime Minister Modi stresses freedom of navigation and civilian protection during meeting with Iran President Masoud Pezeshkian. Prime Minister also meets Kyrgyz Republican Armenian leaders to address SCO summit tomorrow. India's GDP jumps to 7.8% in the first quarter of the current fiscal despite global headwinds. Bihar and Jharkhand reach agreement on Son River water sharing, settling long-standing dispute. Relief and rescue efforts in Nepal flash flood tragedy hit by equipment shortage as death toll crosses 900, over 4,000 remain missing. And in football, India begin campaign at Under-20 Asian Cup qualifiers with 1-0 win over Syria at Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continue to scale new heights.
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days.
2: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: President Vladimir Putin showed his satisfaction that Indian-Russian relations continue to strengthen on the basis of the principles of a special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with the leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia today. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian during the meeting reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Mr. Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Calling for safeguarding the freedom of navigation and commerce, Mr. Modi emphasized that civilians and civilian infrastructure, including commercial shipping and seafarers, must not be harmed under any circumstances.
3: During his visit to Kyrgyzstan, Prime Minister Narendra Modi today met the President of the Kyrgyz Republic and the Prime Minister of Armenia. During these bilateral meetings, the leaders discussed economic and trade partnerships, enhancing cultural cooperation and growing people-to-people contacts between the two countries.

0: Armenian leaders to address SCO summit tomorrow. India's GDP jumps to 7.8% in the first quarter of current fiscal despite global headwinds. Bihar and Jharkhand reach agreement on Son River water sharing, settling long-standing dispute. Relief and rescue efforts in Nepal flash flood tragedy hit by equipment shortage as death toll crosses 900. Over 4,000 remain missing. And Lionel Messi announces retirement from international football. And that's all in the news at 9. Good night.
1: एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए एक ही संगीतकार, और आज के संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। इनकी ही संगीत पद की गई कुछ चुनिंदा रचनाएं आज के प्रोग्राम में हम आपको सुनवाएंगे।

सन 1974 की फिल्म कोरा कागज़ का ये गीत अभी आपने सुना, और इस गीत के लिए संगीत निदेशक का फिल्म फेयर पुरस्कार कल्याण जी आनंद जी को मिला था। कल्याण जी आनंद जी हिंदी सिनेमा की एक प्रसिद्ध और बेहद कामयाब संगीतकार जोड़ी थी। इस जोड़ी ने अपने 40 साल से अधिक लंबे करियर में लगभग 250 फिल्मों में संगीत दिया। इन्हें 1970 और 1980 के दशक में बेहतरीन संगीत और लोकप्रिय धुनों के लिए जाना जाता है।

श्रोता, आप सुन रहे हैं एक ही संगीतकार और जाने माने संगीतकार कल्याण जी आनंद जी की कुछ चुनिंदा रचनाएं आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं। कल्याण जी वीरज शाह का जन्म 30 अक्टूबर 1928 को और उनकी मृत्यु 24 अगस्त 2000 को हुई। आनंद जी वीर शाह 2 मार्च 1933 को जन्मे। ये दोनों सगे भाई थे और मूल रूप से गुजरात से ताल्लुक रखते थे।

कल्याण जी आनंद जी की संगीत पद की गई कुछ चुनिंदा रचनाएं आज के एक ही संगीतकार कार्यक्रम में श्रोताओं हम आपको सुनवा रहे हैं। उनकी प्रसिद्ध फिल्मों की बात करें तो उनकी फिल्में हैं डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, कुर्बानी, सफ़र, सरस्वती चंद्र, त्रिशूल, कानून, अपना अपना। इन फिल्मों की संगीत धुनें आज भी लोगों के दिलों में अलग जगह बनाए हुए हैं। तो चलिए अब सुनते हैं सरस्वती चंद्र फिल्म से ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे एक ही संगीतकार, और आज आपने सुने कल्याण जी आनंद जी की संगीतबद्ध की गई कुछ खास रचनाएं। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। गूंज पहाड़ों की सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हिमाचली गीतों और लोक संगीत से सजा ये कार्यक्रम है, और कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं राजू प्रभाकर के गाए इस लोकगीत के साथ।

रात्रि के 9:44 हुए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की, और अब लीजिए सुनिए नरोत्तम को।

FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए लाइव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे।

0: पसंद आपके गीत हमारे कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज के प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा, और बहुत सारी फिल्में आज के प्रोग्राम में हमने शामिल की हैं जिनमें से गाने आप चुन सकते हैं। और प्रोग्राम है आपका जिसमें बातें होंगी आपसे, आप ही के बारे में, और गाने तो हम आपको सुनवाएंगे ही। तो चलिए पहले फिल्मों के नाम आपको बताते हैं। फिल्में हैं आक्रमण, आशा, बदलते रिश्ते, पेंटर बाबू, वारिस, तेरी मेहरबानियाँ, सुनैना, शिकार, सच्चा झूठा, राजा और रंक, कुर्बानी, प्यार झुकता नहीं, दर्द, भाभी और वैराग। और पहले श्रोता हमारे साथ हैं। हेलो जी, बड़ी देर से ये कॉल कर रहे थे, कोई बात नहीं, हम उम्मीद करेंगे ये हमें दोबारा कॉल करेंगे। 01892224391 ये हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर। हेलो हेलो जी, ऊंचे स्वर में बोलिए। हाँ जी, सुन रहे हैं हम आपको, नाम बताएं अपना। जी, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़े ऊंचे स्वर में बोल सकते हैं तो अच्छी बात है। और फिल्म का नाम भी बता दीजिए, कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं। जी श्रोताओ, आपसे गुजारिश रहेगी जब भी हमें कॉल करें पहले तो सिग्नल का ख्याल रखें, और दूसरी बात थोड़े ऊंचे स्वर में बोलें ताकि आपको हमारी बात और हमको आपकी बात बड़े अच्छे से समझ आ पाए। हेलो जी, इस नंबर में थोड़ी सिग्नल समस्या है, अनुरोध करेंगे कि थोड़ा सा सिग्नल में रहकर हमें कॉल करें तो बेहतर होगा ताकि आपकी और हमारी बात सही से हो पाए। हेलो हेलो जी, ये नंबर है 08305901466, फ़ोन करके। हाँ जी
1: हाँ जी, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: जी स्वागत है, और बताएं कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं।
1: एक बार लिस्ट बता देंगे क्या, हमारा थोड़ा सा चल नहीं पाया है मोबाइल।
0: जी फिल्में हैं हमारे पास बैराग, भाभी, दर्द, प्यार झुकता नहीं, कुर्बानी, राजा और रंक, सच्चा झूठा, शिकार, सुनैना, तेरी मेहरबानियाँ, वारिस, पेंटर बाबू, बदलते रिश्ते, आशा, आक्रमण।
1: सच्चा झूठा का कोई भी प्यारा सा गीत सुनवा देंगे।
0: जी, करते क्या हैं आप?
1: हमारा खेती बाड़ी का काम है।
0: जी, तो आजकल क्या क्या लगा रखा है आपने?
1: अभी धान लगाए हैं।
0: अच्छा, धान लगाए हैं, और बरसात ठीक हो रही है आपकी धान की फसल के लिए?
1: कुछ कम है पहले की तुलना में।
0: जी, तो फिर फसलों पर इसका असर तो नहीं होने वाला?
1: फिलहाल तो ठीक है, देखिए, लेकिन पानी की आवश्यकता तो अंत तक होती है। जी
0: जी, चलिए आपका गाना बिल्कुल हम बजा रहे हैं, सच्चा झूठा फिल्म से। प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: 01892224391 ये स्टूडियोज का नंबर। हेलो
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, नाम बताइए अपना, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैडम जी मैं पॉल बोल रहा हूँ, जलंधर पंजाब से जी।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है, कौन से फिल्म का गाना सुनवाएं आपको?
1: गाना मैडम जी आप सुना दीजिए, पेंटर बाबू फिल्म का।
0: कौन सा?
1: उसके गाने के बोल है, कब तक शम्मा जली शम्मे गम याद नहीं।
0: जी आपको गाना बिल्कुल सुनवाएंगे, क्या करते हैं आप पंजाब में?
1: हाँ पंजाब में हमारी यहाँ ना पेंट की शॉप है, जो घरों दीवारों को सुंदर बनाते हैं, आप दिलों को सुंदर बनाते हैं, हम घरों दीवारों को सुंदर बनाते
0: जी
1: हैं।
0: अच्छी बात है, और इसी तरह का मेल मिलाप बना रहेगा तो ये पृथ्वी, ये धरती, ये धरा जो है वो सुंदर हो जाएगी। चलिए गाना आपको सुनवाएंगे, आपसे बात की बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
1: ठीक है मैडम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना बात करते
0: जी।

श्रोताओ, पसंद आपके गीत हमारे कार्यक्रम में आप भी हिस्सा बन सकते हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मिलाना होगा 01892224391। ये मेरे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर।

0: हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना।
1: नमस्कार जी, मैं पंचवटी से किशोर लाल बोल रहा हूँ
0: जी। स्वागत। और कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे?
1: शिकार फिल्म बताई है आपने,
0: कौन सी फिल्म?

0: शिकार है।
1: जी हाँ, शिकार फिल्म का कौन सा गाना सुनेंगे? जी करते क्या हैं आप? जी कौन से? जी इन्होंने बीच में ही साथ छोड़ दिया, कोई बात नहीं, इनका साथ हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और शिकार फिल्म का गाना सुनना चाहते थे और कोई भी गाना इन्होंने कहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, गाना हम इनको सुनवाएंगे। कुछ संदेश हम इस गीत के बाद सुनवाएंगे, उसके तुरंत बाद इनकी फरमाइश हम पूरी करेंगे।
2: छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: जीरो 1 8 9 2 2 4 3 9 1 ये है हमारे स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर, 01 8 9 2 2 2 4 3 9 1 इसे डायल कीजिए और सुनिए अपनी फरमाइश का गीत।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई से।
0: जी स्वागत। और कौन से फिल्म का गीत सुनेंगे राकेश जी?
1: अभी फिर मैं सुनी, मैंने अभी जो जो बच चुके हैं वो नहीं, जो अभी जो कौन से अभी आपके पास
0: जी? बहुत सारी फिल्में अभी हमारे पास हैं, आक्रमण, आशा, बदलते रिश्ते, वारिस, तेरी मेहरबानियाँ, सुनैना, राजा रंक, कुर्बानी, प्यार झुकता नहीं, दर्द, भाभी और वैराग।
1: ये सुना दो वैराग का।
0: वैराग में से कौन सा सुनेंगे?
1: गाना
0: कोई भी,
1: कोई भी सुना दो
0: जी। और बताएं कुछ अपने बारे में।
1: बस अब हम तो घर पे रहते हैं, हमारा जो है सेब का जो है बाग बगीचे रहते हैं, सेब का कार्य खत्म हो गया, अब हमारा जो है घास काटने का जो है काम चल रहा है
0: जी। तो घास काट रहे हैं तो बारिशें हो रही हैं आपके इलाके में?
1: जी अभी तो मौसम साफ है।
0: और जब घास काटते हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखते हैं, सांप बिच्छू इस तरह से?
1: जी इस तरह से ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आजकल जो है घास में एक जो है होता है स्क्रब, जो उसमें जो है घास का जो कीड़ा होता है, कई बार पता नहीं लगता कि हमारे शरीर में कब चला गया, क्योंकि बुखार होने का भी उसका चांस रहता है।
0: तो उसकी पहचान आपको है उस कीड़े की?
1: उस कीड़े की पहचान नहीं है, लेकिन फिर लगाना पड़ता, फिर डॉक्टर

0: के पास जाते तो फिर डॉक्टर कहते हैं वो स्क्रैब टब हो गया और आपको ये हो गया, तो फिर
1: स्क्रब स्क्रब टाइफस की बात कर रहे हैं शायद आप?
0: जी हाँ, स्क्रब टाइफस की बात कर रहे हैं, वो जो होते हैं रात में होते हैं, तो इसकी हम बात करें तो इसके लिए हाँ हमारा ये प्रयास है ताकि हम अपना शरीर पूरा ढक कर रखें। जब हम घास खाते हैं जो है ग्लव्स जो होते हैं प्लास्टिक के, उसका इस्तेमाल दूर करते हैं।
1: जी बिल्कुल करें, और जब भी घास काटने लगें तो थोड़ी सी लाठी मारकर बैठें, क्योंकि हो सकता है कि मौसम सुहावना हो तो सांप भी धूप में आराम फरमा रहे होते हैं, तो इस तरह बहुत सारी दुर्घटनाएं हैं जो इस तरह का कामकाज करते हुए हो जाती हैं। पर चलिए अच्छी बात है, आप भी ख्याल रखते हैं इन सब चीज़ों का। चलिए आपको गाना सुनवा रहे हैं बैराग फिल्म का, और प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद।

0: 01892224391 स्टूडियोज का नंबर। हेलो
1: जी दीदी जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
1: मैं करदार सिंह बात कर रहा हूँ। आज आपसे काफी देर के बाद बात हो रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके।
0: जी करदार जी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल बढ़िया हूँ, बिल्कुल बढ़िया।
0: जी, और आपसे भी बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे नियमित श्रोता थे जो आजकल कॉल हमारे प्रोग्राम्स में नहीं करते हैं। जी, और हम उम्मीद करेंगे ये करतार जी हमें कॉल करें और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
1: प्रदीप कुमार।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: बिल्कुल
0: जी, स्वागत। और प्रदीप जी, बताएं कौन सी फिल्म का गाना सुनवाएं आपको?
1: आशा फिल्म का।
0: आशा फिल्म में से कौन सा सुनेंगे?
1: कोई भी गाना।
0: सब अच्छे लगते हैं
1: जी।
0: जी, तो बताएं क्या करते हैं प्रदीप जी?
1: मैं तो रिटायर हूँ HRTC से।
0: तो जब HRTC बस चलाते थे
1: जी,
0: तो गाने सुनते थे उस समय?
1: बस में तो नहीं सुनते थे, पर मेरे को बहुत शौक था गाना सुनने का।
0: जी, तो रेडियो का साथ हमेशा बना रहता था, और आप घर में भी आराम से सुन रहे हैं रेडियो।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो सबसे अच्छे प्रोग्राम्स कौन से लगते हैं आपको आकाशवाणी धर्मशाला के?
1: सुबह 6 बजे लगाते हैं और मैम रात 11 बजे।

0: करते हैं।
1: जी, आपका साथी बना हुआ है रेडियो, अच्छी बात है। तो रेडियो के साथ साथ क्या दिनचर्या रहती है आपकी?
0: दिनचर्या तो वैसे ही है,
1: सुबह उठते हैं, रेडियो लगाते हैं, भजन सुनते हैं, उसके बाद क्या करते हैं?
0: उसके बाद नाते धोते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, पानी पूनी छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। और
1: तो घर वालों की मदद क्या क्या करते हैं आप? क्योंकि पहले तो आप व्यस्त थे, अपने घर वालों की मदद नहीं कर पाते थे, अपनी श्रीमती की, अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आपके पास समय है, तो ऐसे कौन कौन से काम काज हैं जो अपने परिवार के लिए अब आप करते हैं?
0: गमले वमले देख लेता हूँ, सब्जी वगैरह लेकर आ जाते हैं, और क्या करना है।
1: चलिए, अच्छी बात है ना, गमलों की गुड़ाई हो जाती है और फूल और जो फूल पत्तियाँ हैं वो भी हरी भरी रहती हैं आपकी वजह से, तो आपकी श्रीमती को भी थोड़ा सा काम में अच्छा हाथ बट जाता होगा उनका भी।
0: जी,
1: चलिए अच्छा है। और गाना सुनवा रहे हैं आशा फिल्म का प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो पवन जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं और कौन और कहां से बोल रहे हैं।
1: मैं बोल रहा हूं जी, पंजाब के जिला होशियारपुर, तहसील पेड़िया के गांव मैतापुर से महेंद्र
0: जी। राणा जी, थोड़ा सा ऊंचे स्वर में बोलें और बताएं कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं।
1: ये फिल्म तो मैंने सुनना था, आशा फिल्म का, क्योंकि कल मंगलवार है तो माता की भेंट सुननी थी, आपने सुनवा दिया
0: जी। इनका कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुका है, कोई बात नहीं। और हम बाकी श्रोताओं से भी अनुरोध करेंगे थोड़ा सा सिग्नल का ख्याल रखें और कॉल पर बने रहें। हेलो।
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार जी।
2: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: कौन बोल रहे हैं?
2: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश।
0: जी स्वागत, और बताएं कौन सी फिल्म का गाना सुनवाएं आपको।
2: गाना मैडम मुझे सुनना है मैडम, ये फिल्म का नाम है प्यारी बहना।
0: प्यारी बहना फिल्में तो आज हमने ये इस तरह से रखी नहीं है। फिल्में बची हैं हमारे पास आक्रमण, बदलते रिश्ते, वारिस, तेरी मेहरबानियां, सुनैना, राजा और रंक, कुर्बानी, प्यार झुकता नहीं, दर्द और भाभी।
2: तो तेरी मेहरबानियां में से कोई सा भी सुना दीजिए।
0: कौन सा सुनेंगे?
2: हाँ, एक वो चुनरिया वाला गाना है इसके अंदर, आई चुनरिया, ऐसा गीत है ना,
0: आई जवानी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल गाना है। और लोकेंद्र जी, आपने प्रोग्राम में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे सभी प्रोग्राम,
2: आपका प्रोग्राम सुनता हूँ रात के समय में, हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है मेरा। जब भी मैं सैलून से आ जाता हूँ तो आपका प्रोग्राम मैं नियमित तरीके से सुनता हूँ, और मैं तो हर प्रोग्राम आपके यहाँ के सुनता हूँ। सुबह जनवानी आता है, गीतांजलि आता है, और भी
0: जी,
2: प्रोग्राम
0: हम
2: आते
0: आपको
2: हैं।
0: सुनते हैं कि आप हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं, चाहे वो जनवानी हो, गीतांजलि हो। और
2: हाँ,
0: जी अच्छी बात है, कार्यक्रमों के साथ जुड़ना चाहिए। और आपके जो कस्टमर हैं वो भी शायद इन गानों को सुन के खुश होते होंगे।
2: बिल्कुल मैडम जी, मैं दुकान पर है तो मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देता हूँ मोबाइल को, तो उससे दूसरे गीत भी सुनने को मिल जाते हैं। और रेडियो तो एक ऐसा सहारा है मैडम के, पहले जो पुराने दौर से हम सुन रहे हैं तो इसमें डिस्टरबेंस नहीं होता, अपन अपना काम कर रहे हैं और
0: जी,
2: अपना रेडियो चल
0: न्यूज़
2: रहा है।
0: ऑन AIR ऐप के माध्यम से जो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और बहुत बढ़िया आपने बताया कि ऐप के माध्यम से आप जुड़कर इस प्रोग्राम का आनंद लेते हैं, और अब आपको गाना सुनवा रहे हैं तेरी मेहरबानियां फिल्म से। शुक्रिया
2: जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।

0: श्रोता, अब जो फिल्में हमारे पास हैं वो हैं आक्रमण, बदलते रिश्ते, वारिस, सुनैना, राजा और रंक, कुर्बानी, प्यार झुकता नहीं, दर्द, भावी। न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी आप कहीं पर भी किसी भी जगह से हमें सुन सकते हैं, भारत देश के किसी भी कोने से, और विदेशों में भी हमारे ये कार्यक्रम ऐप के माध्यम से सुने जा रहे हैं। प्रोग्राम में कॉल करने के लिए हमारे स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर है 01892224391। हेलो
1: जी पवन जी, फोन कट गया था।
0: जी बिल्कुल, फोन
1: कट गया था। मैंने आपसे बताया कि मैंने तो आशा फिल्म की वो भेंट, माता की भेंट सुनी थी, लेकिन वो सुनवा दी आपने आशा फिल्म का। तो कुर्बानी फिल्म का जो मेन है ना टाइटल सॉन्ग, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी है, वो गाना सुनवा दीजिएगा।
0: चलिए, आपको गाना सुनवाएंगे। प्रोग्राम में आपने कॉल किया, कुछ संदेश हम आपको सुनवाएंगे और इस गाने के तुरंत बाद आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी।
1: कोई बात नहीं पवन जी, जब मर्जी सुनवा दीजिएगा, मैं सुनता हूँ। आप मैं

0: जान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।
1: रात्रि के 10:31 और 24 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे।

0: हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
1: मैं सुनील सिंह धीमान बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: नंदपुर बटोली नियर नगोटा सुन जी।
0: जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में?
1: राजा और रंक का जी।
0: राजा और रंक में से कौन सा?
1: कोई सुना दो, सब बढ़िया है।
0: देखी है फिल्म आपने?
1: हाँ जी, हाँ
0: जी जी कर ले जी। राजा और रंक फिल्म का ये गाना सुनना चाहते थे। कोई बात नहीं, हम गाना बिल्कुल सुनवा रहे हैं प्रोग्राम में। श्रोता, आप भी कॉल कर सकते हैं 01892224391। ये है मेरे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार जी। नाम बताइए अपना।
1: सुरेश गगनेजा, जलालाबाद वेस्ट पंजाब से जी।
0: जी स्वागत। और गाना बता दीजिए, कौन से फिल्म का सुनेंगे?
1: मुझे मूवी बता दे जी, आज मैं अभी अभी
0: फिल्म
1: लगाया।
0: में हमारे पास बची हैं भाभी, दर्द प्यार झुकता नहीं, सुनैना, वारिस, बदलते रिश्ते, आक्रमण।
1: भाभी फिल्म का गीत सुना दें जी।
0: जी भाभी फिल्म का गाना ये सुनना चाहते हैं। और कॉल्स जो हैं लगातार ड्रॉप हो रही हैं, कोई बात नहीं, इन्होंने फरमाइश हमें बता दी है, गाना बिल्कुल सुनवा रहे हैं इनको।

0: हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
1: धीरज रबारी बात कर रहा हूँ, गुजरात से।
0: जी, और बताएं गाना कौन सा सुनेंगे?
1: जो बाकी फिल्में हैं, मैं फोन लगाने में रहता हूँ।
0: जी, वारिस है,
1: माफ करना दीदी।
0: कोई बात नहीं, इनकी फरमाइश हम नहीं जान पाए, कोई बात नहीं। हम उम्मीद करेंगे ये हमें दोबारा कॉल मिलाएंगे।

0: हेलो,
1: नमस्कार
0: नमस्कार जी। नाम बताएं अपना।
1: जी, मेरा नाम परशुराम है। मैं हर से मानसर मुकेरिया से बोल रहा हूँ
0: जी। गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: तो जो अच्छे गाने से सभी निकल गए पुराने, कोई पुरानी फिल्म का नाम बता
0: जी।
1: दें।
0: अच्छे गाने बहुत हैं हमारे पास। आक्रमण फिल्म है, बदलते रिश्ते।
1: हाँ, आक्रमण का सुना दो। मेरे देश के वीर जवानों,
0: जी
1: अपने देश पे खून पे इल्जाम ना आए, तो देशभक्ति का गाना है, बहुत बढ़िया
0: जी जी गाना आपको सुनवा रहे हैं। कुछ
1: जी।
0: संदेश आप तक पहुंचाएंगे और उसके बाद आपकी पसंद का गाना हम आपको सुनवाएंगे। प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी जी बहुत मेहनत की आज मैंने।
0: कितनी देर से कॉल कर
1: ओ,
0: रहे हैं
1: 10 बजे से।
0: जी। तो
1: हाँ
0: देखिए, इतने सारे श्रोता जो हैं हमारे संग जुड़ने का प्रयास करते हैं, और हम
1: हाँ
0: अपने श्रोताओं से एक गुजारिश करेंगे। जिन
1: जी,
0: श्रोताओं ने इस बार हमें कॉल किया है, कृपया 15 या 20 दिन तक हमें कॉल ना करें, ताकि हमारे साथ नए श्रोता भी जुड़ पाएँ। क्योंकि वही श्रोता अगर जुड़ सक पाते हैं बार बार, तो जो
1: हाँ
0: नए
1: जी
0: श्रोता हैं उनको जुड़ने का मौका नहीं मिल पाता।
1: नहीं मैडम, 1 महीने बाद मैंने फोन किया रात
0: चलिए,
1: वाली फरमाइश में,
0: बहुत अच्छी बात है
1: तो मेरी मिसाई ने भी गाना यही सुनना, इनकी बात सुन लो।
0: जी।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्कार जी। नाम बताएं अपना।
2: नमस्कार मैडम जी, दर्शना कुमारी मैडम जी।
0: जी दर्शना जी, क्या करती हैं आप?
2: हम दुकान करते हैं मैडम जी,
0: जी किस चीज़ की दुकान है आपकी?
2: फुटवेयर की।
0: बहुत अच्छी बात है, दोनों मियाँ बीवी जो है दुकान चलाते हैं और साथ ही में गाने भी
2: हाँ
0: सुनते
2: जी,
0: हैं।
2: हाँ जी,
0: तो इस
2: हाँ
0: वक्त
2: जी
0: भी
2: मैडम
0: आप
2: जी,
0: दुकान में तो नहीं हैं?
2: हाँ जी।
0: इस वक्त भी दुकान में हैं कि घर में हैं?
2: नहीं, इस वक्त तो घर में है।
0: चलिए अच्छी बात है, अपने मनोरंजन का समय भी आप निकालते हैं, रेडियो के साथ जुड़ते
2: हाँ,
0: हैं।
2: आप दिन को भी
0: जी
2: दिन में भी सुनते हैं मैडम जी, बाकी
0: चलिए बहुत अच्छा।
2: फैमिली।
1: हेलो
0: जी
1: मैडम,
0: जी
1: जो पुराने गाने लगते हैं ना पहाड़ों के सुर, मेरे को बहुत पसंद है। मेरे को जवानी याद हो गई है सभी गाने।
0: बहुत अच्छी बात है, हमें भी बहुत
1: हाँ
0: अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो
1: जी,
0: हमारे
1: हाँ जी,
0: लोकगीत
1: हाँ
0: होते
1: जी,
0: हैं, लोक गाथाएं होती हैं, हमारे दिलों से
1: हाँ
0: जुड़ी
1: जी,
0: होती हैं, और किसी न किसी कहानी को बयां करती हैं। हर चीज़ की जो
1: हाँ
0: लिखावट है वो किसी न किसी कहानी को बताती है ना?
1: हाँ जीवन से ना संबंधित होते हैं, जैसे हम पहाड़ में रह रहे हो, कहीं मतलब कि भेड़े बकरियां चुग
0: चराते
1: रही
0: हैं।
1: हो,
0: जी जी
1: वहां
0: जी
1: कहीं बैठे हो, ऐसा अनुभव महसूस होता है।
0: जी। चलिए अच्छी
1: जो
0: बात है,
1: भी हम,
0: बहुत अच्छा आप अनुभव
1: हाँ
0: करते हैं
1: जी
0: हमारे प्रोग्राम सुनकर,
1: जी जी जी
0: और गाना सुनवाएंगे, कुछ संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया।
1: जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

धर्मशाला केंद्र से, और 10:45 और 38 सेकंड हुए हैं। बहुत ही कम समय हमारे पास बचा है और श्रोता लगातार हमें कॉल कर रहे हैं। श्रोताओं कॉल मिलाते रहिए। इस गीत के बाद हम

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, नाम बताएं, कौन और कहां से बोल रहे हैं?
1: मोहनगढ़ी से, तहसील मोहनगढ़ी, तहसील जोगिंदर नगर से नवल दीक्षित बात कर रहा हूँ
0: जी। स्वागत, और बताएं कि कौन सा गाना आपको सुनवाएं?
1: चाहे लाख तूफान आए।
0: फिल्म बताइए।
1: प्यार झुकता नहीं
0: जी। और गाना इन्होंने बताया लेकिन कॉल ड्रॉप हो चुकी है, कोई बात नहीं।

रात्रि के 10:48 और 52 सेकेंड, लगभग 12 मिनट का समय हमारे पास शेष है। 01892224391 ये हमारे स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। और अब जो फिल्में हमारे पास बची हैं वो हैं दर्द, सुनैना, वारिस।

0: हेलो।
1: नमस्कार बहन जी।
0: नमस्ते जी, नाम बताएं अपना।
1: तो मेरा फोन कट गया था। सुरेश गगनेजा बोल रहा हूँ जी।
0: जी,
1: और भाभी फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैं।
0: जी, भाभी फिल्म का गाना हम सुनवा चुके हैं। अब हमारे पास फिल्में तीन ही बची हैं, सुनैना, वारिस और दर्द। इनमें से कौन सा?
1: सुनैना का टाइटल सॉन्ग सुना देगी
0: जी। चलिए गाना आपको सुनवाएंगे। प्रोग्राम में आपने कॉल किया, लेकिन आप करते क्या हैं?
1: खेती बाड़ी का काम करता हूँ
0: जी। तो क्या क्या लगा रखा है खेतों में आजकल आपने?
1: धान लगाया हुआ है जी।
0: धान लगाए हैं, तो कौन से किस्म का धान आपने लगा रखा है?
1: ये बासमती किस्म का है जी।
0: बासमती में भी बहुत सारी बासमती हैं तो
1: जी।
0: तो किस तरह का बीज आप लेते हैं? अपने आप ही बीज तैयार करते हैं या फिर जो हमारे केंद्र होते हैं बाजार से लिए जाते
1: हैं? बाजार से लेते हैं जी, दुकानों से।
0: तो कभी ऐसा हुआ कि आपने फसल लगाई और आपकी फसल खराब हो गई हो किसी कारणों से?
1: जी नहीं, अभी तक ऐसा तो कभी नहीं हुआ जी।
0: तो इसका मतलब आप उसमें काफी छिड़काव वगैरह करवाते हैं?
1: जी जी बिल्कुल जी।
0: तो कितने पैमाने पर करते हैं आप खेती
1: जी?
0: अपने जरूरत के लिए ही करते हैं कि बेचने के लिए भी करते हैं खेतीबाड़ी?
1: बेचने के लिए ही करते हैं जी, जरूरत के लिए अलग से ऑर्गेनिक लगाते हैं जी, दो एकड़।
0: जी जी, तो फिर आप जब बेचते हैं उसमें भी ऑर्गेनिक लगा सकते हैं, उसमें खाद और उसका उपयोग ना करें, रेट उसके बढ़ा सकते हैं?
1: जो ऑर्गेनिक है फसल वो आधी होती है जी दूसरी से, तो इससे क्या होगा, कमाई तो बिल्कुल नहीं होगी और पैसे घर से ही लगाने पड़ेंगे सर।
0: जी, जो हरित क्रांति हुई थी उस समय, तो ये हरित क्रांति जब हुई तो ये इन्हीं जो बीज और खादों का इस्तेमाल जब किया गया उस दौरान, क्योंकि अनाज खाद्यान्न की जो है बहुत कमी थी, लेकिन अलग अलग सब लोगों के प्रयासों से जिस तरह के बीज उस समय बनाए गए और उस समय हरित क्रांति हुई, उसके बाद हम बहुत सारी क्रांतियों की बात करते हैं, दूध क्रांति है जिसे सफ़ेद क्रांति कहते हैं, पीली क्रांति है, काली क्रांति है, पेट्रोल डीजल की बात की जाती है, पिंक क्रांति है जो गुलाबी क्रांति है जिसमें मांस की बात की जाती है, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी जैसे कहते हैं ना, एक कदम के बाद दूसरी तरह की क्रांतियाँ शुरू हुई, तो ये हरित क्रांति का पहला उद्गम था। उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ों में आत्मनिर्भरता पाई है और अपने खाद्यान्नों को जो है हमने पूर्ण किया है। चलिए, अच्छी बात है, और कोशिश कीजिए कि आप ऑर्गेनिक खेती ही करें, ताकि बेशक आप रेट बढ़ा दें तो लोगों को भी अच्छी चीज़ें खाने को मिलेंगी, क्योंकि जब हम इन स्प्रे वाली चीज़ों को खाते हैं तो हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है, जो हमारा पाचन क्रिया है, तो उसमें भी बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो जाती है ना
1: जी। बिल्कुल
0: जी, चलिए, आपने कॉल किया, आपकी पसंद का गाना सुनैना फिल्म से सुनवा रहे हैं, शुक्रिया
1: जी, धन्यवाद।

बहुत सारे श्रोता लगातार हमें कॉल मिला रहे हैं। श्रोताओ, एक अनुरोध रहेगा, जिन लोगों ने इस बार हमें कॉल किया है, कृपया अगले 20 दिन तक हमें कॉल ना करें, ताकि और भी लोगों को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिल पाए। जिन लोगों की कॉल लगी उनका धन्यवाद, और जिनकी कॉल नहीं लग पाई निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगले सोमवार को भी पसंद आपके गीत हमारे कार्यक्रम में आपके लिए पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग रहा अंकित धीमान का, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। और अब मुझे यानी पवन शर्मा को दे इजाजत, बस यही कहना चाहेंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुनते रहें FM धर्मशाला।

0: आप सुन रहे थे लाइफ ओन इन कार्यक्रम पसंद आपके गीत हमारे एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे, पहले हिंदी में और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी समाचार आप सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भव तारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यह दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिश्केन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जाफरोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगामियुम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi